रेडियम वेव 254.45 मीटर अर्थात 1179 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी गरिमा केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैसाख मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 मई सन 2026। उपस्थित हैं हम हमारी आज की सभा के कार्यक्रमों के साथ श्रोताओं, नमस्कार।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए।

इस मातृ वंदना के बाद सुप्रभातम में आइए अब आपको सुनवाते हैं राजेंद्र शुक्ला की आवाज में कबीर दास की यह रचना।

0: इस भक्ति पद के साथ ही भक्ति संगीत कार्यक्रम सुप्रभातम संपन्न हुआ। मीडियम वे पर हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:35 हुए हैं। किसान भाइयों के लिए पेश है कार्यक्रम कृषि संकेत। आज का विषय है बकरियों में नस्ल सुधार।
1: किसान भैया बहनी, आपन देश कृषि प्रधान देश है। मनई खेती किसानी त करता है, साथ हो साथ गुरुवरा करा पालत है। और जो मनई बकरी पालन करे तो कुछ नफा मुनाफा कमाए सकत है। काहे की कहा थमा के बकरी के दूध बहुते पुष्ट होत है और बकरा के कीमतो अच्छी खासी मिलत ही। पर यह तब संभव है जब मनई इनके नस्ल मा सुधार करी। देखी जलवायु के अनुरूप उपयुक्त नस्ल के चुनाव करे के चाहिए। बकरी माँ गर्मी के लक्षण मनई एह मेर के चीन सकत है। बकरी सुस्त बेचैन रहा थी, पूंछ उठाए के विशेष प्रकार की आवाज करत थी, खाना पीना कम कई दे थी। अचानक दूध में कमी आ जाती, दूसरे बकरीन के ऊपर चढ़े के कोशिश करत थी, योनि द्वार गुलाबी और सूजा लागत है। बकरा गर्मी के लक्षण वाली बकरी का पहचान जल्दी कर लेते है। बकरीन मनियंत्रित गर्भ धारण करवामे के चाहिए। ओके नीता नर और मादा का अलग अलग राख है। हर सवेरे बकरीन के झुंड में बकरा छोड़े और जो उन बकरी गर्मी में हो वही अलग कई के बकरा लगावे। प्रतिदिन एक बकरा से 2 से 3 बकरी लगवावे। बकरा लगाने के बाद नियमित रूप से बकरी गाभिन है कि नहीं एकर जांच करे। गाभिन बकरी का 300 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से दाना खवावे का चाहिए। यह दाना बाजार में मिलत है, उसे बच्चा स्वस्थ और सुदृढ़ होत है। जब तक सवेरे बकरा के इस्तेमाल प्रजनन के निता होत है तब तक वही प्रतिदिन 300 ग्राम दाना खवावे का चाहिए। हर तीसरे साल प्रजनन के निता प्रयोग कीन का बकरा बदल दे। प्रसव के बाद 2 महीना के अंदर बकरी गर्मी पर आ जाती एक नियमित रूप से जांच करावे का चाहिए। जौने बकरीन के वजन कम हो ऐसा बकरीन का गाभिन न करवावे। एक बकरा से 45-50 बकरीन का रेतन कराव उचित होत है। यह अनुपात में बकरा बकरी राख है। बकरी 1.5 बरिस में 2 बेर बच्चा देती है। प्रजनन योग्य क्षमता के आयु बकरियन में 12 महीना और बकरन में 1-2 बरिस में होती। पर बकरी और छौनन के स्वास्थ्य के दृष्टि से बकरी का 15 महीना के पहले गर्भ धारण न करवाने का चाहिए। बकरीन के नीता गर्भावस्था के समय चैत जेठ और भादव कार्तिक उचित माना जाता है। पौष्टिक आहार दे माँ बकरी बरिस भर गर्मी में आबत रहती हैं। नियमित ऋतुकाल 18-20 दिना के होत है। ऋतुकाल में गर्मी के लक्षण कुछ घंटा से लेके 2-3 दिन तक दिखाई देत हवे। फलदायी समागम समय 6-20 घंटा तक के होत है। बधियाकरण नर बकरन का बैरडिजो कैस्ट्रेटर से नसबंदी करवाओ बधियाकरण कहवावा जात है। बकरी पालन में 30 बकरीन के पीछे एक नर बकरा रखा जाए का चाहिए। बधियाकरण से निम्न लाभ होते में झुंड में अनावश्यक प्रजनन का रोकत है। पशु के मांस में बढ़ोतरी होती जैसे अधिक कीमत प्राप्त होती। नर बकरन के खास गंध से छुटकारा मिलत है। मांस के गुणवत्ता में वृद्धि होती। चमड़ी के अधिक दाम मिलत है। बधियाकृत

0: नर झुंड से अलग नहीं भागता ही। बर्डिजो कैस्ट्रेटर से 6 महीना के ऊपर के नर बकरन का बधियाकरण करवामे के चाही और बधियाकरण करें के उपरांत टिंचर आयोडीन लगामे के चाही, ऐसे संक्रमण कम होत है। देसी नस्ल 30 किलो वजन आधा किलो दूध, देसी नर देसी मादा 30 किलो वजन आधा किलो दूध एक बच्चा। उन्नत नस्ल दर 50 किलो वजन देसी मादा आधा किलो दूध एक बच्चा। उन्नत नस्ल देसी नर देसी मादा 50 किलो वजन 1.5 किलो दूध दो बच्चा। निकृष्ट बकरन के बधियाकरण करवावे, उन्नत नस्ल के बकरन से प्रजनन करवावे। रिष्ट पुष्ट स्वस्थ और ज्यादा दूध दे वाली बकरियन के उन्नत नस्ल के बकरन से प्रजनन करवावे के चाही। एक बेर में एक से अधिक बच्चा दे वाली बकरियन का प्रजनन हेतु तो उपयोग में लावे चाही। किसान भैया बहिनी जो यह सब तरीका अपना पचे अपनाई तो अच्छा से अच्छा लाभ कमा सकी थे।
1: बकरियों में नस्ल सुधार विषय पर जानकारी सुनी अपने कार्यक्रम था कृषि संकेत। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। प्रातः के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरित मानस से पाठ।

पूरी अयोध्या नगरी में हर्षोल्लास छाया है। माता के आग्रह पर जगत के स्वामी ने बाल रूप के रुदन से जननी की शंकाएं दूर कर दी हैं। शिशु के रोने की अत्यंत प्रिय ध्वनि सुनकर अन्य रानियां तथा दास दासियां हर्षित हो दौड़ पड़ी। पुत्र जन्म का समाचार सुनकर महाराज दशरथ को परम आनंद हुआ। राजप्रसाद वाद्य यंत्रों की मंगल ध्वनि से गूंजने लगे। जात कर्म संस्कार आदि करके ब्राह्मणों को सोना, गौएं, मणिमाणिक आदि दान स्वरूप भेंट किए गए। जगह जगह तोरण द्वार आदि बने हैं। आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है। स्त्रियां सोने के कलश तथा थाल में मंगल द्रव्य लेकर राजमहल में प्रवेश कर रही हैं। घर घर बधावे बज रहे हैं। कैकेयी तथा सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। पूरी नगरी इस प्रकार सजी धजी है जैसे सारे श्रृंगार करके रात्रि स्वामी से मिलने आई हो, किंतु सूर्य का प्रकाश देखकर लजा गई हो। राजमहल वेद पाठ की कोमल ध्वनि से गूंज रहा है।

अभी रामचरित मानस से पाठ का प्रसारण हो रहा था। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब जान लेते हैं हमारे केंद्र से आज अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम आज सवेरे। समय रहेगा प्रातः 7:30। उर्दू कार्यक्रम आईना आप सुन सकेंगे सुबह 9:30 पर, और कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का समय रहेगा सुबह 10:00। ये दोनों कार्यक्रम हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रस्तुत करेंगे।

डॉक्टर ब्रजेश ओझा से की गई भेंटवार्ता है और साइलेज आप सुनिएगा शाम 7:20 पर। कार्यक्रम होगा चौपाल। सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा सुबह 10:05 पर और फिल्म संगीत का आनंद लेंगे सुबह 8:30 पर। ये थे हमारे केंद्र से आज अरुण प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं।

मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें मां भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें मां भारती की संतानों के रूप में

0: अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है।
1: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को है।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः सुरेश चंद शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गतरात्रौ गोथेनबर्ग इत्यत्र स्वीय स्वीडिश समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यमुना साकं संवादं विहितवान्। श्री मोदी द्विदिवसीय स्वीडन यात्रान्तर्गतं गतदिने गोथेनबर्ग इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। भारत स्वीडन देशयोः सम्बन्धेषु मोदिनः असाधारण योगदानाय दूरदर्शी नेतृत्व सम्माने च प्रधानमंत्री श्री मोदी रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रेड क्रॉस इत्यनेन सम्मानेन सभाजितवान्। प्रधानमंत्री मोदी सह प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्तांतर्गतम उभौ नेतारौ भारत स्वीडन संबंधानां समेषां पदक्षेपाणां समीक्षामपि कृतवन्तौ। उभौ नेतारौ व्यापार निवेश प्रविधि नवाचार हरित परिवर्तनम अंतरिक्ष रक्षा अनुसंधानम समेत्य नैकेषु विषयेषु चर्चितवन्तौ। स्वीय संबोधने श्री मोदी आतंकवादम आलोचयन नैकेषु विषयेषु विस्तृतेन वक्तव्यं प्रकटितवान्। आतंकवादम विरुद्ध्य संघर्षे स्वीडिश प्रधानमंत्रिणः समर्थनाय आभारमपि श्री मोदी प्रकाशितवान्।
0: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
2: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्वीडिश समवायाः आमन्त्रिताः। गोथेनबर्ग इत्यत्र प्रमुख स्वीडिश समवाय प्रमुखैः सह वार्तान्तर्गतं श्रीमोदी स्वीडिश समवायान् विनिर्माण हरित हाइड्रोजन अभियानं स्वच्छोर्जा अन्येषु क्षेत्रेषु च स्वीयोपस्थिति संवर्धनाय आग्रहमपि कृतवान्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्वीय यात्रायाः चतुर्थे चरणे नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय अथ द्विपक्षीय वार्ताभ्यः श्री मोदी अद्य नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। प्रधानमंत्रिणः मोदिनः नॉर्वे इत्यत्र एषा प्रथमा यात्रा स्यात्। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम इत्यमुना अथ रानी सौम्या इत्यनया साकं च मेलनं कुर्यात्। श्री मोदी तत्रत्य प्रधानमंत्रिणा जोनास गहरस्टोरे इत्यमुना साकं द्विपक्षीयां वार्तां कुर्यात्। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे केरलम शासनस्य शपथ ग्रहणम अद्य स्यात्। कांग्रेस दलस्य नेता वीडी सतीशन अद्य तिरुवनंतपुरम इत्यत्र शपथवचनं स्वीकुर्यात्। कांग्रेस दलेन सतीशन इत्यसौ केरल प्रदेशस्य अग्रिम मुख्यमंत्री रूपेण समुद्घोषितः। कांग्रेस दलस्य नेतृत्व युतेन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक ग्रंथि युतेन तत्र शासन विरचनं स्यात्। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः गुजरात प्रदेशस्य गांधीनगरे 700 कोटि मितानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। स्वीय द्विदिवसीय यात्रावधौ गतदिने गांधीनगर नगर निगमस्य 100 कोटि मितानां विकास कार्याणां शुभारम्भमपि श्री शाहः विहितवान्। एतत्पूर्वं प्रथमे दिने श्री शाहः सूचना केन्द्रस्य उद्घाटनं च कृतवान्। श्री शाहः AI तथा डीपटेक इत्येतौ भविष्यस्य अर्थव्यवस्थायाः मुख्य स्तम्भौ इति वर्णितवान्।

आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए

0: वार्तासु आईपीएल इत्येतस्यां क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये द्वन्द्वं स्यात् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोतेनबर्ग में स्वीडन की प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोतेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी उल्लेख किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोतेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें और मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए उन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे जलपोत गुजरने की अनुमति दी गई थी, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया।

0: and Sunrisers Hyderabad will clash at M. H. Chidambaram Stadium in Chennai at 7:30 PM. And that is the end of this news bulletin.
1: जानकारी हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी भोपाल है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। 43 साल बाद नॉर्वे पहुंचने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। कल होगा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। स्वीडन के सर्वोच्च रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देवास पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में लापरवाही भारी पड़ी। एसडीओपी और एसडीएम समेत 4 अधिकारी निलंबित। और प्रदेश में गर्मी का कहर, राजगढ़ में पारा 45 डिग्री। मौसम विभाग ने जारी किया 28 जिलों में लू का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे पहुंचेंगे। 43 साल में यह पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे की यात्रा पर जा रहे हैं। वे नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास स्टोरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। कल तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें 5 नॉर्डिक देशों के प्रमुख शामिल होंगे। ग्रीन एनर्जी, समुद्री अर्थव्यवस्था, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं कल श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। उन्होंने कंपनियों से मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने की अपील की।
1: स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड एआई कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए ठोस इनिशिएटिव्स पर काम करेंगे। दोनों देशों के स्टार्टअप्स और रिसर्च इकोसिस्टम्स के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए हम इंडिया स्वीडन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने जा रहे हैं।
0: स्वीडन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के प्रतिष्ठित रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान से नवाजा गया। ये सम्मान आमतौर पर राष्ट्राध्यक्षों को कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में योगदान के लिए दिया जाता है। इस सम्मान के साथ श्री मोदी को अब तक दुनिया के अलग अलग देशों से कुल 31 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। जबलपुर में कल हाईकोर्ट के कई डिजिटल प्लेटफॉर्म एक साथ लॉन्च किए गए। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने इस पहल की तारीफ करते हुए कहा कि यह व्यवस्था पूरे देश में लागू होनी चाहिए। अब कोर्ट की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग, ऑर्डर की डिजिटल कॉपी और कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया ऑनलाइन हो सकेगी। एआई से लैस प्रथम सिस्टम और संकेत वाणी ऐप भी लॉन्च हुई, जो सुनने और बोलने में अक्षम लोगों की मदद करेगी। प्रदेश में आज पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया जाएगा। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में सुबह 10 बजे कार्यक्रम होगा। इस चैटबॉट से लोग घर बैठे सोलर पैनल लगवाने की पूरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया समझ सकेंगे। रायसेन में बीजेपी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान कल खत्म हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत होते हैं। वहीं विदिशा में श्री चौहान ने कैंसर मरीजों के लिए एक बड़ी घोषणा भी की।
2: यहाँ मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल विशेषकर मेडिकल कॉलेज में अगर देखने को मिल जाए तो वहाँ प्रेजेंट में जो शुरू करेंगे कैंसर का इलाज पहले प्रेज में वो जिले पर कीमो थेरेपी से शुरू करें। मुझे विशेष चिंता थी मेरी बहनों की, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर बड़ी संख्या में होता और बहने बताती नहीं कोई आया कि एक व्यापक पैमाने पर स्क्रीनिंग हो जो 5, 6 और 7 जून हो। टाटा मेडिकल और मेमोरियल वालों ने सुझाव दिया कि 3 जून के अंदर।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: धार की भोजशाला में कल सुबह मां वागदेवी की प्रतिकृति गर्भगृह में स्थापित की गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश के बाद सुबह 6:27 पर मंत्रोच्चार और हवन के बीच यह पूजन संपन्न हुआ। 15 मई को हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भोजशाला को मां वागदेवी का मंदिर मानते हुए हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने 2003 का वह आदेश भी रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम पक्ष को हर शुक्रवार नमाज की अनुमति दी गई थी। अब रुख करते हैं एक अच्छी खबर का। बैतूल के किसान कमलेश देशमुख ने आधुनिक तकनीकी अपनाकर खेती की तस्वीर बदल दी है। कृषि अभियांत्रिकी विभाग की योजना का लाभ उठाते हुए उन्होंने खेती को घाटे के काम से निकालकर मुनाफे का व्यवसाय बना दिया है। उनकी ये कामयाबी जिले के दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा बन रही है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे बैतूल संवाददाता मयंक भार्गव।
4: बैतूल जिले के एक युवा किसान कमलेश देशमुख ने आधुनिक तकनीकी को अपनाकर खेती को लाभकारी व्यवसाय में बदल दिया है। पारंपरिक खेती से आगे बढ़ते हुए उन्होंने न केवल अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है बल्कि क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने हैं। इस युवा किसान ने बढ़ती लागत और घटते मुनाफे को देखते हुए वैज्ञानिक पद्धति अपनाई और खेती को व्यवसाय के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया, जिससे मध्य प्रदेश शासन की किसान हितैषी योजनाएं भी मददगार साबित हुई।
5: मैंने कृषि अभियांत्रिकी विभाग की योजना से 9,60,000 रुपए का अनुदान लेकर कस्टमाइजिंग सेंटर स्थापित किया है। इसके साथ ही मैंने सुपर सीडर सेसर रोटावेटर को व्यवसाय का रूप देते हुए पहले वर्ष में 8,00,000 रुपए का और दूसरे वर्ष में 12,00,000 रुपए का लाभ प्राप्त किया है।
4: आज कमलेश देशमुख क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। उनका मानना है कि नई तकनीक योजनाओं का समुचित उपयोग और नवाचार की सोच से खेती को लाभकारी एवं टिकाऊ व्यवसाय बनाया जा सकता है। बैतूल से मयंक भार्गव।
0: देवास के टोक कला के पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस और राजस्व विभाग के 4 अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया। जांच में सामने आया कि फैक्ट्री में तय मात्रा से ज्यादा विस्फोटक सामग्री रखी थी और सुरक्षा के इंतजाम भी कमजोर थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई को राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। इस साल कुल 131 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं और 16 लोगों को यह पुरस्कार मरणोपरांत सम्मान के रूप में दिया जाएगा। 1954 से शुरू यह पुरस्कार हर साल गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाते हैं और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में गिने जाते हैं। भारतीय नौसेना ने भोपाल की अपर झील में अपना नौकायन केंद्र शुरू किया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कल इसका उद्घाटन किया। यह केंद्र नौसेना के साथ साथ एनसीसी कैडेट्स को भी रोइंग, कयाकिंग और कैनोइंग का प्रशिक्षण देगा। 5 साल पहले शुरू हुई नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज योजना आज रंग लाने लगी है। देश में खिलौनों का उत्पादन बढ़ा है और चीन से आयात में काफी कमी आई है। विदेशी खिलौनों पर आयात शुल्क 20 से बढ़ाकर 70% किए जाने का असर साफ दिख रहा है। बाजार में अब घटिया और असुरक्षित खिलौनों पर भी लगाम लगी है। अलीराजपुर के कठीवाड़ा में उगने वाला नूरजहां आम अपने विशालाकार की वजह से दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। ये एक आम का वजन 2 से 5 किलो तक होता है, इसलिए इसे किंग ऑफ मैंगो भी कहते हैं। बाजार में इसकी कीमत 1500 से 3000 रुपए प्रति आम तक पहुंच जाती है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। कल राजगढ़ में पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, रतलाम और खंडवा समेत 28 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री और बढ़ सकता है। लोगों से दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच घर से बाहर न निकलने की अपील की गई है। अब खबर क्रिकेट की। आईपीएल में कल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। वहीं दूसरे मैच में आरसीबी धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर आईपीएल प्लेऑफ में जगह पक्की करने वाली पहली टीम बन गई। आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सीएसके और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में आज मतदाता सूची पुनरीक्षण पर जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी। खजुराहो में कल सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने 50 बिस्तरों वाले आयुष वेलनेस सेंटर और एलीट शिक्षण संस्थान खोलने की घोषणा की। भोपाल के जनजाति संग्रहालय में संभावना गतिविधि के तहत कोरकू, बुंदेली और बघेली लोक नृत्य गायन की रंगारंग प्रस्तुति हुई। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटिक ने सागर से टीकमगढ़ तक का सफर सरकारी काफिले की जगह आम यात्री बस से किया। बैतूल में पर्यटन बोर्ड की जनजाति पर्यटन परियोजना के तहत बज्जरवाड़ा गांव में 3 नए ग्रामीण होम स्टे का उद्घाटन किया गया और विदिशा में 59,000 से अधिक किसानों से 5,09,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 43 साल बाद नॉर्वे पहुंचने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। कल होगा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। स्वीडन के सर्वोच्च रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देवास पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में लापरवाही भारी पड़ी। एसडीओपी और एसडीएम समेत 4 अधिकारी निलंबित। और प्रदेश में गर्मी का कहर जारी। राजगढ़ में पारा 45 डिग्री। मौसम विभाग ने जारी किया 28 जिलों में लू का अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।
6: मीडियम वेब पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। प्रातः के 7:20 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत।

श्रोताओं, हर साल मई माह की 18 तारीख को यानी कि 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को HIV की रोकथाम और एड्स के टीके के अनुसंधान के बारे में शिक्षित करना होता है। एड्स एक वैश्विक बीमारी है। इसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों और उनके परिवारों को प्रभावित किया है। इससे निपटने के लिए की जा रही अहम कोशिशों के बावजूद HIV से पीड़ित लोगों की संख्या अधिक बनी हुई है। आइए विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के इतिहास को जानते और समझते हैं और इस विषय में जागरूकता फैलाते हैं और आज के इस दिन के महत्व को सार्थक करते हैं।

0: आकाशवाणी के रीवा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और अभी आपने सुना फिल्म 1942 अ लव स्टोरी फिल्म से यह गीत।
1: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: श्रोताओं, फिल्म सिलसिला से अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का यह आखिरी गीत। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। प्रातः के 7:30 होने को है।
1: आज सवेरे

0: नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग।
1: मैं बजाऊं तो? मैं गाना गाऊं? अरे भैया, मुझे गाना कहाँ आता है?
0: कला और जीवन दोनों में तपस्या और अभ्यास का बहुत महत्व है। शुरुआत में कोई भी कला मुश्किल लगती है और अभ्यास में दर्द या असफलता का एहसास होता है। यदि हम उस प्रारंभिक कठिनाई और दर्द का सामना कर लें तो हम जीवन में उत्कृष्ट प्रतिभा के रूप में उभर सकते हैं। कला सिर्फ सजावट नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने का माध्यम।

0: एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ है मेरी सहयोगी नीना अराकल मैथ्यू। नमस्कार नीना।
1: हेलो मनोज एंड अ जॉयफुली ब्राइट मॉर्निंग टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग टू यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे वेर इन वी ब्रिंग इन मोटिवेटिंग वाइब्स टू गिव द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे दैट इज 18th ऑफ मे 2026। लेट्स बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस मनोज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत की। श्री मोदी दो दिन के स्वीडन दौरे पर कल गोथेनबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के सम्मान में रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। उन्होंने व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार, हरित परिवर्तन, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा और सुरक्षा, लघु तथा मध्यम उद्यम, अनुसंधान तथा लोगों के बीच आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के बारे में चर्चा की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। बहुपक्षीय मंचों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की गई।
1: Prime Minister Narendra Modi has invited Swedish companies to enhance their presence in India under initiatives such as Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission during an interaction with select Swedish CEOs in Gothenburg. Mr. Modi made a strong pitch to Swedish companies to enhance their presence in India in manufacturing, green hydrogen mission, clean energy and other sectors. The discussions also focused on strengthening cooperation in resilient supply chains, green transition, sustainable mobility, life sciences and digital technologies. In the fourth leg of his visit, the Prime Minister will reach Norway today for the third India-Nordic summit and bilateral engagements. This will mark the first Prime Ministerial visit from India to Norway in 43 years. Mr. Modi will call on King Harald V and Queen Sonja and hold bilateral talks with Prime Minister Jonas Gahr Støre. Mr. Modi will also address the India-Norway Business and Research Summit along with Norwegian Prime Minister. The visit will provide an opportunity to review the progress made in India-Norway relations and explore avenues to further strengthen them.
0: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित

0: सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं।
1: India has expressed deep concern at the attack targeting the Barakah nuclear facility in the UAE. In a statement, Ministry of External Affairs said such actions are unacceptable and represent a dangerous escalation. New Delhi has urgently called for restraint and a return to dialogue and diplomacy. Union Minister for Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda has arrived in Switzerland to participate in the 79th World Health Assembly. The six-day event will begin today in Geneva. In a social media post, Mr. Nadda said that this year's theme, Reshaping Global Health, a Shared Responsibility, highlights the importance of collective action in addressing global health challenges.
0: पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में लगी आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। रेलवे ने बताया कि समिति को निर्धारित समय के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
1: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has allocated portfolios to the newly inducted and promoted ministers of his cabinet. The portfolio distribution follows a second cabinet expansion of the government, which took place on May 10. During the reshuffle, two cabinet ministers and four ministers of state were inducted into the government, while two ministers of state were elevated to ministers of state with independent charge.
0: चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई।
1: India Meteorological Department has said that the southwest monsoon is likely to set in over Kerala on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date of June 1st. Our correspondent reports that conditions are favourable for the southwest monsoon to advance into more parts of the Southeast Arabian Sea, Bay of Bengal, Andaman Islands and Andaman Sea over the next 2 to 3 days.
0: अब रुख करते हैं महानगरों के समाचारों का। पहले दिल्ली की खबर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल राष्ट्रीय राजधानी के द्वारका विधानसभा क्षेत्र में लगभग 100 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद क्षेत्र में जलभराव, खराब सड़कों, सीवर ओवरफ्लो और बिजली आपूर्ति जैसी समस्याओं में काफी सुधार होगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही नागरिकों को एक अधिक सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक वातावरण मिलेगा। इन परियोजनाओं में विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत और निर्माण, चौपालों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण, जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के व्यापक कार्य तथा पार्कों का सौंदर्यीकरण और हरित विकास शामिल है। दिल्ली की एक और खबर। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कनाडा की नागरिकता दिलाने की एवज में लगभग 1,80,00,000 रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक अप्रवासन सलाहकार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने एक महिला से कनाडा की नागरिकता दिलाने का झूठा वादा कर ये रकम हड़पी थी। पुलिस ने आरोपी के पास से एक लैपटॉप बरामद किया है, जिसमें महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत, वित्तीय लेनदेन के रिकॉर्ड, प्रवास से संबंधित दस्तावेज, सोशल मीडिया चैट और मामले से संबंधित अन्य जानकारी होने की आशंका है। वहीं एक अन्य कार्रवाई में दिल्ली पुलिस के बाहरी जिला की विशेष इकाई ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से लगभग 8 किलोग्राम का मादक पदार्थ बरामद किया है। मामले में आगे की जांच जारी।

0: एंड फ्रॉम दिल्ली वी मूव ऑन टू चेन्नई मेट्रो न्यूज़ मनोज In Chennai, libraries across the city have different sessions apart from reading activity. The sessions are part of the Directorate of Public Libraries summer outreach program aimed at keeping children engaged through activities that do not involve screen time and sparking an interest in libraries. The district library officer, M. Kavita, said that the programs are being held at 18 full-time libraries in the city. Libraries decide the schedule and activities for the day and coordinate with school head and local residents to ensure participation. All activities are being held in coordination with the readers' circles, which also contribute financially. The government has been providing up to 5,000 rupees per library for refreshments for the students. What a wonderful initiative taken by Chennai for libraries.
1: अब मुंबई का रुख करते हैं. मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए भारत की सबसे बड़ी रेल परियोजना में तैनात की जाने वाली सुरंग खोदने वाली मशीन TBM का कटर हेड मुंबई के विक्रोली शाफ्ट में सफलतापूर्वक उतारा गया है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में इस उपलब्धि को देश की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया गया है. 350 टन वजनी और 13.6 मीटर व्यास वाले इस कटर हेड में 84 कटर डिस्क, 124 स्क्रैपर और 16 बकेट लिप्स लगे हैं. ये मशीन सुरंग खोदने के दौरान चट्टानों की खुदाई करने और मलबे को कुशलतापूर्वक हटाने के लिए डिजाइन की गई है. मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और शिल फाटा के बीच 21 किलोमीटर लंबी सुरंग शामिल है, जिसमें ठाणे क्रीक के नीचे भारत की पहली 7 किलोमीटर लंबी समुद्री रेल सुरंग भी शामिल है. सुरंग की कुल लंबाई में से 5 किलोमीटर की खुदाई पहले ही न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का उपयोग करके की जा चुकी है, जबकि शेष 16 किलोमीटर की खुदाई टनल बोरिंग मशीनों का उपयोग करके की जाएगी. मुंबई की एक और खबर. पुलिस अधिकारी ने रविवार को बताया कि पालघर जिले में फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके जिला परिषद की नौकरी हासिल करने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है. महिला ने अगस्त 2023 के सीधे भर्ती विज्ञापन के तहत ग्रुप सी प्रयोगशाला तकनीशियन पद के लिए आवेदन किया था और धुले के एक सरकारी चिकित्सा संस्थान द्वारा जारी किया गया कथित विकलांगता प्रमाण पत्र जमा किया था. पुलिस के अनुसार उसने दिव्यांग श्रेणी में मेरिट सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था. धुले स्थित श्री भाऊ साहेब हीरे सरकारी मेडिकल कॉलेज और जनरल अस्पताल के डीन के प्रारंभिक सत्यापन पत्र के आधार पर उसे अक्टूबर 2024 में नियुक्ति पत्र जारी किया गया और चिंचानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात किया गया. हालांकि दिसंबर 2024 में अस्पताल ने एक पत्र जारी कर कहा कि प्रमाण पत्र आधिकारिक मेडिकल बोर्ड से प्रमाणित नहीं हुआ था, जिसके बाद पालघर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने पिछले साल 10 जून को उसकी सेवा समाप्त कर दी. स्वास्थ्य सहायक प्रशासनिक अधिकारी मोनिका द्वारकानाथ राउत की शिकायत के बाद पुलिस में मामला दर्ज किया गया और महिला को 12 मई को गिरफ्तार कर लिया गया. उसे 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.
0: And now, dear listeners, it's time for news from Bengaluru. The Minister for Railways, Ashwini Vaishnav, virtually flagged off the new SMVT Bengaluru Lokmanya Tilak Terminus bi-weekly express train yesterday. Addressing the event organized in Bengaluru, he announced the Vande Bharat sleeper service between Bengaluru and Mumbai soon. He suggested a rail-based mass transit system to solve the congestion and mobility challenges in Bengaluru. The railway minister noted that the suburban rail network approved by the central government for Bengaluru will integrate the metro system, airport, major railway stations and key IT hubs including Electronic City, Hebbal and Whitefield, which will be a game changer for Bengaluru's transportation ecosystem. Union Minister of State for Railways V. Somanna said that 12 pairs of Vande Bharat trains operate in Karnataka, covering 14 districts. That's good news for Bengaluru.
1: जी जी जी. अब कोलकाता पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं. पश्चिम बंगाल सरकार कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए एक और मंत्रिमंडल

0: बैठक आयोजित करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्ना में होने वाली दूसरी मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्य सचिव, गृह सचिव और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। सचिवालय सूत्रों के अनुसार आरजी कर मामले, महिलाओं के खिलाफ अपराध, संस्थागत भ्रष्टाचार, सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग के गठन और लंबित महंगाई भत्ता के भुगतान से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री, वर्तमान सचिव, मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल, पूर्व मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और सीमा सुरक्षा बल BSF के अधिकारियों के साथ अलग से बैठक कर सकते हैं। इस बैठक में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ बंदी और चौकियों के निर्माण के लिए BSF को 45 दिनों के भीतर जमीन सौंपने के पूर्व निर्णय की समीक्षा की जाएगी। दोपहर बाद मुख्यमंत्री कोलकाता के अलीपुर स्थित धानोधानो सभागार में इस वर्ष की माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, CBSE और ICSE परीक्षाओं में सफल हुए विद्यार्थियों को सम्मानित करने के कार्यक्रम में शामिल होंगे।
1: And now we move on to Hyderabad. Students from centers of excellence operating under Telangana Social Welfare Residential Educational Institution Society have achieved top ranks in the Telangana Engineering, Agriculture and Pharmacy Common Entrance Test 2026, according to a release yesterday. On this occasion, the Minister for SCST Welfare, Adluri Lakshman Kumar, expressed his happiness and said that these results are proof of the exceptional talent that students from poor, Dalit, tribal and backward classes possess.
0: अब महानगरों दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल जानते हैं। दिल्ली में आज दिन के समय तेज हवाएं चलने की संभावना है। यहां का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज आसमान साफ रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आज बादल छाए रहने और बिजली कड़कने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं नीना से।
1: श्योर। Chennai is expected to have partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 28 degrees Celsius and maximum will be around 38 degrees. Bengaluru is also expected to have thunderstorm with rain. The minimum temperature was 22 degrees Celsius and maximum will be around 33 degrees. Hyderabad is expected to partly cloudy sky with possibility of development of thunder lightning. The temperature will hover between minimum of 29 degree and a maximum of 41 degree Celsius.
0: और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 18 मई है। देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है।
1: Yes, Manoj, and today is International Museum Day, which is celebrated every year on 18th May across the world. The day was established in 1977 by the International Council of Museums, ICOM, to spread awareness about the importance of museums in society. Museums are not only places where ancient objects are stored, but they are also centers of learning, culture, history and research. And Manoj, museums are where history comes alive and curiosity grows. And on International Museum Day, let's just dodge the heat and visit a museum for fascinating stories that exist over there.
0: उन्नीस सौ चौरानवे में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1995 को संयुक्त राष्ट्र सहिष्णुता वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया। गाजा पट्टी क्षेत्र से अंतिम इसराइली सैनिक टुकड़ी हटाए जाने के साथ ही क्षेत्र पर फलिस्तीनी स्वायत्त शासी शासन पूर्णता लागू हुआ।
1: In 1792, the New York Stock Exchange was founded when 24 brokers signed the Buttonwood Agreement on Wall Street. In 1804, Napoleon Bonaparte was proclaimed Emperor of the French. In 1875, the World Meteorological Organization traces its roots to the founding of the International Meteorological Organization.
0: 2006 में आज ही के दिन नेपाल नरेश को कर के दायरे में लाया गया। 2007 में आज ही के दिन कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव को कार्यकाल असीमित समय के लिए बढ़ाया गया।
1: In 1920, first Vatican canonization ceremony of Joan of Arc officially declared Joan of Arc a saint. In 1940, during World War II, Germany launched its assault on Belgium and the Netherlands, escalating the Western Front. In 1954, the U.S. Supreme Court delivered its landmark decision in Brown v. Board of Education, ruling racial segregation in public schools unconstitutional. In 1969, Apollo 10 mission launched as the rehearsal mission before the first moon landing. In 1973, the U.S. Senate began the televised Watergate hearings exposing major political corruption. And in 1974, Smiling Buddha marked India's first successful nuclear weapon test in Rajasthan.
0: 2008 में आज ही के दिन पार्श्व गायक नितिन मुकेश को मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण से सम्मानित किया। आज ही के दिन 2008 में भारतीय मूल के लेखक इंदिरा सिन्हा को उनकी किताब एनिमल पीपल हेतु कॉमनवेल्थ सम्मान प्रदान किया गया। और अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है।
1: वी स्टार्ट विद गुस्ताव माहलर, who was an Austro-Bohemian romantic composer and one of the leading conductors of his generation. He was a composer. He acted as a bridge between the 19th century Austro-German tradition and the modernism of the early 20th century. After 1945, his compositions were rediscovered by a new generation of listeners. Mahler then became one of the most frequently performed and recorded composers, a position he has sustained into the 21st century. In 2016, a BBC Music magazine survey of 151 conductors ranked three of his symphonies in the top 10 symphonies of all time. Here are some soul-stirring notes from Gustav Mahler's Symphony 2 in C minor.

0: आज पुण्यतिथि है मुकुंद दास की। उनका जन्म 22 फरवरी 1878 को ढाका बंगाल में हुआ था। वे बांग्ला भाषा के कवि, गीतकार, संगीतकार और देशभक्त थे। उन्होंने ग्रामीण स्वदेशी आंदोलन के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सन 1905 में अश्विनी कुमार दत्त ने बंगाल के प्रस्तावित विभाजन के खिलाफ बरिसाल टाउन हॉल में एक प्रेरक भाषण दिया था। संदेश को दूर दूर तक फैलाने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कामना की कि नाटकों के माध्यम से नेताओं के संदेश को गांवों तक पहुंचाया जा सके। तब मुकुंद दास अश्विनी कुमार दत्त के भाषण से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने महान देशभक्ति की इच्छा को पूरा करने का संकल्प लिया। 3 महीने के भीतर मुकुंद दास ने अपनी उत्कृष्ट कृति मातृ पूजा की रचना की। उनके नाटक का प्राथमिक विषय देशभक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन था। स्वतंत्रता आंदोलन का लक्ष्य भारत माता को ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्त कराना था।
1: Today we remember Pope John Paul II, who was born on 18th May 1920. Pope John Paul was head of the Catholic Church and sovereign of the Vatican City State from 1978 to 2005. He significantly improved the Catholic Church's relations with Judaism, Islam and the Eastern Orthodox Church. He upheld the Church's teachings on such matters as the right to life, artificial contraception, the ordination of women and a celibate clergy. He was one of the most traveled world leaders in history, visiting 129 countries during his pontificate.
0: आज पुण्यतिथि है पंचानन माहेश्वरी की। उनका जन्म 9 नवंबर 1904 को जयपुर में हुआ था। वे सुप्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी थे। भ्रूण विज्ञान और पादप क्रिया विज्ञान के सम्मिश्रण से उन्होंने एक नई शाखा का विकास किया, टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना तथा टेस्ट ट्यूब कल्चर पर शोध के लिए लंदन की रॉयल सोसाइटी ने पंचानन

आज पुण्यतिथि है रीमा लागू की। उनका जन्म 3 फरवरी 1958 को हुआ था। वे हिंदी फिल्मों की शानदार अभिनेत्री थी। उन्हें मुख्यतः फिल्मों में मां की भूमिकाएं निभाने के लिए जाना जाता है। फिल्म मैंने प्यार किया की मित्र माँ हो या वास्तव की कठोर माँ या फिर ये दिल्लगी की मालिकाना माँ, रीमा लागू की इन भूमिकाओं का कोई सानी नहीं था। उन्होंने नए जमाने की माँ की भूमिकाओं को खूब चरितार्थ किया। आशिकी, साजन, हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, वास्तव, कुछ कुछ होता है और हम साथ साथ हैं जैसी कई फिल्मों में रीमा ने माँ का जीवंत किरदार निभाया। उन्होंने सलमान खान के लिए कई फिल्मों में मां की भूमिका निभाई। टीवी सीरियल तू तू मैं मैं में वे सास के किरदार में थी। उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के पुरस्कार से 4 सम्मानित किया गया था। आइए नजर डालते हैं उनके अभिनय पर।

0: इस पे ऐसे उंगली रखी और तान दिया जिसपे तानने का है, फिगर दबाया और खेल खलास खलास खलास खलास।
1: शांता,
2: मैंने मारा नहीं उसको, मैंने तो मुक्ति दी है अपने बेटे को। सच में मैंने नहीं मारा उसको, मैंने नहीं मारा उसको। वो तो कब का मर गया था, आज जान निकल गई। इसको
3: आज जयंती है नरेश मित्रों की। उनका जन्म 18 मई 1888 को ब्रिटिश भारत के त्रिपुरा के अगरतला में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। उन्होंने 1922 में मिनर्वा थिएटर में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। 1923 में नरेश मित्रों कोलकाता के स्टार थिएटर में शामिल हुए और कई नाटकों में अभिनय किया। उन्होंने उत्तम कुमार अभिनीत कुछ फिल्मों का निर्देशन किया, जैसे बहू ठाकुरानी हाट, अन्नपूर्णार मंदिर। नरेश मित्रों बंगाल के लोक नाट्य यात्रा से भी जुड़े थे। उनके द्वारा निर्देशित फिल्म बहू ठाकुरानी हाट रविंद्रनाथ टैगोर के उपन्यास पर आधारित थी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत।

0: words that are soothing, thoughtful and timeless.
1: और अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यही समाप्त करने की.
0: नमस्कार.
2: नमस्कार. आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
1: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक के लिए संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
2: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की।
3: कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए यूडीएफ कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजय और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
5: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल V.A. वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331-0481 और 0112371-71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलूट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने एचडी देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
6: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और एआई में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। हॉर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमरीका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। एनडीए सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृहमंत्री का ये बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृहमंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और एनडीए की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नवभारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्यबल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग।

फिल्म संगीत में अभी आप सुन रहे थे फिल्म उपकार से मुकेश की आवाज में यह गीत। बोल थे कमर जलालाबादी के संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म शर्मीली से किशोर कुमार की आवाज में यह अगला गीत। संगीत है एस टी वर्मन का, बोल लिखे हैं नीरज ने।

फिल्म संगीत में आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म दिल ने पुकारा से मुकेश के आवाज में यह अगला गीत। बोल लिखे हैं इंदीवर ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

फिल्म संगीत के अगले क्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म परवाना से किशोर कुमार की आवाज में यह गीत। संगीत है मदन मोहन का, बोल है कह कई कैफ़ई आसमी के।

मुखड़ा चमन कंगन है सारे हसी, बस एक तुम्हें रखती हो धन लुटने का डर है।

हिमालय की गोद में फिल्म से आइए अब आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में यह अगला गीत। संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, बोर है कमर जलालाबादी के।

आकाशवाणी के रीवा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और आइए अब आपको सुनाते हैं फिल्म संगीत का यह अगला गीत।

फिल्म संगीत में अभी आप सुन रहे थे फिल्म धर्मात्मा से किशोर कुमार की आवाज में यह गीत। संगीत था कल्याण जी आनंद जी का, बोल थे इंदिवर के। और आइए अब आपको सुनाते हैं यह अगला गीत।

अभी आपने सुना फिल्म शक्ति से, यह है गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत था राहुल देव वर्मन का, बोल थे आनंद बख्शी के। और आइए अब आपको सुनाते हैं यह अगला गीत।

अभिमान फिल्म से सुन रहे थे अभी आप किशोर कुमार की आवाज में यह गीत। संगीत था एसडी वर्मन का, बोल थे मजरू सुल्तानपुरी की। और आइए अब आपको सुनवाते हैं यह अगला गीत।

मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में भी आपने सुना फिल्म दूसरा आदमी से यह गीत। संगीत था राजेश रोशन का, बोल थे मजरू सुल्तानपुरी के। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का यह अगला गीत।

किशोर कुमार की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म संगीत का यह गीत। फिल्म थी सौतन, बोल थे सावन कुमार के, संगीत था उषा खन्ना का। और आइए अब आपको सुनाते हैं यह गीत।

फिल्म निशान से अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल सुर में यह है गीत। संगीत था राजेश रोशन का, बोल थे गुलशन बावरा के। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का यह आखिरी गीत। फिल्म कामचोर से आवाज है किशोर कुमार और का याग्निक की, संगीत है राजेश रोशन का, बोल लिखे हैं दीवर ने।

इसी गीत के साथ ही श्रोताओं, फिल्म संगीत का हमारा आज कार्यक्रम सुनहरे गीत यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेब पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। सुबह के 9:30 होने को है। उर्दू कार्यक्रम आईना कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

आदाब दोस्तों, उर्दू प्रोग्राम आईना को लेकर हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त वाजिद खान। इस प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान गलतियों का पुतला है। इंसान से हमा वक्त खताएं होती रहती हैं, कुछ नासमझी में और कुछ खताएं जानबूझकर। लेकिन इस्लाम में खता से ज्यादा अहमियत इस बात

0: दोस्तों, अभी आप गुलूकार गुलाम अली की आवाज में गजल समात फरमा रहे थे और कलाम था हबीब लतीफ का। सामीन, शहर भोपाल को अदब नवाज शहर कहा जाता है। उसे कहने के पीछे कई अहम तारीखी, सकाफती और अदबी वजूहात हैं, जिनकी बुनियाद पर इसे उर्दू अदब का एक अहम मरकज माना जाता है। ये शहर अजीम शायरों और अदीबों का मस्कन रहा है और दौरे हाजिर में भी ये रिवायत जारी और सारी है। इसी रिवायत को जिन शौरा ने आगे बढ़ाया है, उन्हीं में से एक नाम नुसरत मेहदी का भी है। आइए सुनते हैं नुसरत मेहदी से उन्हीं की जुबानी उनका कलाम, समात फरमाइए।
1: गजल का मतलब पेश करती हूँ। अर्ज किया है कि ये सोचिए कि क्यों हवा पे जोर चल नहीं रहा, ये सोचिए कि क्यों हवा पे जोर चल नहीं रहा, किसी भी रुख से आपका चराग जल नहीं रहा। और हुस्न मतला है कि गलत है ये कि वक्त की जबी पे बल नहीं रहा, गलत है ये कि वक्त की जबी पे बल नहीं रहा, मगर ये पहली बार है कि बल निकल नहीं रहा। और शेर ये कि मैं आजमाइशों में इस मकाम तक तो आ गई, मैं आजमाइशों में इस मकाम तक तो आ गई कि आग में खड़ी हूँ और जिस्म जल नहीं रहा, कि आग में खड़ी हूँ और जिस्म जल नहीं रहा। और शेर के सफर में एक हुजूम था मगर ये राज अब खुला, सफर में एक हुजूम था मगर ये राज अब खुला कि कोई भी यहाँ किसी के साथ चल नहीं रहा। और ये गजल का मतलब है कि मुझसे अनजान तो नहीं हो तुम, मुझसे अनजान तो नहीं हो तुम, इतने बेध्यान तो नहीं हो तुम, इतने बेध्यान तो नहीं हो तुम। और ये बज़ाहिर जो बेनियाजी है, ये बज़ाहिर जो बेनियाजी है, कुछ परेशान तो नहीं हो तुम, कुछ परेशान तो नहीं हो तुम। और कैसी वहशत है क्यों भटकते हो, कैसी वहशत है क्यों भटकते हो, खाना वीरान तो नहीं हो तुम, खाना वीरान तो नहीं हो तुम। और शेर ये कि आओ बैठो करो गिले शिकवे, आओ बैठो करो गिले शिकवे, कोई मेहमान तो नहीं हो तुम, कोई मेहमान तो नहीं हो तुम। और ये बता रखा शेर के इश्क में काम अक्ल से लोगे, इश्क में

काम अक्ल से लोगे, इतने नादान तो नहीं हो तुम, इतने नादान तो नहीं हो तुम। और ये शेर क्या कहा तखलिया, अरे तौबा, कोई सुल्तान तो नहीं हो तुम, कोई सुल्तान तो नहीं हो तुम। संजीदा से गज़ल है, उसका मतलब समाध कीजिएगा। अर्ज़ किया कि वो साथ आया तो मेरी उड़ान बैठ गई, वो साथ आया तो मेरी उड़ान बैठ गई, न जाने क्या हुआ मुझ में थकान बैठ गई। और फिर इसके बाद परिंदे ज़मीं पे गिरने लगे, फिर उसके बाद परिंदे ज़मीं पे गिरने लगे, किसी की आह सरे आसमान बैठ गई, किसी की आह सरे आसमान बैठ गई। और करीब था कि ताल्लुक़ बहाल हो जाता, करीब था कि ताल्लुक़ बहाल हो जाता, अजब खामोशी मगर दरमियान बैठ गई, अजब खामोशी मगर दरमियान बैठ गई। और शेर समाप्त कीजिएगा कि हवेली छोड़ के सब लोग चल दिए, लेकिन हवेली छोड़ के सब लोग चल दिए, लेकिन हर एक हुजरे में एक दास्तान बैठ गई, हर एक हुजरे में एक दास्तान बैठ गई। और शेर समाप्त कीजिएगा कि बुलंदियों पे पहुंचकर मैं खुश बहुत थी मगर, बुलंदियों पे पहुंचकर मैं खुश बहुत थी मगर, ज़मीं की समत जो देखा तो जान बैठ गई, ज़मीं की समत जो देखा तो जान बैठ गई। और मकता है कि ज़बां दराज़ों से नुसरत कहाँ तलक लड़ती, ज़बां दराज़ों से नुसरत कहाँ तलक लड़ती, सो दिल पर सब्र की रख कर चटान बैठ गई, वो साथ आया तो मेरी उड़ान बैठ गई। समझ कीजिएगा आज।

0: आजी है।
1: दोस्तों, अभी आप शायरा नुसरत मेहंदी से उनका कलाम समाप्त फरमा रहे थे। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम आईना यहीं खत्म होता है। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपने खतूत के जरिए हमें जरूर मुत्तला करें। हमारा पता नोट कीजिए, उर्दू प्रोग्राम आईना, मार्फत स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी, शामला हिल्स, भोपाल, पिन 462002। अब आपके दोस्त वाजिद खान को दीजिए इजाजत। आदाब।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम आईना। इसके तहत आज आपने सुनी शमसुद्दीन नदवी से उनकी तकरीर, जिसका उन्वान था इब्न आदम की खता और तसव्वुर माफ़ी। साथ ही आपने सुना नुसरत मेहदी से उनका कलाम। आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है।
1: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गुमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे। मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
0: हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बजे हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
5: आकाशवाणी से प्रस्तुत है भोपाल जिले की चिट्ठी। आलेख ताहिर खान का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। कैडेट्स का चौथा एलिमनी फंक्शन आयोजित किया गया, जिसमें 1975 से अब तक के पूर्व कैडेट्स और नेवी ऑफिसर्स शामिल हुए। अब MP लॉकर एप्लीकेशन के जरिए लोगों को नगरी सेवाएं भी मोबाइल पर मिलेंगी। इसमें संपत्ति कर, जलकर और लाइसेंस समेत 22 से ज्यादा दस्तावेज डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या

विभाग ने उसकी पूरी यात्रा पर नजर रखी है। गर्मी बढ़ने के साथ ही शहर में जूस और लस्सी की दुकानों पर भीड़ बढ़ रही है। मिलावट की शिकायतों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई दुकानों पर छापेमारी की है। रानी कमलापति स्टेशन के पास बंसल वन बिल्डिंग में एनएसजी ने हाई इंटेंसिटी मॉक ड्रिल का आयोजन बीते दिनों किया। आतंकियों से बंधक छुड़ाने और सुरक्षा एजेंसियों के तालमेल का अभ्यास इस मौके पर किया गया। मानसून से पहले डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर शहर में बीते दिनों रैली, नुक्कड़ नाटक और जन जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को बचाव के उपाय बताए गए। रविन्द्र भवन में आयोजित नर्मदा चिंतन संगोष्ठी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान समर्थ दृष्टि साधना के शिखर पुस्तक का विमोचन किया गया और सामाजिक क्षेत्र में बेहतर काम करने वालों को सम्मानित किया गया। रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए 3 समर स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। ये ट्रेनें भोपाल और रानी कमलापति स्टेशन से होकर गुजरेंगी, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। भोपाल में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। राजधानी में पेट्रोल 109.70 रुपए और डीजल 95.04 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। भोपाल और इंदौर का मेट्रोपॉलिटन एरिया अब 28,000 वर्ग किलोमीटर तक विकसित किया जाएगा, जिसमें कई जिलों की तहसीलें और हजारों गांव शामिल होंगे। प्रदेश सरकार ने ओबीसी युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की है। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में बीते दिनों चयनित युवाओं को प्रशिक्षण किट का वितरण किया गया। आईपीएस शैलेंद्र सिंह चौहान ने भोपाल में डिप्टी कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि शहर की शांति और सुरक्षा बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। भोपाल में किरायेदारों, पीजी में रहने वालों और होटल लॉज में ठहरने वालों की जानकारी पुलिस को देना अब जरूरी होगा। पुलिस प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। बीते दिनों मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनीष शर्मा ने जयप्रकाश जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान अनुपस्थित मिले डॉक्टरों को नोटिस भी जारी किए गए। भोपाल के पास बेतवा नदी के सूखे उद्गम स्थल को पुनर्जीवित करने के अभियान के दौरान एक प्राचीन जल स्रोत मिला है, जिसे पार्वती कुंड नाम दिया गया है। सफाई के बाद इसमें फिर से पानी निकलने लगा। जनगणना 2027 के तहत भोपाल में अब तक 3,60,000 से ज्यादा मकानों की गणना पूरी हो चुकी है। बेहतर काम करने वाले प्रगणकों को सम्मानित भी किया गया। बारिश के मौसम में सफाई मित्रों की सुरक्षा के लिए नगर निगम ने उन्हें रेन किट वितरित करना शुरू किया है। पहले चरण में 105 सफाई मित्रों को किट प्रदान की गई। रविन्द्र भवन में बीते दिनों आयोजित KF रुस्तम जी पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 101 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। भोपाल जिला न्यायालय में बीते दिनों राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बिजली बिल, जलकर और संपत्ति कर के मामलों में राहत दी गई और कई विवाद आपसी सहमति से निपटाए गए। बीते दिनों तुलसीनगर स्थित नगर निगम के नए अटल भवन का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्घाटन किया। 43 करोड़ रुपए की लागत से बने इस भवन में अब नगर निगम के सभी दफ्तर एक ही जगह काम करेंगे। भोपाल से पहली बार बीते दिनों सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा रवाना हुई। मुख्यमंत्री ने रानी कमलापति स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस यात्रा में 1100 श्रद्धालु शामिल हुए। प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 62 आईपीएस अधिकारियों के तबादले बीते दिनों किए। नई जिम्मेदारियां एडीजी से लेकर डीसीपी स्तर तक के अधिकारियों को सौंपी गयी। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में ग्रीन बिल्डिंग तकनीक पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें देशभर के इंजीनियर, वैज्ञानिक और उद्योग प्रतिनिधि शामिल हुए। और मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम बीते दिनों घोषित किए गए, जिसके तहत 12वीं में 76% और 10वीं में 73% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस बार भी बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेरिट में बाजी मारी। भोपाल जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे भोपाल जिले की चिट्ठी। आलेख ताहिर खान का था और वाचन स्वर अभिषेक कटियार का। आकाशवाणी का ये
1: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के दीवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। वक्त है सुगम संगीत का। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चंदना दीक्षित की आवाज में इस भक्तिपद के साथ।

चंदना दीक्षित की आवाज में अभी आपने सुना यह भक्ति पद। सुगम संगीत में आइए अब आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह की आवाज में यह भजन।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: सुगम संगीत में श्रोताओं, आइए अब आपको सुनाते हैं जगजीत सिंह की आवाज में खूबसूरत सी गजल।

शफक कहते हैं किरणों को, रेज और धनु रेनबो, महताब चंद्रमा, घटाएं तो आपको मालूम है। शफक धनुक महताब घटाएं तारे नगमे बिजली फूल।

इसी गीत के साथ ही श्रोताओं, सुगम संगीत का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजने को है आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम हम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, प्रस्तुति कविता रावत की है।
1: श्रोताओं नमस्कार, फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो सखी कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। तो जल्दी से उठाइए फोन और कॉल कीजिए 2660902 पे, और एसटीडी कोड आप जानते ही हैं 0755। तो कीजिए कॉल और सुनिए अपनी पसंद के चंद गीत। हेलो।
2: हेलो,
1: हाँ जी नमस्ते।
2: जी नमस्ते।
1: कौन साहब बोल रहे हैं?
2: स्वामी
1: जी।
2: जी मेरे कहते हेलो।
1: हाँ जी बोलिए।
2: आवाज नहीं आ रही है?
1: हमको तो आ रही है आपकी आवाज।
2: आ रही है?
1: हाँ
2: जी जी जी अभी आ रही है।
1: हाँ बताइए कौन बोल रहे हैं?
2: जी मैं तहसील सेंधवा मध्य प्रदेश से देवीदास तिवारी ले बोल रहा हूँ मैडम जी।
1: सेंधवा से देवीदास जी?
2: जी
1: जी देवीदास जी। और सुनाइए क्या हाल है आपके?
2: जी बढ़िया हाल है मैडम जी।
1: और कॉल कितनी बार लगा चुके हैं आप आकाशवाणी में?
2: कम से कम 10 से 12 बार, 10-12 दिन में लगा है।
1: अरे वाह, तो कॉल आपकी बात कब हुई है? एक हफ्ते पहले हुई थी या?

0: बीच में हो चुकी है
1: जी, एक हफ्ते पहले हो चुके।
0: चलिए फिर ठीक है, हम आपसे बात कंटिन्यू कर सकते हैं। बताइए कौन सी फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: जी मुझे गीत सुनना है मैडम जी, फिल्म का नाम है नसीब।
0: नसीब।
1: हाँ
0: अच्छा, नसीब का कौन सा गीत?
1: वो जो नई वाली नसीब।
0: अच्छा, नई वाली नसीब।
1: हाँ
0: हाँ तो गीत बताइए ना कौन सा।

0: पसंद का गीत सुन सकते हैं।
1: जी मैडम
0: ठीक है
1: जी,
0: देवीदास जी, कॉल करने के लिए
1: जी
0: धन्यवाद, और उम्मीद
1: जी
0: करते हैं एक हफ्ते बाद ही दोबारा कॉल कीजिएगा।
1: जी नमस्कार, थैंक यू।
0: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी
1: नमस्ते मैडम जी।
0: जी नमस्ते।
1: हरदयाल जाटव, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश।
0: हरीलाल जाटव, क्या नाम बताया आपने? हरदयाल
1: हरदयाल जाटव।
0: जाटव। हरदयाल जाटव जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे 4-5 दिन पहले ही बात हुई है।
1: नहीं, मैडम जी, मैंने 1 तारीख को बात की थी।
0: अच्छा, 1 तारीख को बात की थी।
1: हाँ,
0: चलिए।
1: शनिवार को भी। आज 17 तारीख है ना।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं। और क्या हाल है
1: अपन
0: आपके?
1: बस बढ़िया है मैडम जी। गर्मी के मार बड़ा हाल है।
0: गर्मी में तो सभी के बुरे हाल है। एसी
1: अब
0: कूलर सब फेल हो रहे हैं इसके आगे।
1: गर्मी में तो जहाँ मान लो कि लाइट आ रही जा रही चली जाती है 2 2 घंटे 3 3 घंटे के लिए, तो
0: वही,
1: और घर से बाहर निकलो तो गर्मी, भीतर रहो तो गर्मी।
0: हाँ वही तो।
1: आप कैसी मैडम?
0: हम बहुत अच्छे हैं, बस चल रहा है काम। गर्मी में रहते हुए सारे काम, अपने कामों में तो कोई रुकावट आती नहीं है ना, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी। है
1: काम
0: ना,
1: तो मैडम, काम तो ऐसा कि वो तो जिंदगी भर लगा है,
0: लगा
1: करो
0: रहता
1: ना
0: है
1: करो तो
0: वो।
1: वो काम तो जिंदगी भर लगा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: हमको सुना दीजिए आंटी नंबर वन का।
0: अच्छा, आंटी नंबर वन।
1: हाँ जी,
0: उसका कौन सा गीत?
1: बुलबुला रे बुलबुला, मैं तेरी बाहों में बुला।
0: अच्छा, बुलबुला। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो
1: हाँ
0: ये
1: जी,
0: गीत हम आपको अवश्य सुनवाएंगे। कल के प्रोग्राम में आप अपना ये गीत सुन पाएंगे, ठीक है
1: मैडम जी,
0: हरदयाल
1: अपना
0: जी?
1: ना अपना नाम।
0: हाँ, मेरा नाम कविता रावत है।
1: आपसे बहुत दिन से मुलाकात हुई, आप पहली बार बात हो रही है आपसे। हाँ
0: जी। नहीं, शायद 1 तारीख को जब आपने कॉल किया था ना, तब हमसे ही बात हुई थी।
1: अच्छा,
0: हाँ, तभी हमें आपका नाम भी याद है।
1: नहीं माने एक मैडम जी आती है कविता रावत, एक और कविता आपसे। अच्छा
0: नहीं, कविता नाम की एक ही अनाउंसर है यहाँ पर।
1: अच्छा अच्छा
0: चलिए,
1: चलो
0: ठीक है हरदयाल
1: तो
0: जी।
1: माने, चलो ठीक है जी,
0: जी
1: ओके।
0: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते मैम। मैं जबलपुर एमपी से आपका श्रोता अशोक सिंह बात कर रहा।
0: कौन बात कर रहे हैं?
1: अशोक सिंह जी,
0: अशोक सिंह जी।
1: मैडम कैसी हैं आप?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए क्या हाल है
1: मैं भी
0: आपके?
1: ठीक हूँ। गर्मी का मजा ले रहे, गर्मी पड़ रही जोरों से अपनी चरण सीमा। जी,
0: देखिए हर मौसम का अपना अलग-अलग मजा है।
1: मजा लेने के ये जो प्रकृति ने बनाया
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन प्रकृति ने बहुत सुहावने मौसम बनाए थे, हम लोगों ने अपने स्वार्थ से परिपूर्ण
1: हाँ,
0: होकर
1: जहाँ
0: खराब
1: के
0: कर दिया
1: अवतार
0: है।
1: सब उनको बजाय अपने ही हैं सब।
0: वही वजह अपनी है खुद।
1: ठीक
0: तो और क्या हाल है आपके, घर में सब कैसे
1: है
0: हैं?
1: मैडम, बस सब परिवार सही है। आपके आपके परिवार और आकाशवाणी टीम भोपाल जी।
0: जी
1: गीत
0: हाँ। गीत बताइए, कौन सा गीत सुनेंगे आप? गीत कौन सा सुनेंगे? फोन करें, गीत सुनने कार्यक्रम है ना।
1: हाँ, गीत सुनवा दीजिए मैडम। गीत सुनवा दीजिए, पलकों की छाँव में। हाँ,
0: पलकों की छांव में, ये फिल्म का नाम है?
1: डकिया डाक लाया।
0: अच्छा, ये तो हमें देखना पड़ेगा कि हाँ मिल गया, डाकिया डाक लाया।
1: किशोर कुमार की आवाज में है ना।
0: हाँ जी बिल्कुल, बहुत सही बोला आपने। और
1: नहीं तो
0: बड़ी,
1: देश प्रेमी का सुनवा दीजिए जी।
0: नहीं, आपने ये बहुत ही उम्दा पसंद है आपकी, छाट कर लाएं ये गीत।
1: हाँ, बहुत याद आती पहले चिट्ठी पत्रियों को
0: बिल्कुल
1: आता था, पोस्टमैन याद करते थे। अभी भी
0: हाँ
1: आते हैं और कम आते हैं।
0: जी। चलिए अशोक सिंह जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक हफ्ते बाद दोबारा आपसे बात होगी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी
1: अब
0: नमस्ते।
1: काफी दिन हो गए मैडम, 2-3
0: जी
1: दिन।
0: जी नमस्ते।
1: नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी,
1: अरे नमस्कार।
0: नमस्ते चांद भाई।
1: अरे कमाल हो गया मैडम जी। ये मान के चलिए, कहते हैं ना, दौलत की तमन्ना है, ना दौलत की तमन्ना है, ना शोहरत की है आरजू, और आपसे बात हो जाए मैडम जी तो सबसे बड़ी जुफ्तजू।
0: अरे वाह चांद भाई, बहुत अच्छी शायरी कर दी है आपने तो।
1: अरे अब आपसे बात कर लेता हूं तो समझ लो कि मुझे लगने लगता है कि नई जिंदगी मिल गई, समझ।
0: बहुत टाइम बाद कॉल किया है आपने ना।
1: अब तो क्या करें, अब अंकुश तो लगा दिए तो उसके तो पाबंदी करना पड़ेगा, प्रतिबंध आपने लगाया है तो उस पर हमें अमल भी करना
0: नहीं
1: पड़ेगा।
0: नहीं प्रतिबंध नहीं है, ये दूसरे सब श्रोताओं के लिए थोड़ा सुविधाजनक बना दिया गया है, आप उस
1: तो
0: पर
1: हम
0: बिल्कुल
1: तो
0: भी
1: खुश हैं मैडम जी, आपसे बताएं सब में खुश हैं, फोन लग
0: सब में।
1: जाए तो, ना
0: देखिए
1: लगे
0: आपका
1: तो
0: आज भी कॉल लग
1: अंकुश
0: गया
1: हूं।
0: और बात हो रही है आपसे, है ना।
1: लेकिन हो गया, अगर काफी इंतजार के बाद कोई चीज या कोई वस्तु मिले मैडम जी तो उसका मजा ही कुछ और अलग होगा।
0: बिल्कुल। अच्छा, हमारे श्रोताओं को बता तो दीजिए कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, क्योंकि हम
1: अब आपने तो सब कुछ बता दिया, पहले से ही बता दिया कि
0: बिल्कुल
1: चांद मोहम्मद भाई बोल रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं
0: बिल्कुल
1: कि ग्राम कल्पा जिला सतना से चांद मोहम्मद खान, ईडन गार्डन अशोक वाटिका से मजनू दीवाना, आकाशवाणी मध्य प्रदेश
0: बिल्कुल
1: भोपाल
0: बिल्कुल। अच्छा चांद भाई, अब ये बताइए कि आज गीत कौन सा सुनना चाहते हैं।
1: का। अच्छा अभी मुझे गलतफहमी हो रही है क्योंकि आप डबल रोल हैं, क्योंकि कविता रावत हो सकती हैं या
0: बिल्कुल,
1: सुनीता।
0: कविता रावत सही पकड़े हैं आप।
1: अरे तो मैडम जी ये मैं बता दूं, सत
0: हाँ
1: बता दूं, बातें हो जाएं क्योंकि काफी

0: दिन में हुई है, गीत भले कम बजाइएगा। मैं बता दूं मैडम जी आपको, ये आकाशवाणी लखनऊ में दीप्ति जोशी, और मथुरा वृंदावन में रश्मि जी, और आकाशवाणी भोपाल में सुनीता और आप, और विविध भारती मुंबई में ममिता सिंह।
1: अच्छा,
0: एकदम इतनी जबरदस्त आवाज, मिलती जुलती हमें लगता है कि आप बहने हैं एकदम। अरे आवाज में कोई भी गलत फहमी नहीं है,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और ये पकड़ हमें जरूर रहती, क्योंकि हम आकाशवाणी के इतने गुलाम हैं मैडम जी, बहुत दूर दूर तक फोन लगाते हैं, सुनते हैं
1: जी,
0: क्योंकि इसीलिए आप लोगों की आवाज पहचानते हैं, कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं।
1: हाँ।
0: और आज अकेले हैं, आपकी भाभी जी नहीं है तो थोड़ा सूना सूना लग रहा है, लेकिन
1: अच्छा।
0: गाना बता दें।
1: हाँ।
0: फिल्म का नाम है मैडम जी, कविता मैडम जी आपसे बताएं, वो है दुश्मन फिल्म है।
1: अच्छा,
0: ये उनकी राजेश खन्ना की।
1: अच्छा अच्छा अच्छा दुश्मन ना करे दोस्त ने जो काम किया है।
0: नहीं, वो तो आखिर क्यों कहा, बाकी तो मैं आपको
1: अच्छा,
0: एक एक पुथाना बांध के रख दूँ।
1: हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है,
0: दुश्मन है और उसके किशोर कुमार की आवाज है, और गीत के बोल हैं कि वादा तेरा वादा।
1: अच्छा।
0: वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, बंदा में सीधा साधा, वादा तेरा वादा। जी वाला मैडम जी,
1: बहुत अच्छा गाना है ये तो, और बिल्कुल हम आपको सुनवाएंगे ये गीत, और यदि ये गीत नहीं मिला
0: तो फिर आप कोई भी सुनवा देंगे दौड़ेगा, लेकिन मिल जाए कोशिश करिए, नहीं तो फिर रोटी का सुनवा देना।
1: मिलेगा मिलेगा वैसे ये गाना।
0: हाँ, नहीं तो फिर कोई भी सुनवा देना दौड़ेगा, फोन अब शामिल करिएगा मैडम जी आप।
1: बिल्कुल आप बिल्कुल कल कल अपना प्रोग्राम सुनिएगा, आपको मिलेगा ये अपना
0: जी,
1: प्रोग्राम
0: जी
1: सुनने को।
0: धन्यवाद मैडम जी। वो हो
1: जी
0: गया फोन 10-15 दिन में लगा है तो का
1: चलिए,
0: बहुत अच्छा है, रोज रोज में मजा
1: जी
0: नहीं आता।
1: जी जी चलिए धन्यवाद।
0: एक बात और बता दे मैडम जी,
1: जी
0: ये प्रेमदास बाबा जी हैं एक हमारे मित्र हैं, उनके साथ में गाना सुनते हैं, और क्या है
1: हाँ।
0: कि क्योंकि गाने बदलते रहो मैडम जी, और ये सब बदलते रहो तो कार्यक्रम की रोचकता बढ़ी रहती है, बनी रहती
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ, और
1: चलिए
0: गाना काफी दिनों से सुनने को नहीं मिला था मैडम जी, तो इसलिए
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनवाएंगे।
0: हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है?
1: नहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए कॉल करने के लिए धन्यवाद चांद भाई, हमारे दूसरे श्रोता भी लाइन में लगे हुए।
0: जी
1: ठीक
0: जी
1: है,
0: आपको प्रणाम दे दीजिए
1: जी,
0: मैडम
1: नमस्ते नमस्ते,
0: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: नमस्ते अमिता दीदी। लास्ट
0: कभी
1: बार आपसे ही बात हुई थी। देखिए, आज लगाया बहुत मेरे लिए लकी रहती हूँ, लग जाता फोन।
0: ये बात सही है। कुछ श्रोता हमारे सच में बहुत लकी हैं,
1: क्योंकि
0: उनका
1: आपसे
0: कॉल।
1: बात हुई थी उसके बाद आप ही फोन लगाया। 15 दिन तो हो गए आराम से। हाँ,
0: अच्छा। शुभ नाम बताइए अपना
1: मैं
0: थोड़ा सा।
1: बरेला की वंदना उपाध्याय बोल रही हूँ दीदी।
0: हाँ, कहाँ से?
1: बरेला जबलपुर।
0: बरेला, जबल।
1: वंदना उपाध्याय बोल रही दीदी। बेल का शरबत पूछा था आपने।
0: नहीं, आप मुझे
1: हाँ,
0: गलत समझ रही हैं। आप कौन सी दीदी समझ रही हैं?
1: अमिता दीदी।
0: अमिता नहीं, कविता। हम लोगों की आवाज में फर्क नहीं दिखा आपको?
1: मुझे तो अभी वैसी लग रही। अच्छा, कविता दीदी है, आपसे मेरी बात
0: जी
1: हो चुकी है।
0: हाँ,
1: हाँ।
0: हम लोग तो बहुत अलग हैं। आपने कैसे हमको अमिता दीदी समझ लिया?
1: तो क्या हुआ
0: नहीं
1: ना,
0: नहीं
1: आप
0: वो बहुत
1: बोल रही
0: सीनियर हैं, बहुत अच्छी वॉइस है उनकी।
1: बहुत अच्छी है। और मैं वही तो, कोई बात नहीं।
0: चलो कोई बात
1: अमिता
0: नहीं,
1: दीदी
0: अमिता
1: नहीं तो
0: दीदी ना
1: कविता
0: सही,
1: दीदी
0: कविता
1: से
0: दीदी सही।
1: नमस्ते कविता दीदी। आपसे भी
0: नमस्ते।
1: मेरी बात हो चुकी है वैसे तो। हाँ, तो कैसे हैं
0: अच्छा,
1: दीदी आप?
0: हम अच्छे हैं। आप बताइए, आपके क्या हाल है?
1: बढ़िया है।
0: गीत बताइए, आज कौन सा गीत सुनने का मूड है आपका?
1: कौन सा गीत? रेडियो बंद करूं पहले मैं। पसंद
0: कोई सा भी अपनी पसंद का बताइए।
1: का? अब आपसे बात हो रही है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा गाना बोलूं। पहले बोलती ये बोला वो बोलूंगी, ऐसा सुनूंगी। ठीक है, मैं बोलती हूँ वो वाला सुना दीजिए। चुरा लिया है तुमने
0: अच्छा,
1: जो
0: यादों
1: दिल
0: की
1: को।
0: बारात फिल्म का।
1: हाँ,
0: ठीक है।
1: और आप बोल रही थी कि रानू गुप्ता का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं भी कर रही हूँ कि वो फोन क्यों नहीं कर रही है।
0: हाँ, मैं
1: हाँ,
0: भी इंतजार कर रही हूँ भाई, बहुत लंबा टाइम हो गया है, क्यों नहीं आ रहा है
1: उनके लिए
0: फोन।
1: गाना डेडिकेट। और हमारे दो फ्रेंड हैं, विपिन कटारे जी
0: हाँ
1: और नंदिनी। ये
0: हाँ ये
1: सब फ्रेंड सर्कल टाइप का बन गया। जब आता नहीं तो इंतजार करते हैं कि यार इसका फोन
0: सच
1: आना
0: बात है,
1: चाहिए
0: सच
1: ऐसा
0: बात है। कुछ लोगों से
1: करके।
0: अपन भले ही मिले नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि काफी उनसे पुराना रिश्ता
1: और
0: है।
1: अच्छी बात करती थी, बढ़िया मस्त मजा आता था। वो लगाती थी फोन, तो
0: हाँ
1: मैं भी वेट कर रही हूँ जैसे आप वेट कर रही हो उनके फोन का, तो मैं भी इंतजार कर रही हूँ। ये मैसेज रानू गुप्ता तक पहुंच जाना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: कोई आपको
0: बिल्कुल, कल
1: याद
0: पहुंचेगा,
1: करता
0: लेकिन
1: है?
0: कल सुनेंगे ना सब प्रोग्राम, तो कल आपका मैसेज
1: हाँ,
0: पहुंचेगा और परसों कॉल करेंगे, देखिएगा।
1: बहुत
0: चलिए वंदना जी, आपसे
1: जल्दी, बहुत
0: बातचीत
1: अच्छा
0: करके
1: लगा
0: बहुत
1: आपसे
0: अच्छा
1: बात
0: लगा।
1: करके।

0: हेलो
1: उठ तो जाओ। हेलो
0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: जी मैम, हम ग्रामपुर जिला सरायपुर से संगीता पटेल बोल रहे हैं।

0: संगीता जी कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: ग्रामपुर छतापुर से। जी
0: छतापुर।
1: जी मैम।
0: अच्छा, और कैसी हैं आप?
1: जी मैम ठीक है, आप कैसे हैं? आप
0: हम भी अच्छे हैं। क्या करती हैं आप?
1: जी घर में रहते हैं, घर का काम करते हैं मैम।
0: घर का काम करना भी आसान थोड़ी ना होता है।
1: जी
0: और
1: आप
0: घर में
1: कविता
0: कौन
1: मैम
0: कौन
1: बोल
0: है?
1: रही? कविता
0: हैं?
1: मैम बोल रही हैं आप?
0: जी कविता मैडम बोल रहे हैं, आपने पहचान लिया।
1: जी मैम आपकी आवाज बहुत सुंदर है। जी
0: थैंक यू, आवाज भी सुंदर होती
1: मैम जब
0: है। अरे वाह,
1: पसंद हो तो शक्ल सुंदर पसंद होती है। जी
0: तो आपकी नजरें बहुत सुंदर हैं, इसका मतलब पता है। अच्छा बताओ संगीता, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: जी मैम हमारे यहाँ तो गर्मी बहुत पड़ रही तो इसीलिए सुनना चाहते हैं, जेठ की दोपहरी में पांव जले हैं।
0: ओहो, दोपहरी में पांव जले, ये वाला मिल
1: जी
0: जाएगा?
1: जी मैम
0: ये वाला गीत है,
1: हाँ
0: सुना है पहले? कौन सी
1: हाँ
0: फिल्म
1: कई
0: का
1: बार
0: है?
1: सुना है मैम।
0: अच्छा, कौन सी फिल्म का है ये गीत?
1: फिल्म तो पता नहीं, वो ऐसे ही जट की दोपहरी में पाँव जले है, सैया पाँव जले
0: चलिए कोशिश करते हैं, अगर ये गीत नहीं मिला तो
1: है, फिर सुनवा देना बालमा का। जी
0: बाल माँ का। हाँ, ये तो गीत बहुत
1: जी
0: प्यारा है।
1: आपसे बहुत दिनों बात हुई, हमको तो याद
0: बाल माँ
1: नहीं
0: का
1: है वैसे
0: कौन सा, ये तो
1: चीजें,
0: बताओ।
1: लेकिन और मैम जी हमसे तो होती रहती है
0: अच्छा,
1: जी।
0: ये तो बताओ
1: आपसे
0: कि है ना, बालमा फिल्म का कौन सा गीत?
1: कोई सा भी सुनवा देना।
0: अच्छा ठीक है।
1: जी
0: चलो संगीता जी, कॉल किया आपने और बहुत प्यारी प्यारी बातें करी, दिल खुश कर दिया।
1: मैम हमको तो आपसे और मैम से किसी भी ऐसी बात हो तो बहुत खुशी होती है, बहुत ज्यादा ही खुशी होती है।
0: चलो, थैंक यू कॉल करने के
1: लेकिन
0: लिए।
1: जी जितना हमें गाना सुनने में वो नहीं है, लेकिन आपसे बात करने में ज्यादा अच्छा लगता है। जी
0: चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।
1: थैंक यू मैम।

0: हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्ते। ग्राम
0: नमस्ते जी।
1: सुराना, जिला रतलाम से बोल रहा हूँ। शेख हैदर खान।
0: शेख
1: हैदर खान?
0: जी, आपसे शायद पहली बार बात हो रही है। शेख हैदर खान जी।
1: नहीं, मैडम, मैं लगाता रहता हूँ, कभी कभी टाइम मिल जाता है तो। मैडम,
0: अच्छा, क्या काम करते हैं आप?
1: मैडम मैं तो यूँ तो किसान हूँ, मतलब खेती का काम है,
0: अच्छा जी।
1: और आकाशवाणी का बहुत पुराना श्रोता भी हूँ मैं। हाँ,
0: चलिए, तो आप बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: ये फिल्म निकाह का गीत तो सुना दीजिए।
0: हाँ,
1: ये दिल की आरजू थी कोई दिल रुबा मिले, महेंद्र कपूर और सलमा आगा की आवाज में गीत है।
0: बहुत प्यारा गीत है ये।
1: हाँ,
0: बिल्कुल, ये गीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन कल सुन पाएंगे आप? ये 11 से 12 बजे के बीच में प्रोग्राम
1: हाँ
0: है।
1: सुन लेना ना, मैं तो रेडियो पे सुनता हूँ मैं।
0: बिल्कुल, तो बिल्कुल सुनिएगा और एक हफ्ते बाद दोबारा कॉल कीजिएगा।
1: ओके ओके, है ना।
0: जी, नमस्ते।
1: नमस्ते, थैंक यू।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो मैम, नमस्ते। मैं
0: नमस्ते।
1: बाग से बोल रही हूँ मैम,
0: कहाँ से? अच्छा,
1: बाग जिला धार,
0: धार जिला से। कौन बोल रही है?
1: बाग। हाँ, हीरू
0: कौन बोल रही है
1: जी बोल रही, हीरू।
0: जी? हीरो।
1: हाँ, बाग से।
0: अच्छा। बताइए, क्या हाल है आपके?
1: आप बढ़िया? आपके कैसे हैं? बढ़िया हो के?
0: हाँ, बढ़िया बढ़िया। और
1: ये सब
0: धार
1: भी
0: में कैसी
1: गर्मी
0: पड़ रही है
1: के,
0: गर्मी?
1: गर्मी तो इधर भी है। था
0: बहुत ज्यादा ना।
1: हाँ,
0: कौन सा गीत सुनना है आज?
1: कौन सा गीत? वो क्या नाम रे, कौन सा, कोई सा भी सुना दो आप।
0: कोई सा भी सुना दें।
1: हाँ
0: चलो, बहुत अच्छी बात है। ये तो आप बहुत ही अच्छी बात बोल रही हैं। हम अपनी पसंद का कोई सा भी गीत सुनवाएंगे आपको, लेकिन निराश नहीं होंगी, वो गीत आपको जरूर पसंद आएगा।
1: हाँ
0: ठीक है हीरो।
1: मेरा मेरा पति मेरा देवता है, वो सुना दो। जैसा
0: अच्छा चलो, मेरा पति मेरा देवता है।
1: है जैसा है मेरा पति
0: हाँ
1: अच्छा है,
0: चलिए, ठीक है,
1: वो बना वो
0: वही
1: गाना।
0: सुना देंगे, वही सुना देंगे। चलिए, कॉल करने के लिए
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद।
1: मैम।
0: भला

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, प्रस्तुति कविता रावत की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास स्टोरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 43 साल में यह पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे की यात्रा पर है। कल तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन होगा जिसमें 5 नॉर्डिक देशों के प्रमुख शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया के 2 देशों के दौरे पर हैं। एक पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस दौरे का उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि यह दौरा दोनों देशों के बीच और उनके साथ भारत की मित्रता के दायरे को बढ़ाएगा। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा की 16 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। आयोग के अनुसार अधिसूचना 25 मई को जारी की जाएगी, वहीं मतदान 18 जून और मतगणना 22 जून को होगी। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए प्रदेश में आज व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया गया। इस चैटबॉट से लोग घर बैठे सोलर पैनल लगवाने की पूरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया को समझ सकेंगे। वहीं मौसम की अगर बात करें तो प्रदेश में तेज गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, रतलाम और खंडवा सहित प्रदेश के 28 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं क्रिकेट की खबर में आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच चेन्नई में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला गीत आप सभी की पसंद पर हमने लिया है फिल्म साजन से। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ को संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने और गीत लिखा है समीर ने। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। आदर्श नगर मलोट से राजू शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी, सौरव और शाइना शर्मा की। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और बेबी आरजू जाजौरिया की। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का फिल्म साजन का ये गीत।

साहिबान, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और जॉली मुखर्जी की आवाज़ों में। बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत था शिव हरी का। पसंद आप सभी श्रोताओं की थी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित की। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा था गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए। पसंद आप सभी श्रोताओं की है छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री की। साथ ही राजारामनगर देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन, राकेश महाजन, उपाध्याय नगर देवास से मुरारीलाल वर्मा, मनीष वर्मा और कमल निगम। आप सभी की फरमाइश है फिल्म दिल है कि मानता नहीं का

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में लीजिए अब सुनिए फिल्म त्रिदेव का गीत मोहम्मद अजीज़ और साधना सरगम की आवाज़ों में। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीता बिरक की। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट की। तो लीजिए सुनिए फिल्म त्रिदेव का ये गीत।

बठिंडा पंजाब रेलवे कॉलोनी से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक और शोभा नायक, कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय सुनना चाहते हैं फिल्म रंग का गीत। आवाज़ें अलका याग्निक और कुमार सानू की हैं, गीत समीर का है और संगीत है नदीम श्रवण का।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: मीडिया में पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व

0: वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव हैशटैग वंदे मातरम 150 के साथ जरूर भेजिए। हैशटैग वंदे मातरम 150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ। 8700
3: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम हम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे

0: श्रोतागण प्रणाम। कैसी लग रही हैं छोटी छोटी कहानियां? आनंद आ रहा है ना? पिछली कथा में मैंने सुनाया था कि दमनक ने करकट को छोटी छोटी कहानियों से ये समझाया कि बुद्धिर्या से बलम तस्य, अर्थात जिसके पास बुद्धि है बलवान भी वही अधिक होता है। अब आगे।
1: हाँ दमनक, तो आप कहते हैं उपाय द्वारा संजीवक और पिंगलक की मित्रता तोड़ी जा सकती है।
2: हाँ मित्र, मैं भी अपने बुद्धि के प्रभाव से उनमें फूट डालकर उनकी मैत्री को भंग कर दूंगा।
1: यदि आपको पूर्ण विश्वास है तो मैं भी आपके साथ चलता हूं। चलिए, हमारा मार्ग मंगलमय हो।
3: आओ आओ दमनक, क्या समाचार है? आजकल दिखते नहीं, साथियों के क्या समाचार हैं?
4: श्रीमान को तो अब हमारा कोई प्रयोजन ही नहीं है और ना ही किसी अन्य पशु का। फिर भी अभयदान हो तो कुछ कहूं महाराज?
3: निर्भय होकर कहो दमनक, हमें ज्ञात है कि आप हमारे शुभचिंतक हैं।
4: मैं आपकी शांति भंग करने कभी नहीं आता महाराज, परंतु राज कार्य की हानि देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो उठा तो मैं चला आया।
3: आपको बातें बनाने की आवश्यकता नहीं है, जो कहना चाहते हैं वही कहें।
4: देव, वो संजीवक आपके प्रति विद्रोह का भाव रखता है। वो आपको मारकर संपूर्ण वन प्राणियों का स्वामित्व धारण करना चाहता है।
3: दमनक, तुम्हें ज्ञात है तुम क्या कह रहे हो। संजीवक और मैं भ्रातुतुल्य मित्र हैं, ये सब तुम्हें कैसे पता चला?
4: महाराज, मुझे वो अपना विश्वस्त समझता है एवं मुझे इस जंगल के मंत्री पद का लोभ भी दिखाता है महाराज।
3: संजीवक मेरे प्राण हैं, वो मेरे प्रति द्रोह बुद्धि रख सकता है, ये मेरी कल्पना से परे है। इतना सब कुछ सुनने पर भी उसके लिए मेरे हृदय में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। जैसे प्रिय व्यक्ति के विपरीत आचरण करने पर भी वो प्रिय ही लगता है।
4: इसीलिए तो राजद्रोह जैसा दोष उत्पन्न होता है। एक बात बताएं महाराज, आप किसी विशेष गुण के कारण उस निर्गुण संजीवक को अपने सन्निकट स्थान देते हैं। देव, यदि ऐसा सोचते हैं कि वो रिष्टपुष्ट बलवान आपके शत्रुओं को मारने में आपकी मदद करेगा तो ये व्यर्थ है, व्यर्थ है। वैसा कभी नहीं होगा क्योंकि वो शाकाहारी है और आप मांसाहारी हैं। अतएव महाराज, मेरी मानिए तो कोई उपाय करके आरोप लगाकर उसे खत्म कर दें।
3: मैं क्या उपाय करूं? दमनक, उसे मैं अभयदान दे चुका हूं, स्वयं उसकी हत्या कैसे करूं? संजीवक मेरा मित्र है। सच कहते हैं कि पहले तो किसी से स्नेह नहीं करना चाहिए और यदि स्नेह कर ही लिया गया है तो उसमें प्रतिदिन वृद्धि होनी चाहिए। स्नेह से किसी को ऊपर चढ़ाकर गिराना नहीं चाहिए।
4: जी महाराज।
3: तभी तो द्रोही होने पर भी मुझे उसके साथ विपरीत आचरण नहीं करना चाहिए।
4: स्वामी, द्रोही व्यक्ति को क्षमादान देना राजधर्म नहीं है, अन्यथा राजा स्वयं ही उसके हाथों मारा जाता है महाराज। एक बात और, संजीवक के संग रहते हुए आपने राजधर्म भी छोड़ दिया है, इस कारण आपके अनुचर भी विरक्त हो चुके हैं महाराज। वो भी आपको छोड़कर चले जाएंगे, फिर आप दोनों ओर से पछताएंगे महाराज।
3: दमनक, आखिर इसके प्रमाण क्या है कि वो मुझ पर दुष्ट बुद्धि रखता है?
4: महाराज, उसने आज मेरे सामने ये निश्चय किया है कि कल प्रातः काल होते ही वो आपको मार डालेगा। यही सबसे बड़ा प्रमाण है। महाराज, कल प्रातः काल वो संजीवक क्रोध से लाल मुख और आंखें लेकर अपने अधरों को फड़फड़ाता हुआ आपकी ओर देखेगा। आप समझ लेना, फिर जो आपको ठीक लगे वो कीजिएगा। मुझे आपको सूचित करना आवश्यक था, सो ही मैंने किया। आखिर आप जाने महाराज।

0: क्या बात है संजीवक जी, कुछ शांत प्रतीत होते हैं।
1: आओ मित्र, आपका स्वागत है। सकुशल हैं?
2: सेवक जन की कुशलता होती कहाँ है?
1: आखिर आप कहना क्या चाहते हैं?
0: मित्र, मंत्रियों के लिए गुप्त मंत्रणा का उद्घाटन करना उचित नहीं। जो व्यक्ति मंत्री पद पर नियुक्त होने पर भी राजा की रहस्यात्मक बातों को सार्वजनिक कर देता है, वो राजकार्य में

0: खाने के अपराध में नरक गामी होता है।
1: आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं भी तो महाराज का मित्र हूं।
0: आपका हृदय तो निश्चल है, परंतु वो पिंगलक आपके ऊपर दुष्ट बुद्धि रखता है। उसने आज एकांत में मुझसे कहा भी है कि वो कल प्रातःकाल होते ही आपको मारकर बहुत दिनों बाद सारे साथियों को तृप्त करे। मैंने उन्हें कितना समझाया कि ये कृत्य उचित नहीं है, आप पर मित्र द्रोह का पाप लगेगा, तो वो मुझे बुरा भला कहने लगे और कहा कि वो मांसाहारी हैं और आप शाकाहारी, इसी कारण आप उनके जातिगत शत्रु हैं और शत्रु को किसी भी उपाय से मारना पाप नहीं है। इसी कारण मैंने आपके सामने रहस्य खोल दिया। अब आप जो उचित समझे वो करें।
1: दमनक, क्या यह संभव है किसी के इतने निकट रहकर उससे बैर किया जा सके? मैं तो चेतना शून्य हो रहा हूं। जो व्यक्ति अपनी मूर्खता से यह समझता है कि मैं राजा का प्रिय हूं, उसे सींग रहित वृषभ के समान समझना चाहिए। मैंने पिंगलक के साथ मित्रता करके बहुत बड़ी भूल की है। अब तक तो उसके साथ ही मेरे विरुद्ध हो चुके होंगे। अब तो मेरे समझाने का भी कोई अर्थ नहीं होगा।
2: सही कह रहे हैं।
1: अब मुझ जैसे निरपराध व्यक्ति के विषय में कोई बातें नहीं सुनेगा।
0: मित्र, यदि यही बात है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पिंगलक से मिलें, अपने वाक चातुर्य से उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न करें। मैं आपके साथ हूं।
1: तुम्हारा प्रेम मैं समझ सकता हूं। परंतु सभासद अगर दुष्ट हो तो भले लोगों का वहां रहना कठिन होता है। वे किसी न किसी उपाय से भले लोगों को मार डालते हैं।
2: ये आप कैसे कह सकते हैं?
1: तो सुनो, किसी वन में मदोत्कट नाम का एक सिंह रहता था। उसके बाघ, श्रीगाल और काक, ये तीन अनुचर थे। एक दिन उन लोगों ने कथनक नामक एक ऊंट को देखा जो वन में अकेले भटक रहा था।
0: अच्छा।
1: उसे देखकर मदोत्कट सिंह ने कहा,
3: ये तो कोई अपूर्व जीव है, लगता है साथियों से बिछड़ गया है। ये वन का है या ग्राम्य जीव?
4: स्वामी, कथनक नाम का ये ऊंट गांव का है। ये आपका भक्ष्य है, आप इसको मार डालिए।
3: नहीं नहीं, मैं घर आए अतिथि को नहीं मारता। शत्रु भी अगर अतिथि बनकर आए तो उसे मारने से पाप लगता है, अतः उसे अभय दान देकर यहां ले आओ, जिससे मैं उससे यहां आने का कारण पूछ सकूं।
4: महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज, आपकी आज्ञा से कथनक को मैं ले आई।
3: कहिए कथनक जी, आप गांव से जंगल की ओर कैसे भटक गए?
5: महाराज, मैं अपने सार्थवाह और साथियों से बिछड़ गया हूँ। भूखा प्यासा धूप में भटक रहा हूँ, पता नहीं कब मालिक के पास पहुंचूंगा।
3: मित्र, अब जब आप गांव से वन आ ही गए हैं तो अब पुनः गांव जाकर भार ढोने के कष्टकारक काम की क्या आवश्यकता है? इसी वन में निर्भय होकर निवास करें और कोमल घास को चरें।
5: महाराज की जय हो।
6: तब से ही वो कथनक मदोत्कट एवं उसके अनुचरों के साथ सानंद रहने लगा। एक दिन मदोत्कट का किसी जंगली हाथी के साथ भीषण युद्ध हुआ।

0: हाथी के मूसल समान दांतों के प्रहार से सिंह को बड़ा कष्ट हुआ। भयंकर पीड़ा को सहकर भी वो बच गया, परंतु शरीर के शक्तिहीन हो जाने के कारण वो चलने फिरने में असमर्थ हो गया। उसके पराक्रम के अभाव से अनुचर भूख से व्याकुल होकर छटपटाने लगे।
1: बाघ, शगाल, आप जाकर ऐसे किसी जीव की खोज करें जिसे इस अवस्था में भी मैं मार सकूं और आप सबके भोजन का प्रबंध कर सकूं।
2: जो आज्ञा महाराज।
3: प्रिय बाघ भाई, हम सब तो बहुत भटक चुके हैं, भूख भी लग रही है।
2: बहुत अधिक भटकने से क्या लाभ। मेरे ध्यान में एक योजना आई है जिससे हमारा पेट भी भरेगा और दूर भी नहीं जाना पड़ेगा।
4: तो इस उपाय को बताने में विलंब क्यों, शीघ्र बताएं।
2: ये कथनक हमारे किस दिन काम आएगा। आज इसी को मारकर भोजन किया जाए।
4: आप ठीक कहते हैं, परंतु स्वामी ने तो इसे अभयदान दिया है, आप और हम इसे कैसे मार सकते हैं?
3: मित्र काक, मैं स्वामी को समझाकर इस बात के लिए सहमत कर सकता हूँ कि वो इसे मारने को तैयार हो जाएं। आप लोग यहीं ठहरिए। महाराज को श्रृगाल का प्रणाम।
1: कहो श्रृगाल, क्या किसी जीव को खोज लाए हो?
3: स्वामी, संपूर्ण घूमकर हम वापस लौट चुके हैं, एक भी जीव नहीं मिला।
1: अब क्या किया जाए, दुर्बलता के कारण मैं अधिक परिश्रम भी नहीं कर सकता। आप सब भूख से व्याकुल होंगे।
3: भूख की क्या बात है महाराज, अब तो एक पग चलना भी शक्ति से बाहर है। आपकी दशा क्या अलग है? ऐसे में यदि आपकी आज्ञा हो तो कथनक के मास से आपके लिए भोजन का प्रबंध किया जाए।
1: धिक्कार है पापी, यदि फिर कभी ऐसी बात कहोगे तो तुम्हें उसी क्षण मार डालूंगा। तुम्हें ज्ञात नहीं, मैंने उसे अभयदान दिया है, उसे मैं स्वयं कैसे मार सकता हूं?
3: धृष्टता क्षमा करें महाराज, यदि आप उसका वध करते हैं तो निसंदेह दोष आपको लगेगा, परंतु यदि स्वामी भक्ति के कारण वो स्वयं जीवन का बलिदान करता है तब तो कोई दोष नहीं
1: है। ये कैसी अनर्गल बात है, वो स्वयं ऐसा क्यों करेगा?
3: अगर कथनक ऐसा नहीं करता है तो आप हम तीनों में से किसी को भी मार कर अपना भोजन बना लीजिएगा। यदि स्वामी की रक्षा में हम इतना भी नहीं कर सकते तो स्वामी के अनिष्ट होने पर हमें तो वैसे भी अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा।
1: ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा हो करो।
0: फिर तीनों ने दुष्ट चाल चली और कथनक को लेकर मदोत्कट के पास जाकर बैठ गए।

0: स्वामी, हम संपूर्ण वन घूम आए, ना तो कोई जीव मिला ना ही दिखाई पड़ा। प्रभु, आज आप मुझे ही खाकर अपने प्राणों की रक्षा करें, जिससे आपको थोड़ी शक्ति मिले और मुझे सदगति, क्योंकि अपने स्वामी के लिए प्राण त्याग करने वाला मोक्ष प्राप्त करता है।
1: भग्निका, आप नारी हैं और अल्पकाय हैं, आपसे स्वामी का पेट नहीं भरेगा, अपितु जीव वध का

0: पाप भी लगेगा। आपने अपनी स्वामी भक्ति तो दिखा दी, स्वामी से उदर पूर्ति ग्रहण करने का ऋण भी चुका दिया, दोनों लोकों में आपकी प्रशंसा भी हो चुकी। अब आप स्थान ग्रहण करें ताकि मैं स्वामी से कुछ कह सकूं।
1: आप बड़े हैं श्रीगाल भाई, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी।
0: स्वामी, सेवक का जीवन स्वामी के अधीन होता है, वो समय आने पर उसे लेने से पाप का भागी नहीं होता है। तो देर ना करके मेरे शरीर से भोजन ग्रहण करके जीवन निर्वाह किया जाए और मुझे तीनों लोक में यश का भागी बनने दिया जाए।
2: मित्र श्रीकाल, आप महाराज के सजातीय भी हैं और अल्पकाय भी। नाखून लंबे होने के कारण आप अभक्ष्य भोजन हैं। थोड़ा सा अभक्ष्य भोजन करके अपना परलोक क्यों नष्ट करना? वैसे आपने कुलीन होने का जो परिचय दिया है वो प्रशंसनीय है, परंतु अभी मैं स्वामी के समक्ष कुछ निवेदन करना चाहता हूं।
0: ठीक है बाघ मामा, जैसा आप चाहें।
2: महाराज, आज मेरे शरीर से भोजन किया जाए, मुझे स्वर्ग का अक्षय वास दिया जाए, पृथ्वी पर मेरे यश का विस्तार हो। अब इस विषय में कोई भी विकल्प न सोचा जाए महाराज, मुझे ग्रहण करें, मुझे ग्रहण करें महाराज।
3: इन सभी ने मीठी बातों से स्वामी के हृदय में अपना स्थान बना लिया। प्रभु ने किसी को भी नहीं मारा। मैं भी सही समय में स्वयं को निवेदन कर दूं, मेरी बात सुनकर सब मेरी प्रशंसा करेंगे और स्वामी मुझे नहीं खाएंगे। बाघ मामा, आप ठीक कहते हैं, परंतु आप भी तो नखयुक्त जीव हैं, आपके मांस को भी स्वामी कैसे खा सकते हैं? कहते हैं जो मन से भी अपनी जाति का अनिष्ट चाहता है उसका दोनों लोकों में अनिष्ट होता है। अतः मामा आप हट जाएं ताकि मैं स्वयं को प्रस्तुत कर सकूं।
2: नहीं कथनक, आप तो अतिथि हैं, आपको कैसे मार सकते हैं?
3: स्वामी, ये सभी आपके भोजन के लिए अयोग्य हैं, अतः आज मेरे शरीर से जीविका चलाई जाए। महात्मा साधुजन वर्षों की तपस्या से जिस सदगति को प्राप्त करते हैं वो एक श्रेष्ठ सेवक स्वामी के लिए प्राण देकर प्राप्त कर लेता है।
4: आप बिल्कुल सही कहते हैं कथनक। आओ साथियों, आओ।

0: कथनक के निवेदन को सुनकर सिंह की आज्ञा से श्रगाल तथा व्याघ्र ने मिलकर उसे फाड़ डाला। कथनक का प्राणांत हो गया। सिंह के साथ भूख से पीड़ित अनुयायियों ने कथनक को खा डाला। ये कहानी सुनाकर संजीवक ने दमनक से कहा,
1: अम्मा समझ नहीं आता, अब मैं क्या करूं?
2: मेरे विचार से आप कहीं विदेश भाग जाएं।
1: नहीं नहीं, जब पिंगलक क्रुद्ध है तो मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए।
2: अरे ये दुष्ट तो युद्ध के लिए प्रस्तुत जान पड़ता है। इसने अगर अपने तीखे सींगों से स्वामी पिंगलक पर प्रहार किया तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे किसी भी तरह से

0: इसे अन्यत्र भेजना होगा। मित्र, आप ठीक कहते हैं, पर स्वामी और भृत्य में संग्राम होना उचित नहीं है। क्योंकि कहते हैं बलवान शत्रु को देखकर उत्तेजित होना मूर्खता है। ऐसे में अपमानित होना पड़ता है, जैसे टिप-टिप को होना पड़ा समुद्र के सामने।
1: और फिर उस दुष्ट दमनक ने संजीवक के मन में पाप भर दिया, फिर उसे वहां से भाग जाने के लिए तरह तरह के प्रपंच रचकर सुनाने लगा, जिसमें टिप-टिप और समुद्र की कथा सुनाई। पर वो कथा आप सुनेंगे अगले सप्ताह, आज ही के दिन, आज ही के समय। तब तक के लिए नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम से मिलेंगे। प्रधानमंत्री जोनास टोरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 43 साल में पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे की यात्रा पर है। कल तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन होगा जिसमें पांच नॉर्डिक देशों के प्रमुख शामिल होंगे। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्जवल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई को राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस साल कुल 131 पुरस्कार दिए जाएंगे जिनमें 5 पद्म विभूषण 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल है। पश्चिम एशिया संकट के बीच 20,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर एक जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार कर गुजरात के कांडला बंदरगाह पहुंच गया है। मार्च के शुरू से 12 एलपीजी टैंकर्स और एक कच्चे तेल के टैंकर सहित 13 भारतीय जहाज स्वदेश आ चुके हैं। जबलपुर में कल हाईकोर्ट के कई डिजिटल प्लेटफॉर्म एक साथ लॉन्च किए गए। अब कोर्ट की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग, ऑर्डर की डिजिटल कॉपी और कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया ऑनलाइन हो सकेगी। एआई से लैस प्रथम सिस्टम और संकेत वाणी ऐप भी लॉन्च हुई। और आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में आज चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच चेन्नई में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से लीजिए सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रेक्षा सक्सेना। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। श्रोताओं, गर्मी का मौसम आते ही शरीर जल्दी थकने लगता है, पसीना अधिक आता है और पानी की कमी से कई स्वास्थ्य समस्याएं भी होने लगती हैं। ऐसे समय में पेट भरना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि ऐसा भोजन जरूरी होता है जो शरीर को सही पोषण और ऊर्जा दे। इसी को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है फॉर्मुलेटेड डाइट, यानी ऐसा संतुलित आहार जिसे शरीर की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। ये एक ऐसी डाइट है जिसमें शरीर की उम्र, स्वास्थ्य और जरूरत के अनुसार पोषक तत्वों का सही संयोजन होता है। इसमें प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और पर्याप्त तरल पदार्थ शामिल किए जाते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहे। इस डाइट में सामान्यतः दालें, दूध और दुग्ध उत्पाद, हरी सब्जियां, मौसमी फल, साबुत अनाज, सलाद, दही, छाछ, नारियल पानी और पर्याप्त पानी शामिल होते हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें कम तेल मसाले और आसानी से पचने वाला भोजन भी शामिल किया जाता है। गर्मियों के मौसम में फॉर्मुलेटेड डाइट जरूरी हो जाती है, क्योंकि इस मौसम में शरीर में ऊर्जा और पानी की कमी जल्दी होने लगती है। संतुलित और पौष्टिक भोजन शरीर को हाइड्रेटेड रखता है, थकान कम करता है, पाचन को बेहतर बनाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करता है। तो श्रोताओं, आप भी अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, फॉर्मुलेटेड डाइट डाइटिशियन की सलाह से लें एवं इसका लाभ उठाएं। पर अभी सुने ये मधुर गीत।

0: आंखों की श्रोताओं, जब चिकित्सा पद्धति की बात आती है तो आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको सुनवा रहे हैं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति और स्वास्थ्य विषय पर एक भेंट वार्ता। वार्ताकार है डॉक्टर ऋषि मिश्रा और भेंट करता है मनीष गजबीय।
1: श्रोताओं नमस्कार। आयुर्वेद से हम सभी परिचित है, यह भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति में से एक है। आज हम जानेंगे कि आयुर्वेद किस प्रकार कार्य करता है और इसमें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। इन्हीं विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियोज में उपस्थित है डॉक्टर ऋषि मिश्रा। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
1: ऋषि जी। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति क्या है और यह किस तरह से काम करती है।
2: यह चिकित्सा पद्धति सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो कि पुराने समय में भी बहुत लाभदायक थी और आज के समय में भी बहुत लाभदायक है
1: जी।
2: इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, आयुर्वेद का जो प्रयोजन है वह है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रश्नम। इसका मतलब है हम स्वस्थ व्यक्तियों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं
1: जी।
2: और साथ ही अगर कोई व्यक्ति रोगी हो जाता है तो उसके रोग का निर्मूलन कैसे पकड़ सकते हैं
1: जी जी जी।
2: इसमें आपको क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव दोनों एस्पेक्ट देखने को मिलेंगे
1: जी।
2: हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं अपने आप को रोगों से और क्योर कैसे कर सकते हैं
1: जी। ऋषि जी, आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी हो गई है तो लोगों को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, आयुर्वेद के द्वारा कैसे दूर किया जा सकता है इन बीमारियों को।
2: जी बिल्कुल, ये

0: एक बहुत ही अच्छा सवाल है और अभी के समय में लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम क्यों रोगी हो रहे हैं
1: जी।
0: और यह लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज ज्यादा अपने को देखने में आ रही है, जैसे मोटापा हो गया, बीपी हो गया, ये बीमारियां ज्यादा देखने में आ रही है और ये बहुत कॉमन होती जा रही है
1: जी।
0: इन बीमारियों से बचने के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छा वर्णन है और हमको इसमें ऋतुचर्या, दिनचर्या का पालन करना चाहिए। ऋतुचर्या और दिनचर्या के पालन करने से हमारे जो रोग हैं ये हम रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, उनकी तीव्रता को भी कम किया जा सकता है
1: जी। डॉक्टर साहब, ये आपने बात करी जैसे मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की, तो ये जो डायबिटीज ब्लड प्रेशर है क्या इसका इलाज भी संभव है आयुर्वेद में?
0: हाँ जी बिल्कुल, इसका वर्णन है आयुर्वेद में। डायबिटीज को हम मधुमेह कहते हैं जो कि प्रमेह के अंतर्गत बताया गया है और उसके अंदर उसके कारणों को भी बताया है और उसका निदान भी बताया है, इलाज भी बताया है
1: जी। डॉक्टर साहब, आजकल लाइफस्टाइल है बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है, तो स्वास्थ्य की हम बात करते हैं तो उसमें आजकल जो सबसे बड़ा प्रश्न है वह है मानसिक स्वास्थ्य का भी, तो क्या मानसिक स्वास्थ्य का भी इस चिकित्सा पद्धति में इलाज संभव है?
0: हाँ जी बिल्कुल है, और हमारे प्रकृति में ऐसी कई वनौषधियां हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। जैसे आपको शंख पुष्पी हो गई, ब्राह्मी हो गई, जटामांसी हो गई, ऐसे कई मेद्य द्रव्य बताए गए हैं जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर अच्छा लाभ प्राप्त करवाते हैं। साथ ही आयुर्वेद में एक पंचकर्म चिकित्सा भी है जिसमें शिरोधारा प्रक्रिया यह इसके लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें शिरोवस्ति होती है, शिरो अभ्यंग होता है, ये भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया चीज है
1: जी। जी
0: आयुर्वेद में योग का भी वर्णन है, योग में आपको ब्राह्मी प्राणायाम होता है, इससे भी लाभ मिल सकता है। तो मतलब बहुत तरीके से हम मानसिक चिकित्सा इसमें हम दे सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: मानसिक रोगों में।
1: डॉक्टर साहब, अब जैसे आपने बात करी पंचकर्म की, तो आजकल पंचकर्म क्रिया का भी नाम आयुर्वेद में बहुत ज्यादा सुना जा रहा है, तो क्या यह पंचकर्म जो प्रक्रिया है उससे किसी भी तरह के पेशेंट को किस तरह का लाभ मिलता है इस पद्धति के द्वारा?
0: पंचकर्म एक शोधन चिकित्सा है। हम आयुर्वेद में ये देखते हैं कि रोगी के अंदर कौन सा दोष बढ़ा हुआ है जिसमें वात, पित्त, कफ हमारे मुख्यतः दोष माने गए हैं और ये अपने सही प्रमाण से ऊपर रहते हैं तो वो दोष के लक्षण दिखाते हैं। तो इन दोषों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो पंचकर्म है। इसमें कुछ हद तक हम शमन चिकित्सा के रूप में या रोगों को थोड़ा सा सप्रेस करने के लिए भी प्रयोग करते हैं और ये आत्यिक चिकित्सा के रूप में भी काम आती है, मतलब एक्यूट पेन रिलीफ करने में भी मदद करती है
1: जी।
0: पंचकर्म को हम मुख्यतः तीन भाग में डिवाइड करते हैं। पहला होता है पूर्व कर्म, दूसरा होता है प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में आता है स्नेहन स्वेदन जिसमें हम ऑयलिंग करते हैं, स्टीमिंग करते हैं, उसका भी बहुत सारा अलग विस्तृत वर्णन है जिसमें अलग अलग रोग के हिसाब से हम उसको प्रयोग में लाते हैं। मुख्यतः प्रधान कर्म में आते हैं जो पांच मुख्य कर्म है, उसमें वमन आता है, मेडिकेटेड वोमिटिंग, दूसरे नंबर पर आता है विरेचन, मेडिकेटेड लूज मोशन, फिर तीसरे नंबर पर आती है बस्ती चिकित्सा जिसमें हम ऑयल और काढ़े को एनस में इंट्रोड्यूस करते हैं, चौथे नंबर पर आता है रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण के अंदर हम ब्लड लेटिंग करते हैं, कहीं किसी पार्ट में अगर हमारे को कहीं ब्लड एक्यूमुलेट हो गया है या वहां घाव बन रहा है तो उस जगह से हम दूषित रक्त को निकालते हैं। पांचवें नंबर पर आता है नस्य प्रक्रिया। नस्य प्रक्रिया यानी नाक में मेडिकेटेड ऑयल को, कुछ चून को या काढ़े को इंट्रोड्यूस किया जाता है एक चिकित्सक के देखरेख में और वो प्रक्रिया हमको बहुत अच्छा लाभ देती है। ऐसे ये पांच मुख्य कर्म पंचकर्म में आते हैं। इसके बाद पश्चात कर्म होता है, जब भी हम कोई कर्म कर रहे होते हैं तो उसके बाद में जो पश्चात कर्म में धूमपान वगैरह होता है, संसर्जन कर्म होता है, उसको फॉलो किया जाता है
1: जी। जी तो ये आपने पंचकर्म की बात करी, तो पंचकर्म करने के लिए क्या पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होना अनिवार्य है या वह घर में रहकर भी इस चिकित्सा पद्धति का लाभ ले सकते हैं?
0: नहीं, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमको चिकित्सक की देखरेख में ही कराना है क्योंकि ये प्रक्रिया थोड़ी सी आसान नहीं है। इसमें चिकित्सक उसको रेगुलर मॉनिटरिंग करता है, देखता है कि उसके वाइटल्स क्या है, उसकी स्थिति क्या है, क्या वो प्रोसीजर के लायक है या नहीं है, इस प्रकार से वो डिजाइन करता है एक चिकित्सक। तो इसलिए इसको हॉस्पिटल में कराना या एक कुशल चिकित्सक की देखरेख में कराना ज्यादा उचित होगा
1: जी। जी जी अब जैसे आपने बात करी पंचकर्म की, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस पद्धति में खान पान की भूमिका क्या रहती है?
0: हम चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो आहार हमारी सबसे पहली चिकित्सा है। आहार से ही हम अपने आप को ठीक भी कर सकते हैं। अगर जैसे एक उदाहरण के तौर पे ले लें कि हमको एसिडिटी हो रही है, हमको जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, हम उसमें अगर तीखे पदार्थ लेते हैं तो वो उसको और एग्रीवेट करता है। उसी के बदले में अगर हमने उसमें थोड़ा सा मधुर द्रव्य दिया तो उसको सबसाइड कर देगा। तो आहार का तो बहुत अच्छा वर्णन है आयुर्वेद में और आहार का महत्व भी बहुत कुछ है इसमें।
1: जी जी जी, हम अपने श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे कि आजकल की जो बदलती हुई जीवन शैली है उसमें आहार का विशेष कर ध्यान रखें, क्योंकि आहार के माध्यम से जैसा भी हमें डॉक्टर साहब ने भी बोला, काफी हद तक हम चीजों को या बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब डॉक्टर साहब, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न वो यह है कि क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी जारी रख सकते हैं?
0: ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। आज के दौर में देखने में आता है हमारे प्रैक्टिस लाइन में कि रोगी पहले से ही कुछ मेडिकेशन करता हुआ आ रहा है और वो डिपेंडेंट भी है उसके ऊपर। अब वो चाह रहा है कि मैं थोड़ा स्विच हो जाऊं या मैं उसमें कुछ और अधिक लाभ प्राप्त कर सकूं, तो बिल्कुल आयुर्वेद की उसमें मदद लेनी चाहिए और पैरेलल में आप बिल्कुल ले सकते हैं। अपने डॉक्टर को बता दीजिए और उनके संपर्क में रहिए और फिर आप टैपरिंग डोज में धीरे धीरे अपनी मॉडर्न मेडिसिंस को आप रिड्यूस करते जा सकते हैं और आयुर्वेद को आप लेते जाएं। ऐसे करके आपका स्वास्थ्य में अच्छा लाभ मिलेगा।
1: जी डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न जो जहन में आ रहा है वो यह आ रहा है कि आयुर्वेद के क्या कोई साइड इफेक्ट है?
0: इसके अंदर मैं बताना चाहूंगा, देखिए किसी भी चीज की अगर अति मात्रा लेंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। चाहे हम डे टू डे लाइफ में शक्कर ज्यादा खा रहे हो तो उसका भी हमको लाभ नहीं मिलेगा, नुकसान होने लगेगा। ऐसे ही आयुर्वेद के चिकित्सा है, इसको आपको उचित मात्रा में, उचित प्रमाण में अगर लेंगे तो लाभदायक है। अनुचित प्रमाण में ले रहे हैं और गलत तरीके से ले रहे हैं तो उससे फिर आपको फायदा नहीं मिलेगा, कुछ नुकसान जरूर पहुंचेगा। जो कि आपको अगर चिकित्सक परामर्श देते हैं तो वो उस समय वर्णित करते हैं कि इसको इस तरीके से इस मात्रा में लेना है तो वो लाभदायक बनेगी।
1: जी जी जी, जी। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या आयुर्वेद में ऑपरेशन के माध्यम से भी इलाज संभव है किसी बीमारी का?
0: बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है। आयुर्वेद सिर्फ औषधि सेवन करने की विधा नहीं है, इसके अंदर ऑपरेशंस भी बताए गए हैं। इसके जो आचार्य हैं वो आचार्य सुश्रुत हैं, जिनको मॉडर्न के डॉक्टर भी अपना फादर ऑफ सर्जरी मानते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने बहुत अच्छा वर्णन किया है और हमारे यहाँ आज भी कई बीमारियों के ऊपर सर्जरी होती है, जैसे मुख्यतः पाइल्स के अंदर, भगंदर यानी फिस्टुला, इसके अंदर की जाती है सर्जरी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम मेडिसिन से पहले क्योर करने की कोशिश करते हैं। अगर ज्यादा देर हो गई है और बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो गया है डिजीज, तो फिर सर्जरी भी की जाती है जिसमें चार सूत्र पद्धति से इलाज किया जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों को अक्सर देखा है कि वो सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं बिना डॉक्टर के परामर्श के, स्वयं से ही दवाई ये सोच के ले लेते कि शायद आयुर्वेद में किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं बताना चाहूंगा कि ये सेल्फ मेडिकेशन की चिकित्सा विधा नहीं है। ये दिखती आसान है पर इसके अंदर बहुत कुछ अध्ययन करने की जरूरत होती है। हम एक औषधि के अंदर रस, गुण, वीर, विपाक सब कुछ देख रहे होते हैं और एक आयुर्वेद चिकित्सक अपने 5.5 साल की पढ़ाई करके एक बैचलर डिग्री प्राप्त करता है। आज के समय में इसमें स्पेशलाइजेशन होने लग गया है, इसमें MD होने लग गई है, तो स्पेशलाइजेशन होने से और क्वालिटी इनहेंस हुई है। तो सेल्फ मेडिकेशन लेने से कई गलतियां होने के चांसेस बनते हैं और जो कि रोगी को भोगने पड़ते हैं और फिर वो समय की भी मर्यादा है। अगर कोई रोगी अपने जितनी जल्दी डॉक्टर के पास में पहुंच जाता है तो रोग को ठीक करने में हमें समय कम लगता है और जितना समय ज्यादा गवा देता है उतने ही कॉम्प्लिकेशन उसके साथ में जुड़ जाते हैं, तो फिर इलाज करने में देरी होने लगती है। तो बेहतर है कि हम सेल्फ मेडिकेशन करके टाइम वेस्ट ना करें और हम उसकी जगह पर चिकित्सक से परामर्श ले लें तो जल्दी समय मिलेगा इलाज करने का और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, जल्दी ठीक होने की बारी आ जाएगी।
1: जी।
0: इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, आज के दौर में तो इंटरनेट पर अवेलेबल हो गए हैं रील्स वगैरह जिसमें लोग अपना उधर से देख के सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, जो कि हमारे प्रैक्टिस में देखने में आ रहा है। तो ये वही श्रोता है जो सेल्फ मेडिकेशन पर चले जा रहे हैं या वो किसी रील्स के कारण देख रहे हैं या ले रहे हैं दवाइयों को, यह अनुचित है। इसमें आप उस विंडो पीरियड, वो जो पीरियड है, जो शुरुआती पीरियड है जिसमें हम जल्दी ठीक कर सकते थे, वो गंवा देते हैं
1: जी।
0: और फिर दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो डॉक्टर के लिए भी आप चुनौती बढ़ा रहे हैं और अपने लिए भी बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा मुझे कहना है कि ये सेल्फ मेडिकेशन को तो बिल्कुल ना करें। हमारे आसपास चिकित्सक अवेलेबल हैं और उनको दिखा के आप चिकित्सा परामर्श लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा
1: जी। बहुत अच्छी बात की आपने और हम अपने तमाम श्रोताओं को यही

0: चाहेंगे कि सोशल मीडिया के जो दौर है उसमें बिल्कुल भी आप किसी तरह की रील को या किसी तरह की साइट पे जाकर स्वयं से उसका इलाज करने की कोशिश ना करें। डॉक्टर है, डॉक्टर से परामर्श लें और तभी आप अपना इलाज करें। कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को कि वह किस तरह से अपनी स्वस्थ जीवन शैली को अपना सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से?
1: आयुर्वेद एक आपको बहुत अच्छा साइंस मिला है और उस साइंस में क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव दोनों चीजें मेंशन है। तो आप अपने स्वास्थ्य का अच्छे से अच्छा ध्यान रख सकते हैं अगर आप आयुर्वेद को फॉलो करते हैं। मुख्यतः आहार पर अपना ध्यान रखना चाहिए। आज की तारीख में जंक फूड, फास्ट फूड बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी है और वही हमको नुकसान दे रही है। दूसरा, हमारी निद्रा हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है,
0: जी।
1: उसको भी प्रॉपर लेना है। ये नहीं कि अपने कार्य के कारण आप निद्रा को प्रॉपरली ना लें तो फिर आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं होगी और आपको कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। तो आहार और निद्रा पे विशेष रूप से ध्यान रखें तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाएंगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका कार्य क्षमता अच्छी रहेगी।
0: डॉक्टर साहब, निश्चित तौर पर आपके द्वारा जो बताई गई बातें हैं वह हमारे श्रोताओं के काम आएगी, हम यही उम्मीद करते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियोज में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुनी आयुर्वेद और स्वास्थ्य विषय पर डॉक्टर ऋषि मिश्रा से मनीष गजबिये की बातचीत और अब सुनिए ये प्यारा संगीत।

श्रोताओं, आज का युग तकनीक का युग है। तकनीक ने जहां हर क्षेत्र में अपना स्थान लिया है, वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र को पूरी तरह से बदल दिया है। आज मोबाइल एप्स, स्मार्ट वॉच और ऑनलाइन परामर्श की मदद से लोग घर बैठे अपनी सेहत पर नजर रख पा रहे हैं। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद और कदमों की गिनती जैसी जानकारियां अब तुरंत मिल जाती हैं। टेलीमेडिसिन के माध्यम से अब दूर दराज के मरीज भी विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह ले पा रहे हैं। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI कई बीमारियों की पहचान जल्दी करने में मदद कर रहा है, लेकिन तकनीक का सही उपयोग भी आवश्यक है। केवल इंटरनेट की जानकारी पर भरोसा करने की बजाय डॉक्टर से सलाह लेना भी आवश्यक है। स्क्रीन टाइम कम करना रखना व नियमित व्यायाम भी उतना ही जरूरी है। अब तो तकनीक

इतनी एडवांस हो गई है कि ऐसे उपकरण भी आ गए हैं जो नींद की गुणवत्ता को ट्रैक करने, उसका विश्लेषण करने और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यह तकनीक आपको गहरी नींद, खर्राटे, दिल की धड़कन और सांस लेने के पैटर्न को समझने में सहायता करती है। तकनीक और स्वास्थ्य का संतुलित मेल हमारे जीवन को अधिक सुरक्षित, स्वस्थ और सरल बना सकता है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, गर्मी के इस मौसम में हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ विशेष सेहत सूत्र, जिससे बढ़ते तापमान में आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकें। दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी और ताजे फलों का सेवन करें। ज्यादा तले भुने खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें। हल्का व सुपाच्य भोजन लें। दोपहर की तेज धूप में घर से बाहर निकलने से बचें और निकले तो सिर व मुंह ढककर और आंखों पर धूप का चश्मा लगाकर निकले। लू से बचने के लिए केरी के पन्ने का सेवन करें व प्याज की एक गांठ साथ में लेकर ही बाहर निकले। सूती और हल्के रंगों के कपड़े पहने जिससे शरीर को ठंडक मिले। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें क्योंकि गर्मी उन्हें अधिक प्रभावित करती है। थोड़ी सी सावधानी और सही दिनचर्या अपनाकर हम गर्मी के मौसम में स्वस्थ रह सकते हैं। उम्मीद है इन सभी बातों को अपनाकर आप अपने को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखेंगे। श्रोताओं, उम्मीद है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक अवश्य दें। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल, पिन कोड है 462002। इसी के साथ अपनी रेडियो दोस्त प्रेक्षा सक्सेना को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दिन के 1:30 हुए हैं। लीजिए अब पेश है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र सिंह नरवरिया और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। सबसे पहले सुनते हैं लोक भजन।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे राजेंद्र सिंह नरवरिया और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल के प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है हमारा अगला कार्यक्रम सुगम संगीत का। कलाकार हैं प्रकाश पाठक। आप सुनिएगा इनकी आवाज में चंद गजलें। हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है। पेश है पहली गजल। शायर है दुष्यंत कुमार त्यागी।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगली गजल। कलाम है गोपाल दास नीरज का और कलाकार प्रकाश पाठक।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे प्रकाश पाठक की गायी चांद कसले। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन?
0: आकाशवाणी

0: है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।
2: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गुमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
3: दिन के 2 बजे हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं लगान फिल्म का गीत, उदित नारायण, वसुंधरा दास और अलका याग्निक की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल हैं और संगीत ए आर रहमान का।

कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म कश्मीर की गली से। SH बिहारी के बोल हैं और संगीत ओपी नैयर का, खूबसूरत आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। श्री शाह आज जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वे जगदलपुर स्थित बादल अकादमी में शहीदों के परिजनों, सुरक्षा बलों के जवानों, नक्सल हिंसा से प्रभावित लोगों और विभिन्न स्थानीय समाज के प्रतिनिधियों से भी संवाद करेंगे। शाम को वे बस्तर के संघ लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। श्री अमरनाथ यात्रा 2026 से पहले जम्मू कश्मीर में सेना ने रामबन जिले में ग्राम रक्षा समूहों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसका उद्देश्य स्थानीय सुरक्षा बढ़ाना, तैयारियों में सुधार करना और तीर्थ यात्रा मार्ग पर रहने वाले निवासियों के साथ समन्वय स्थापित करना था। प्रदेश में भीषण गर्मी का असर लगातार बना हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। झाबुआ जिले में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ोतरी की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन और इंदौर संभाग के कई जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों से धूप में निकलते समय सावधानी बरतने और पर्याप्त पानी पीने की भी अपील की है। प्रदेश में पेपरलेस कार्य संस्कृति को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। नागरिकों को एमपीई सेवा पोर्टल और मोबाइल ऐप पर सरकार के 56 विभागों की 1700 सेवाएं एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हैं। राज्य में साइबर तहसीलों की स्थापना हो चुकी है। इस नवाचार को प्रधानमंत्री पुरस्कार भी मिल चुका है। भोपाल में देश के पहले साइबर पंजीयन कार्यालय की शुरूआत की गई है। प्रदेश में E0 FIR का भी शुभारंभ किया गया है। मंत्रिपरिषद की कार्यवाही पूर्णतः पेपरलेस हो चुकी है, जिससे न केवल समय की बचत हुई है बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता भी बढ़ी है। प्रदेश में सुशासन के साथ ग्रीन गवर्नेंस को भी बढ़ावा मिल रहा है। मध्य प्रदेश लीग 2026 का आयोजन 3 जून से इंदौर में शुरू होगा। इस टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग की 10 और महिला वर्ग की 5 टीमें हिस्सा लेंगी। पुरुष वर्ग के टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला 3 जून को होलकर स्टेडियम में शाम 7:30 बजे ग्वालियर चीतास और उज्जैन फॉल्कल्स के बीच खेला जाएगा। महिला वर्ग की प्रतियोगिता 4 जून से शुरू होगी, जहां पहले मुकाबले में चंबल घड़ियाल्स का सामना ग्वालियर शेरनीज से होगा। एमपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला 26 जून को शाम 7:30 बजे इंदौर के होलकर स्टेडियम में आयोजित होगा।

0: समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पर्यावरणविद, प्रखर चिंतक, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। शिवपुरी में विद्युत समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विशेष जनसंपर्क अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। नर्मदापुरम जिले के विकासखंड केसला में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जबलपुर जिले में कुंडम विकासखंड जनगणना 2027 के प्रथम चरण का कार्य पूरा करने वाला पहला जनगणना विकासखंड बन गया है। आगरमालवा में किसानों को ई टोकन प्रणाली के माध्यम से सरल, सुगम, पारदर्शी तरीके से उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है। सतना जिले में पुरुषोत्तम मास के पहले सोमवार पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिव मंदिरों में जलाभिषेक किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
2: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा AI गलियारे की शुरुआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
3: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आई। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों

0: देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी लीडिट के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
2: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन नियम वाली स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याजमाय विश्वस्तयुम।
1: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
3: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है, अमृतकाल में मेहनत करने के लिए वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
1: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्लीवासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
4: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
5: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालिसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3-5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य

समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं लावारिस फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में, प्रकाश मेहरा के बोल हैं और संगीत कल्याण जी आनंद जी के। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला जंदे, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड भानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। और इसी के साथ एक और पत्र है हमारे हाथ में भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता, अमृता जोशी और लोकेश जोशी। तो आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म प्यार झुकता नहीं से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने, बोल है SH बिहारी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य अदिति, शिवानी शिमाली, और एक और पत्र है हमारे हाथ में सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्लाह, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सलिया शोएब खान, पोत्रा मुश्तबा खान, रऊफ भाई और शाहिद भाई, और गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

गौरीनगर इंदौर से आनंदन कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या, करिश्मा कामले और जिला जालौन से सत्येंद्र चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक। और एक और पत्र हमें मिला है लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू का। हमारे ये सभी श्रोता सुना चाहते हैं तेजा फिल्म का गीत नितिन मुकेश, अलका याग्निक, शब्बीर कुमार और साथियों की आवाज़ में। जावेद अख्तर के बोल हैं और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म बाजीगर से। कुमार सानू, अनु मलिक और साथियों की आवाज़ है, देव कोहली का गीत है और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहरा जहां और छत्तीसगढ़ दंतरेगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, रंगने से दिलेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और मावली सिंगारपुर से सालिक पुजारी।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। ये दौरान नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवा और आधुनिक फॉरेंसिक मोबाइल वैन के बेड़े को रवाना किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए कहा कि वैश्विक चुनौती और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में महाराष्ट्र के लातूर में आरसीसी कोचिंग क्लास के निदेशक शिवराज मोटेगांवकर को गिरफ्तार कर लिया है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन

मोहन और इंदौर संभाग के कई जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में आज चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच चेन्नई में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा और मध्य प्रदेश लीग एमपीएल 2026 का आयोजन 3 जून से इंदौर में शुरू होगा। इस टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग के 10 और महिला वर्ग के 5 टीमें हिस्सा लेंगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दिन के 3 बजे हैं। आइए एक नजर डालते हैं हमारे आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों पर। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम में युवा वाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं शाम 5:33 पर, 6:30 पर और 8:15 पर। शाम 6 बजे होगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। 6:40 पर सुनिए कार्यक्रम आजकल। प्रादेशिक समाचार दर्शन होंगे 6:45 पर। ग्राम सभा ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 7:21 पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। रात्रि 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में, 9:30 पर कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

आपकी फरमाइश। ये कार्यक्रम होगा रात्रि 10 बजे और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनेगा पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। राग होगा जय जय बंती। ये थे हमारे केंद्र से आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दिन के 3:02 होने वाले हैं और मीडियम वेव पर प्रसारण हमारा समाप्त होता है। शाम 5 बजे हम कार्यक्रमों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हमारा ये प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

डीटीएच पर यह आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र सिंह नरवरिया और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे राजेंद्र सिंह नरवरिया और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं प्रकाश पाठक, इनकी आवाज़ में आप सुनेंगे चंद गज़लें।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे प्रकाश पाठक की गाई चंद गजलें। इसके साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। समय है चित्रपट संगीत का। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं हिना फिल्म का गीत। लता मंगेशकर की आवाज में गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म साजन से। अलका याग्निक की आवाज़ है, समीर ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं संगीत फिल्म का गीत। संतोष आनंद की बोल है और संगीत से सजाया है आनंद मिलंद ने।

ओम शांति ओम। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत शान की आवाज में। बोल हैं जावेद अख्तर के और संगीत विशाल शेखर का।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मैंने प्यार किया का बहुत ही प्यारा सा गीत, लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज में। देव कोहली ने इस गीत को लिखा है और राम लक्ष्मण की धुन है।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी भोपाल है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन में कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व के सबसे आकर्षक स्थलों में से एक है। जनजातीय वर्ग के लिए शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार, योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 18 से 25 मई तक राष्ट्रव्यापी सूचना शिक्षा संचार अभियान जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले संचालित किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा है कि वे द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर उत्सुक हैं। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन और इंदौर संभाग के कई जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा और मध्य प्रदेश लीग एमपीएल 2026 का आयोजन 3 जून से इंदौर में शुरू होगा। इस टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग के 10 और महिला वर्ग की 5 टीमें हिस्सा लेंगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। शाम के 4 बजे हैं। लीजिए सुनिए उर्दू प्रोग्राम आईना।

कि एक शख्स गंदगी में पड़ा हुआ है और वो वहां से हटना नहीं चाहता, तो फिर उसका जिस्म और जान पाक और पवित्र कैसे होगी? पाक और साफ होने के लिए उसको उस गंदे और कीचड़ वाले माहौल से हिजरत करनी पड़ेगी। धर्म और मजहब की बुनियादें बहुत ठोस होती हैं, वो हकीकी इस्लाह और सुधार करना चाहती हैं। हम अपने गिर्दो पेश को देखें तो हम बआसानी इस बात को समझ लेंगे कि वो गुनहगार और पापी इंसान हमेशा पापी क्यों रहा, इसलिए कि उसने इन बातों पर अमल नहीं किया। यहाँ मुसलहीन और रिफार्मर्स के लिए बड़ा सबक है कि जब वो किसी बुराई और कुप्रथा की इस्लाह और रोकथाम का आज़म लेकर खड़े होते हैं तो उन्हें इन बातों का मुकम्मल लिहाज करना होगा और अपने प्रोग्राम में उनको लाजमी करार देना होगा। आज समाज जिस बिगाड़ की तरफ जा रहा है और इस्लाह करने वाले सच्चा जज्बा लेकर खड़े होते हैं, ताहम फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाते और हमारी आँखें ये देखती हैं कि इस्लाह के तमाम तर प्रोग्रामों को अंजाम देने के बाद भी वो मुआशरा जूं का तू रहता है, तो मालूम हुआ कि खता और तसव्वुर माफ़ी के रास्ते तो मालिक की तरफ से हमेशा खुले होते हैं, लेकिन हम उनका सही इस्तेमाल नहीं करते। एक दूसरा बेमिसाल वाक़या, पैगंबर साहब ने यूं बयान फरमाया कि एक फाहिशा औरत थी और वो गुनाहों में सरापा गर्क थी, कहीं से माफ़ी की कोई गुंजाइश न थी। एक मरतबा वो कहीं जा रही थी, रास्ते में उसने देखा कि एक कुत्ता मारे प्यास के तड़प रहा है। यही प्यास उसे भी बेकरार किए हुए थी, लिहाजा उसने उसकी तड़प का फौरन एहसास कर लिया। वो आबदीदा हो गई। रास्ते पर ही एक कुआं था और कुएं में पानी तो था मगर रस्सी और बाल्टी न थी, लेकिन उसकी तड़प ने उसका यह हल निकाला कि उसने अपनी जूती को बाल्टी बनाया और अपने सर की ओढ़नी से रस्सी का काम लिया और उससे पानी निकाल कर उस तड़पते हुए कुत्ते के मुंह में डाला और उसे एक नई जिंदगी अता की। वो कुत्ता पानी से सैराब होने के बाद एक झुरझुरी लेकर दौड़ खड़ा हुआ। पैगंबर साहब ने इस वाक़े को सुनाकर यह फरमाया कि ऊपर वाले ने उस बदकार औरत को माफ़ करके जन्नत में दाखिल कर दिया। यहाँ मुझे वो लोग माफ़ फरमाएं जो इंच टेप लेकर दूसरे के गुनाहों को नापते फिरते हैं और जन्नत और दोजख के फैसले सुनाते रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ऊपर वाला नहायत रऊफ़ और रहीम, मुशफिक और करीम, कृपालु और दयालु है। वो हम जैसा नहीं है कि छोटी छोटी ख़ताओं पर गिरफ्त करने लगे और ये बावर कराने लगे कि तुम्हारे लिए माफ़ी का अब कोई रास्ता नहीं। आखिर में यही अर्ज़ करूँगा कि ख़ताएँ तो होंगी, लेकिन इसी के साथ साथ तौबा का दरवाज़ा भी हमेशा के लिए खुला हुआ है। ख़ता और माफ़ी के इस तसव्वुर ने इंसानों को मायूसी से बचा लिया। अब वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं होंगे। उम्मीदों के उजाले उन्हें हमेशा नेक रास्तों पर गामजन करेंगे और वो हमेशा मायूसी से कट कर उम्मीदों के साहिल से हमकिनार होंगे। बस हमारी तरफ से होना ये चाहिए कि गलती के बाद माफ़ी का ख्याल आ जाए, ताकि वक्त का कोई शैतान हमें वरगला कर मायूसी के अंधेरों में ढकेल न दे। इंसान और शैतान में एक बड़ा बुनियादी फ़र्क यही है, गलतियां दोनों से हुई मगर शैतान ने अपनी गलती को जस्टिफाई किया और आदम ने अपनी गलती का एतराफ़ किया। शैतान के इस अमल ने उसे हमेशा के लिए मालिक की रहमत से दूर कर दिया, जबकि आदम को माफ़ी भी मिली और उन्हें मालिक का क़ुर्ब भी नसीब हुआ। किसी बुजुर्गों ने क्या खूब कहा है कि वो गुनाह जो खुदा से करीब तर कर दे उस नेकी से बेहतर है जो आदमी के अंदर तकब्बुर व बड़ाई का भरम पैदा कर दे। एक मौके पर पैगंबर साहब ने फरमाया, अगर तुम गुनाह न करोगे तो खुदावंद कुद्दूस तुम्हारी जगह ऐसी मखलूक लाएगा जो गुनाह करेगी और फिर अल्लाह से माफ़ी मांगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह को ऐसी मखलूक चाहिए जो गुनाह करे और फिर उससे माफ़ी की तलबगार और तौबा की खास्तगार हो, क्योंकि वो गुनाह न करने वाली मखलूक तो आसमानों पर मौजूद है जो गुनाह कर ही नहीं सकती, जिन्हें हम फरिश्ता कहते हैं, मगर इंसान होते हुए गुनाह हो जाना और माफ़ी मांगना यह है बड़ा काम। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली फरमाते हैं, फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। इब्ने आदम की खूबी और बड़ाई यह है कि उसमें आजिज़ी, इनकिसारी, तवाज़ो, खाकसारी और फरोतनी हो। यही वजह है कि वो इंसान जन्नत का बिल्कुल पात्र नहीं होगा जिसके अंदर ज़र्रा बराबर भी घमंड और अहंकार हो। एक और मौके पर रसूल इस्लाम ने फरमाया, ए इंसानों, तुम सब के सब गुनाहगार हो और बेहतरीन गुनाहगार वो हैं जो तौबा करने वाले हैं। ये नहीं फरमाया कि गुनाह न करने वाले हैं,

0: दोस्तों, अभी आप गुलूकार गुलाम अली की आवाज में गजल समात फरमा रहे थे और कलाम था हबीब लतीफ का। सामीन, शहर भोपाल को अदब नवाज शहर कहा जाता है। उसे कहने के पीछे कई अहम तारीखी, सकाफती और अदबी वजूहात हैं, जिनकी बुनियाद पर इसे उर्दू अदब का एक अहम मरकज माना जाता है। ये शहर अजीम शायरों और अदीबों का मस्कन रहा है और दौरे हाजिर में भी ये रिवायत जारी और सारी है। इसी रिवायत को जिन शौरा ने आगे बढ़ाया है, उन्हीं में से एक नाम नुसरत मेहदी का भी है। आइए सुनते हैं नुसरत मेहदी से उन्हीं की जुबानी उनका कलाम, समात फरमाइए।
1: गजल का मतलब पेश करती हूँ। अर्ज किया है कि ये सोचिए कि क्यों हवा पे जोर चल नहीं रहा, ये सोचिए कि क्यों हवा पे जोर चल नहीं रहा, किसी भी रुख से आपका चराग जल नहीं रहा। और हुस्न मतला है कि गलत है ये कि वक्त की जबी पे बल नहीं रहा, गलत है ये कि वक्त की जबी पे बल नहीं रहा, मगर ये पहली बार है कि बल निकल नहीं रहा। और शेर ये कि मैं आजमाइशों में इस मकाम तक तो आ गई, मैं आजमाइशों में इस मकाम तक तो आ गई कि आग में खड़ी हूँ और जिस्म जल नहीं रहा, कि आग में खड़ी हूँ और जिस्म जल नहीं रहा। और शेर के सफ़र में एक हुजूम था मगर ये राज अब खुला, सफ़र में एक हुजूम था मगर ये राज अब खुला कि कोई भी यहाँ किसी के साथ चल नहीं रहा। और ये गज़ल का मतलब है कि मुझसे अनजान तो नहीं हो तुम, मुझसे अनजान तो नहीं हो तुम, इतने बेध्यान तो नहीं हो तुम, इतने बेध्यान तो नहीं हो तुम। और ये बज़ाहिर जो बेनियाजी है, ये बज़ाहिर जो बेनियाजी है, कुछ परेशान तो नहीं हो तुम, कुछ परेशान तो नहीं हो तुम। और कैसी वहशत है क्यों भटकते हो, कैसी वहशत है क्यों भटकते हो, खाना

वीरान तो नहीं हो तुम, खाना वीरान तो नहीं हो तुम। और शेर ये कि आओ बैठो करो गिले शिकवे, आओ बैठो करो गिले शिकवे, कोई मेहमान तो नहीं हो तुम, कोई मेहमान तो नहीं हो तुम। और ये बता रखा शेर के इश्क में काम अक्ल से लोगे, इश्क में काम अक्ल से लोगे, इतने नादान तो नहीं हो तुम, इतने नादान तो नहीं हो तुम। और ये शेर क्या कहा तखलिया, अरे तौबा, कोई सुल्तान तो नहीं हो तुम, कोई सुल्तान तो नहीं हो तुम। संजीदा से गज़ल है, उसका मतलब समाध कीजिएगा। अर्ज़ किया कि वो साथ आया तो मेरी उड़ान बैठ गई, वो साथ आया तो मेरी उड़ान बैठ गई, न जाने क्या हुआ मुझ में थकान बैठ गई। और फिर इसके बाद परिंदे ज़मीं पे गिरने लगे, फिर उसके बाद परिंदे ज़मीं पे गिरने लगे, किसी की आह सरे आसमान बैठ गई, किसी की आह सरे आसमान बैठ गई। और करीब था कि ताल्लुक़ बहाल हो जाता, करीब था कि ताल्लुक़ बहाल हो जाता, अजब खामोशी मगर दरमियान बैठ गई, अजब खामोशी मगर दरमियान बैठ गई। और शेर समाप्त कीजिएगा कि हवेली छोड़ के सब लोग चल दिए, लेकिन हवेली छोड़ के सब लोग चल दिए, लेकिन हर एक हुजरे में एक दास्तान बैठ गई, हर एक हुजरे में एक दास्तान बैठ गई। और शेर समाप्त कीजिएगा कि बुलंदियों पे पहुंचकर मैं खुश बहुत थी मगर, बुलंदियों पे पहुंचकर मैं खुश बहुत थी मगर, ज़मीं की समत जो देखा तो जान बैठ गई, ज़मीं की समत जो देखा तो जान बैठ गई। और मकता है कि ज़बां दराज़ों से नुसरत कहाँ तलक लड़ती, ज़बां दराज़ों से नुसरत कहाँ तलक लड़ती, सो दिल पर सब्र की रख कर चटान बैठ गई, वो साथ आया तो मेरी उड़ान बैठ गई। समझ कीजिएगा।

प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, 5 बज चुके हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गाहर स्टोर के साथ एक प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी 19 मई को ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से दो देशों वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा है कि वे द्विपक्षीय संबंधों का और विस्तार करने के लिए दो एशियाई देशों की यात्रा करने के उत्सुक हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियां देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से मितव्ययी जीवन शैली अपनाने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने और आत्मनिर्भरता के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में विधि और न्याय मंत्रालय कल से गुजरात के गांधीनगर में दो दिन के ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों SOM की बैठक की मेजबानी करेगा। इस बैठक के बाद 21 मई से ब्रिक्स न्याय मंत्रियों की बैठक होगी। जनजातीय वर्ग के लिए शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार और योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 18 से 25 मई तक राष्ट्रव्यापी सूचना शिक्षा और संचार अभियान जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले संचालित किया जा रहा है। IPL क्रिकेट प्रतियोगिता में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा और मध्य प्रदेश लीग MPL 2026 का आयोजन 3 जून से इंदौर में शुरू होगा। इस टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग की 10 और महिला वर्ग की 5 टीमें हिस्सा लेंगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 5:02 हो चुके हैं। युवा श्रोता सुने उनका अपना कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी द्वारा प्रसारित युवाओं का अपना और मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त शाश्वत विष्णु रावत। बातों का सिलसिला, विचारों की रवानी और कुछ ऐसे विषय जो कहीं ना कहीं हम सबकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, इन्हीं सबके साथ आज फिर हम हाजिर हैं। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम बात करेंगे विश्व एड्स टीकाकरण दिवस की, जहां जागरूकता, संवेदनशीलता और स्वास्थ्य की आवश्यकता सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही बात होगी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की, उन जगहों की जहां इतिहास केवल किताबों में नहीं, दीवारों, वस्तुओं और स्मृतियों में सांस लेता है। और फिर हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय की जो आज केवल पर्यावरण की नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों की भी चिंता का विषय बन चुका है, प्लास्टिक फ्री लाइफ, यानी प्लास्टिक मुक्त जीवन। तो चलिए शब्दों, विचारों और एहसासों के इस सफर की शुरुआत करते हैं एक मधुर मनमोहित गीत के साथ।

विश्व एड्स टीकाकरण दिवस। दोस्तों, दुनिया में कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो केवल सीमाओं पर नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयाँ जागरूकता, समझ और संवेदनशीलता से जीती जाती हैं। ऐसी ही एक लड़ाई है एचआईवी और एड्स के खिलाफ। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एचआईवी और एड्स एक ही चीज नहीं है। एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एक ऐसा वायरस है जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे कमजोर करता है, और जब यह संक्रमण बहुत अधिक बढ़ जाता है तब वह स्थिति एड्स यानी कि अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कहलाती है। एड्स कोई अचानक होने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि एचआईवी संक्रमण का अंतिम और गंभीर चरण होता है। इस बीमारी को पहली बार दुनिया ने 1980 के दशक की शुरुआत में गंभीरता से पहचाना। शुरुआती समय में लोगों के पास जानकारी बहुत कम थी और डर बहुत ज्यादा। कई लोग ये मानते थे कि एचआईवी छूने से फैलता है या साथ बैठने, खाना खाने, हाथ मिलाने से हो सकता है, लेकिन विज्ञान ने धीरे धीरे इन भ्रांतियों को दूर किया। एचआईवी मुख्य रूप से देखा जाए तो असुरक्षित यौन संबंधों से, संक्रमित रक्त चढ़ाने से, संक्रमित सिरिंज या नीडल साझा करने से और संक्रमित माँ से बच्चे तक पहुँच सकता है, लेकिन यह हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने, छींकने, खांसने या सामान्य संपर्क से नहीं फैलता, और यही जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं वैक्सीन की, तो वैज्ञानिक लगातार क्लिनिकल ट्रायल्स और रिसर्च के माध्यम से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और इसी प्रयास और जागरूकता को समर्पित है विश्व एड्स टीकाकरण दिवस। यह दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि विज्ञान, उम्मीद और इंसानियत के उस निरंतर प्रयास का प्रतीक है जो एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज भी समाज में एचआईवी को लेकर कई भ्रांतियां मौजूद हैं, और कई बार बीमारी से ज्यादा लोग समाज के व्यवहार से डरते हैं, लेकिन सच यही है कि जागरूकता ही सुरक्षा है। सही जानकारी, समय पर जांच और

संवेदनशील व्यवहार यही इस लड़ाई के सबसे बड़े हथियार हैं। हमें यह समझना होगा कि बीमारियों से लड़ना जरूरी है, बीमार लोगों से नहीं। और शायद इंसानियत की सबसे सुंदर पहचान भी यही है कि हम किसी को उसके संघर्ष में कभी अकेला महसूस ना होने दें। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और सुनते हैं केके की आवाज़ में फिल्म राज रिबूट से ये प्यारा सा गीत, जिसके बोल लिखे हैं कौशर मुनीर ने और संगीत है सिद्धार्थ हल्दीपुर का।

दोस्तों, कहा जाता है कि यदि किसी सभ्यता को सचमुच समझना हो तो उसकी इमारतों से अधिक उसके संग्रहालयों को देखना चाहिए, क्योंकि संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं का संकलन नहीं होते, वे समय के संरक्षक होते हैं। इतिहास की निशब्द स्मृतियां जो आने वाली पीढ़ियों के लिए अतीत को सहेज कर रखती हैं। हर वर्ष 18 मई यानी आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1977 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स अर्थात आईकॉम द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य था लोगों को यह समझाना कि संग्रहालय केवल दर्शनीय स्थल नहीं बल्कि संस्कृति, शिक्षा और सभ्यता के जीवंत केंद्र हैं। जब हम किसी संग्रहालय में प्रवेश करते हैं तो हम केवल वस्तुएं नहीं देखते, हम समय के विभिन्न कालखंडों से संवाद करते हैं। कहीं प्राचीन शिल्प कथा, कहीं दुर्लभ पांडुलिपियां, कहीं राजवंशों की विरासत तो कहीं स्वतंत्रता संग्राम की मौन गाथाएं। हर वस्तु अपने भीतर एक युग समेटे होती है। मध्य प्रदेश की अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। भोपाल का जनजाति संग्रहालय हो या इंदौर का केंद्रीय संग्रहालय, ये स्थान केवल इतिहास को प्रदर्शित नहीं करते, उसे जीवंत कर देते हैं। आज जब दुनिया तीव्र गति से आधुनिकता की ओर बढ़ रही है, ऐसे समय में संग्रहालय हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखने का कार्य बखूबी करते हैं, क्योंकि जो समाज अपने इतिहास को सहेजना जानता है वही अपने भविष्य को भी गरिमा के साथ गढ़ पाता है।

मित्रों, प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। क्या हम इतनी तेजी से कन्वीनियंस के आदि हो चुके हैं कि अब हमें उसके परिणाम दिखाई ही नहीं दे रहे? एक कॉफी कप, एक प्लास्टिक बॉटल, एक कैरी बैग, कुछ मिनटों की सुविधा और फिर वही प्लास्टिक वर्षों तक धरती पर बोझ बनकर पड़ा रह जाता है। अजीब बात है ना, जिस चीज को हम कैजुअली इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, वही चीज नदियों का रास्ता रोकती है, समुद्रों को प्रदूषित करती है, जानवरों की जान लेती है और अब तो माइक्रोप्लास्टिक्स के रूप में हमारे शरीर तक पहुंच चुकी है। यानी प्रकृति को नुकसान पहुंचाते पहुंचाते हम खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन कहानी का एक अच्छा हिस्सा भी है, पर वो मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

बाघ को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साये से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

कर रहे थे कि इस प्रॉब्लम के आसपास एक अच्छी बात है, और वो है इसका सोल्यूशन, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप कपड़े का बैग यूज़ करें, स्टील या कोई और मटेरियल की रीयूजेबल बॉटल, प्लास्टिक स्ट्रॉस को ना कहें, और छोटी छोटी ऐसी ही कॉन्शियस चॉइसेस लेते रहें। बस इतनी सी बातें धरती को बहुत बड़ी राहत दे सकती हैं, क्योंकि प्लास्टिक फ्री लिविंग कोई फैशन ट्रेंड नहीं है, ये आने वाले समय के लिए हमारी जिम्मेदारी है। और सच कहें तो प्रकृति हमसे परफेक्शन नहीं चाहती, बस थोड़ी सी समझदारी चाहती है। तो आइए सुविधा से थोड़ा ऊपर उठकर संवेदनशीलता को अपनी आदत बनाएं, प्लास्टिक फ्री लिविंग को केवल एक कैंपेन नहीं अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां हमारी तरक्की नहीं, हमारी समझदारी याद रखेंगी।

प्रिय श्रोताओं, अगर आप या आपके परिवार में कोई युवा नौकरी की तलाश में है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद काम की है। मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड द्वारा हॉस्पिटल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट टेस्ट 2026 के अंतर्गत 1200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 21 मई 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी MPESB की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड द्वारा फॉरेस्ट गार्ड तथा जेल प्रहरी भर्ती के लिए 1679 पदों पर अधिसूचना जारी की गई है। आवेदन प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होने की संभावना है। इसी के साथ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 का आयोजन भी आगामी महीनों में प्रस्तावित है। देश भर के स्नातक अभ्यर्थी इसके लिए पात्र हैं। विस्तृत जानकारी UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। अब इसी के साथ आपका दोस्त शाश्वत विष्णु रावत लेता है आपकी आज्ञा। सुनते रहिए युववाणी और जुड़े रहिए ज्ञान, प्रेरणा और संगीत से। नमस्कार।

0: युवा श्रोता सुन रहे थे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, वक्त है अंतराल का।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूर।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपकी पहचान, आपके विचार, अब हर घर तक पहुंचेंगे बार बार। बढ़ेंगे ग्राहक, तरक्की होगी कमाल। विज्ञापन देने का सही पता, आकाशवाणी भोपाल। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
3: कवि हेमंत देवलेकर।
4: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक हैं, समाचार हैं, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है, हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाजें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाए। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
5: बदलो बदलो, आदत बदलो।
6: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
5: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 5:33 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत फिल्म कुछ तुम कहो कुछ हम कहें से। गीत शान और प्रशांत, साथी प्रीति और पिंकी की आवाज़ों में समीर का गीत और अनु मलिक का संगीत।

कुछ ना कहो। लीजिए सुनिए इस फिल्म से शान और साधना सरगम को। जावेद अख्तर का गीत है और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। और श्रोताओं, अब सुनिए कुछ ना कहो फिल्म का नगमा, शान और साधना सरगम की आवाजें, जावेद अख्तर का गीत और शंकर एहसान लॉय का संगीत।

सलामे इश्क, लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा कैलाश खेर की आवाज़ में, समीर का गीत और शंकर एहसान लॉय का संगीत।

इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 5:55 हुए हैं, वक्त है अंतराल का।

0: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 5:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कल भुवनेश्वर में पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय मजबूत करना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मुख्यमंत्री निवास में आयोजित बैठक में कहा कि मरीज की चिकित्सा सिर्फ एक व्यवसाय नहीं, ये मानव सेवा का एक माध्यम है। प्रदेश में हाल ही में नियुक्त निगम, मंडल, बोर्ड, प्राधिकरण और आयोगों के अध्यक्ष उपाध्यक्षों के लिए आज भोपाल में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनजातीय वर्ग के लिए शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार और योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आज से 25 मई तक अभियान संचालित किया जा रहा है। वरिष्ठ IAS अधिकारी सौरभ विजय ने आज भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में विधि और न्याय मंत्रालय कल से गुजरात के गांधीनगर में 2 दिन के ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों SOM की बैठक की मेजबानी करेगा। IPL क्रिकेट प्रतियोगिता में आज चेन्नई में शाम 7:30 से चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा और MPL 2026 का आयोजन 3 जून से इंदौर में होगा। इस टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग की 10, महिला वर्ग की 5 टीमें हिस्सा लेंगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और आपके मित्र अजीत का

0: अभी नमस्कार और जोहार।
1: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
0: श्रोताओं, ये सुंदर विचार हमें भेजा था बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। बिल्कुल सच कहा है, बिना श्रम के सफलता का सच्चा आनंद नहीं मिलता
1: जी।
0: आप दोनों का धन्यवाद। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
1: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
0: और भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
1: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी देते हुए एक दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न तोड़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ परे जाए।
0: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
1: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं।
0: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
1: गांव गणेश धाम परसुली, पोस्ट खेरता, बाजार जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
0: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
1: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी।
0: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव, अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
1: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी, आपको साधुवाद।
0: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
1: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली वेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है।
0: जी, और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं।
1: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं।
0: जी,
1: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
0: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
1: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
0: और हमारा अगला प्रश्न श्रोताओं प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
1: तो साथियों इसका उत्तर भी जान लेते हैं। लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
0: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न, हमारा प्रश्न था, बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं।
1: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं लेकिन हम कहेंगे विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
0: जी विमरेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओं अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है।
0: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित ये कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करें और उसकी सुंदरता का अनुभव करें। कार्यक्रम एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें एक बच्ची आकाश में बादलों को ध्यान से देखकर उनके विभिन्न आकारों में पशु पक्षियों की छवि की कल्पना करती है।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
3: वी आर फाइन सर।
4: आई एम फाइन।
5: आई एम गुड सर।
2: फाइन, गुड, ओके, सो टेल मी, What do you like most?
4: I like playing, sir.
6: I like painting, sir.
2: Very good. Anyone else?
7: Sir, I like singing.
8: I like playing with my pets.
2: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
3: Yes, sir.
6: We like.
2: Lovely butterflies?
3: Yes, sir.
2: And lovely

0: observed.
1: Okay, sir. It will be so lovely.
2: It will be good.
0: Yes. And one thing more. Notice the colors of the clouds. And you will find that the clouds also have different colors from time to time.
1: Yes, sir.
3: I have seen rainbow.
4: It has seven colors.
0: So, children, whenever you see the clouds, they have different
1: shapes.
0: Yes, shapes. And they have different
1: colors.
0: Very nice.
5: Show of Clouds. You were just listening to this program. Program coordinator, Professor Rajender Pal. Technical coordinator, Bati Langlingdo. Child singer, Angel. Child artists, Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Sound recordist, Mayank Kumar. Assistants in production, Kusum Lata. Directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIETNCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम. अगले कार्यक्रम का शीर्षक है तुलसी गौड़ा.
6: ये कार्यक्रम जंगल की एनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली महान आदिवासी पर्यावरण विशेषज्ञ तुलसी गौड़ा के जीवन, उनके पर्यावरण पर शोधों और वृक्षों को बचाने के उनके प्रेरणादायक अभियान की जानकारी देता है. विशेष रूप से मातृ वृक्षों पर उनकी खोज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है.
7: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहनी
8: तुलसी गौड़ा, 72 ईयर ओल्ड ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका.
9: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती.
10: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा.
7: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
11: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है.
12: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार. आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
13: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण.
12: ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है. देश भर में प्रसन्नता की लहर.
14: नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है. राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा.

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति

0: कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों मैं करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
2: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
2: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
3: अच्छा,
2: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
3: अरे, ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
2: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
3: बिल्कुल होता है।
2: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से बढ़ते हैं।
3: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
2: है ना?
3: जी।
2: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
3: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
2: हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना।

0: होगा, वन बचाओ देश बचाओ।
1: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
0: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
1: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
2: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
1: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
3: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
0: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
3: अच्छा।
0: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
3: अच्छा।
0: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
3: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
0: बिल्कुल सही सुना है आपने। मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।
3: अच्छा।
0: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
0: इतना ही नहीं, यदि कई मातृ वृक्ष आसपास हो तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं। वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं, समझे?
3: जी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
0: हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है, ठीक है ना?
3: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत धन्यवाद।
1: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे

0: 100,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
1: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैन लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तुलसी गौड़ा और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: अभी प्रसारित किया जा रहा था NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
6: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
7: आपका संदेश, आपकी पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दें नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
5: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत सुनिए इश्किया फिल्म से, राहत फतेह अली खान की आवाज, गुलजार का गीत और विशाल भारद्वाज का संगीत।

और अब सुनिए काशी फिल्म का ये गीत, यसीर देसाई की आवाज़, शब्बीर अहमद का गीत और राज आशु का संगीत।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप रात 8:15 बजे भी सुन सकेंगे। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है मध्य प्रदेश में आम उत्पादन की बढ़ती संभावनाएं और मैंगो फेस्टिवल 2028। आलेख श्री अनिल वशिष्ठ, आप जनसंपर्क विभाग में सहायक जनसंपर्क अधिकारी हैं।

भारत कृषि प्रधान देश होने के साथ उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में भी विश्व स्तर पर अपनी मजबूत पहचान रखता है। फलों फूलों और सब्जियों के उत्पादन के माध्यम से देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल रही है। इसी क्रम में मध्यप्रदेश ने उद्यानिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित करते हुए देश के अग्रणी राज्यों में अपना स्थान बनाया है। विशेष रूप से फल उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश देश में चौथे स्थान पर है। भारत वर्ष में कुल लगभग 1176 लाख मेट्रिक टन फलों का उत्पादन होता है, जिसमें से लगभग 102 लाख मेट्रिक टन उत्पादन मध्यप्रदेश में किया जा रहा है। ये उपलब्धि प्रदेश के किसानों की मेहनत, अनुकूल जलवायु, राज्य सरकार की योजनाओं का प्रतिफल है। फल उत्पादन की दृष्टि से यदि किसी एक फल की लोकप्रियता और आर्थिक महत्व की

0: चर्चा की जाए तो आम का नाम सबसे पहले आता है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है। पिछले चार वर्षों के आंकड़ों का अध्ययन करें तो प्रदेश में आम उत्पादन में लगभग 72,000 मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गई है। ये वृद्धि इस बात का स्पष्ट संकेत है कि प्रदेश के किसान अब पारंपरिक खेती के साथ साथ उद्यानिकी फसलों विशेषकर आम उत्पादन की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां आम उत्पादन के लिए अत्यंत अनुकूल सिद्ध हो रही है। प्रदेश के विभिन्न अंचलों में अलग अलग किस्मों के आम का उत्पादन किसानों को बेहतर आय उपलब्ध करा रहा है। यही कारण है कि राज्य सरकार द्वारा आम उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर योजनाबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में 13 जून 2026 को प्रदेश की राजधानी भोपाल में मैंगो फेस्टिवल 2026 अर्थात आम महोत्सव आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। ये आयोजन केवल एक प्रदर्शनी या उत्सव नहीं होगा बल्कि प्रदेश के आम उत्पादक किसानों, उद्यानिकी विशेषज्ञों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच संवाद और विपणन का महत्वपूर्ण मंच बनेगा। महोत्सव के माध्यम से प्रदेश की विभिन्न किस्मों के आमों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही किसानों को आधुनिक तकनीक, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन संबंधी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस वर्ष प्रदेश के प्रमुख जिलों आलीराजपुर, रीवा, शहडोल, सीधी, सतना, नर्मदापुरम, अनूपपुर और नरसिंहपुर में लगभग 3200 हेक्टेयर क्षेत्र में आम उत्पादन विस्तार की कार्ययोजना तैयार की गई है। ये योजना किसानों को उद्यानिकी आधारित खेती की ओर प्रेरित करेगी और प्रदेश में आम उत्पादन का दायरा और अधिक विस्तृत होगा। प्रदेश के लिए गौरव का विषय ये भी है कि सुंदरजा आम को अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त हुई है। रीवा जिले के प्रसिद्ध सुंदरजा आम को GI टैग मिलने से न केवल इसकी विशिष्टता को वैश्विक पहचान मिली है बल्कि इससे स्थानीय किसानों को आर्थिक लाभ और बाजार में बेहतर मूल्य प्राप्त होने की संभावनाएं भी बढ़ी है। सुंदरजा आम अपने मिठास, सुगंध और विशिष्ट स्वाद के कारण देश विदेश में लोकप्रिय हो रहा है। भारत सरकार की प्राथमिकता छोटे और सीमांत किसानों को पारंपरिक खेती से आगे बढ़ाकर नकदी फसलों, फल फूल और सब्जी उत्पादन की ओर प्रोत्साहित करना है। उद्यानिकी फसलें किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं क्योंकि इनकी बाजार में मांग निरंतर बनी हुई है। उत्पादन से अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्राप्त होता है। आम जैसी फसलें किसानों को दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता प्रदान कर सकती हैं। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय भी इसी सोच को आगे बढ़ाने वाला कदम है। कृषि उद्यानिकी क्षेत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। आज आवश्यकता है इस बात की कि आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक खेती और मूल्य संवर्धन के माध्यम से आम उत्पादन को और अधिक बढ़ावा दिया जाए। यदि किसानों को प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यात सुविधाओं और बेहतर बाजार व्यवस्था से जोड़ा जाए तो मध्य प्रदेश देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आम उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। मैंगो फेस्टिवल 2026 इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध होगा। यह आयोजन न केवल प्रदेश की उद्यानिकी क्षमता को प्रदर्शित करेगा बल्कि किसानों की आय वृद्धि, कृषि विविधीकरण और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के निर्माण में भी मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम आज कल में इतना ही। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजकल। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार दर्शन।

0: नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कडियार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर एक रिपोर्ट। तो आइए शुरू करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन, जिसकी पहली रिपोर्ट है नर्मदापुरम जिले से, जहां भीषण गर्मी का दौर जारी है और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे नर्मदापुरम संवाददाता तनुज तिवारी।
1: नर्मदापुरम जिले में अप्रैल माह से ही तेज गर्मी पड़ रही है। 26 अप्रैल को सीजन का अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेज धूप और गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। हिल स्टेशन पचमढ़ी में बी फॉल और अप्सरा फॉल जैसे झरनों पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों की भीड़ दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के अनुसार जून के दूसरे सप्ताह तक

0: प्रदेश में मानसून पहुंचने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकेगी। विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए विशेष अलर्ट जारी किया है। मौसम और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलने, शरीर को पूरी तरह ढककर रखने और पर्याप्त मात्रा में पानी तथा तरल पदार्थ लेते रहने की सलाह दी है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नर्मदापुरम से तनुष तिवारी।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट है प्रदेश के इंदौर जिले से, जहां 2 चरणों में होने वाली जनगणना 2027 का पहला चरण 1 मई से प्रारंभ किया गया है। 31 मई 2026 तक चलने वाले इस चरण में मकानों का सूचीकरण किया जा रहा है। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे इंदौर संवाददाता मनीन्द्र दुबे।
2: इंदौर जिले में जनगणना 2027 के लिए प्रगणक अपने निर्धारित क्षेत्र का भ्रमण करते हुए ब्लॉक की पहचान और उसके बाद मकानों की गिनती कर रहे हैं। इंदौर कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी शिवम वर्मा ने बताया कि इस बार जनगणना प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल एवं पारदर्शी है। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि एक एक मकान और उससे जुड़ी बुनियादी जानकारी का सटीक डेटा तैयार किया जाए, जिससे भविष्य की योजनाओं को बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। उन्होंने बताया कि 15 से 30 अप्रैल 2026 तक नागरिकों को स्वयं गणना का विकल्प दिया गया था। इसमें 13,778 मकानों की गणना प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जनगणना 2027 की कार्य योजना और क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए जिले के मुख्य प्रशिक्षक जनगणना आर के पांडे ने आकाशवाणी को बताया।
3: भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत प्रथम चरण का कार्य, मकान सूचीकरण का कार्य प्रारंभ है। इंदौर जिले में कुल 41 चार्ज ऑफिसर बनाए गए हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 19 और नगर निगम क्षेत्र में 22 हैं। और कुल जो प्रगणक ब्लॉक बनाए गए हैं, यानी जो मकान सूचीकरण ब्लॉक जो बनाए गए हैं, ग्रामीण में 2,068 और नगर निगम क्षेत्र में 3,890। इस तरह से 5,958 ये प्रगणक ब्लॉक बनाए गए हैं, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक में एक एक प्रगणक प्रत्येक परिवार में जाकर के डिजिटल फॉर्म में उनसे 34 जानकारियां ले रहे हैं और उसको ऑनलाइन करते जा रहे हैं। और इनके सुपरविजन के लिए प्रत्येक 6 प्रगणक के ऊपर एक सुपरवाइजर की नियुक्ति की गई है। अभी तक 2,141 ब्लॉक पूरे जिले में हैं, जिनमें 100% काम हो गया है। ये काम 30 मई तक होना है।
2: गौरतलब है कि मकान सूचीकरण की प्रक्रिया से जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की सटीक एवं वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सकेगा। इसके अलावा डिजिटल कनेक्टिविटी, आपदा जोखिम, आवास की स्थिति और संसाधनों की उपलब्धता का भी विश्लेषण होगा, जिससे जिले की विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से बनाया जा सकेगा। जनगणना के दूसरे चरण में 1 से 28 फरवरी तक डिजिटल माध्यम से जनगणना की जाएगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए इंदौर से मनिंद्र कुमार दुबे।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन में अब हम रुख करते हैं खरगोन जिले का, जहां पर भीषण गर्मी के मौसम में कलेक्टर भव्या मित्तल के निर्देशानुसार शहर एवं जिले के विभिन्न स्थानों पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे खरगोन संवाददाता आशुतोष पुरोहित।
4: खरगोन जिले में भीषण गर्मी के मौसम में कलेक्टर भव्या मित्तल के निर्देशानुसार खरगोन शहर एवं जिले के विभिन्न स्थानों पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जाँच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा अलग अलग खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर खाद्य सामग्री के करीब 350 से अधिक नमूने संग्रहित किए गए। प्रशासन द्वारा खाद्य पदार्थ गुणवत्ता की जांच को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री HL आवासी।
5: गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए माह मार्च से खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा खाद्य पदार्थों जैसे बेवरेजेस पदार्थ, जैसे कोल्ड ड्रिंक, दूध, दूध उत्पाद जैसे खाद्य पदार्थ, जैसे आइसक्रीम, कुल्फी, मावा एवं अन्य खाद्य पदार्थों की जांच संपूर्ण जिले में विशेष अभियान के तहत उक्त खाद्य पदार्थों के कुल 350 नमूने लिए जाकर जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल को भेजे गए हैं। जो खाद्य पदार्थ अवमानक पाए जाने पर या अन्य धाराओं के उल्लंघन करने पर माननीय सक्षम न्यायालय में 15 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। आम उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी शिकायत पर भी विभाग के द्वारा तत्काल जांच कर नमूने लिए।
4: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खरगोन से आशुतोष पुरोहित।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं मंदसौर जिले पर, जहां पर ग्राम पंचायत से लेकर नगरीय वार्डों में आयोजित प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों में लोगों की विभिन्न बीमारियों की जाँच निःशुल्क की जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे मंदसौर संवाददाता दीपक शर्मा।
6: मंदसौर जिले में ग्राम पंचायत से लेकर नगरी वार्डों में प्रधानमंत्री आयुष्मान

0: आरोग्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत शिविर में लोगों की विभिन्न बीमारियों की जांच भी निःशुल्क की जा रही है। इसके साथ ही 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आम जन को क्षय रोग से होने वाले लक्षण और इसके बचाव की जानकारी दी जा रही है। शिविर में पहुंच रहे लोगों को टीबी मुक्त भारत की शपथ दिलाने के साथ ही टीबी जैसी बीमारी के लक्षणों और निक्षय योजना के तहत मिलने वाली 1000 की मासिक आर्थिक सहायता की जानकारी भी दी जा रही है। आयुष्मान आयोग शिविर में टीबी स्क्रीनिंग, एक्सरे, ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी करीब 50 से अधिक बीमारियों की जांच, वहीं निःशुल्क दवाइयां वितरित कर बेहतर स्वास्थ्य के लिए चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के मंदसौर से मैं दीपक शर्मा।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली खबर है झाबुआ जिले से, जहां की रामा तहसील में आयोजित ग्राम चौपाल में कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, जल संरक्षण और विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान ग्रामीणों से संवाद किया। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे झाबुआ संवाददाता हरीश कुमार।
2: वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार यानी CFR के तहत ग्राम साढ़ को सर्टिफिकेशन प्राप्त होने के बाद ग्राम चौपाल आयोजित की गई। कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने ग्राम साढ़ और सदावा के बीच सामुदायिक वन अधिकार क्षेत्र का निरीक्षण कर ग्रामीणों से वन संरक्षण, पारंपरिक सीमाओं और स्थानीय आवश्यकता पर चर्चा की। ग्राम चौपाल में ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, सिंचाई, स्वास्थ्य, आंगनवाड़ी और वन अधिकार से जुड़ी समस्याओं एवं सुझाव रखे। झाबुआ कलेक्टर डॉक्टर योगेश कुमार भरसट ने आकाशवाणी को बताया कि
3: हमारा झाबुआ जिला का पूरा प्रशासन है, जिसमें प्रशासन, पुलिस एंड फॉरेस्ट सभी अधिकारी, इसके अलावा हमारे जिले के सभी जो अधिकारी जिला स्तरीय है, तहसील स्तरीय है और ग्राम स्तरीय, सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। गाँव चौपाल लगाने का यही उद्देश्य था कि प्रशासन बहुत ही संवेदनशील है, जो भी समस्या है हमने उनको बताने के लिए कहा और सभी लोगों ने शांतिपूर्वक ढंग से उनकी समस्या भी बताई और हमारे द्वारा जो भी अधिकारी है उन्होंने कुछ आने वाले समय में खाद से संबंधित हो या किसान की, क्योंकि ये किसान कल्याण वर्ष है, उसके तहत हमारे जो भी कृषि संबंधित उनको योजना के बारे में बता दिया। इसके अलावा भी हमारी जो अपेक्षा है प्रशासन की कि लोगों को कैसे समरसता रहे और जो वन अधिकार, जो सामुदायिक वन अधिकार उनको पत्र प्राप्त हुआ है इस गांव को, तो उनको आगे कैसी कार्य योजना बनानी है और कैसे वो अपने अधिकार, सामुदायिक वन संसाधन जो अधिकार है उसके तहत कैसे कार्य कर सकते हैं उसके बारे में बता दिया। तो ये मुझे लगता है काफ़ी अच्छा एक चौपाल रहा।
2: पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने जिले में अपराध, दहेज, दारू और डीजे के बारे में बताया कि
4: जिले के सारे अधिकारी, कलेक्टर साहब, मैं, DFO साहब और पूरे सभी विभागों के अधिकारी एक जाजम पे इस गांव में बैठे थे। पब्लिक से एक संवाद बनाने का प्रयास किया गया, कनेक्ट किया गया, उनकी चीजों को भी बहुत गंभीरता से सुना और एक लोगों के द्वारा भी एक मैसेज देने का प्रयास किया कि पुलिस शासन आपके लिए है। किंतु उस जिले में कोई बहुत वैसा क्राइम नहीं है, किंतु जो सामाजिक बुराइयां हैं उसके चलते जो अपराध है उसके बारे में एक अवेयर करने का भी प्रयास था कि शराब हुआ, डीजे हुआ, दहेज हुआ, ये बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना आगे हम लोगों को आना चाहिए, उन सब चीज़ों से ही हम अपराध और बाकी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ठीक से कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छे माहौल में इनसे बात की, काफ़ी लोगों ने सहयोग किया और आने वाले समय में हम लगातार ऐसा प्रयास करेंगे।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट में रुख करते हैं जबलपुर जिले का, जहां पर समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य लगातार जारी है। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी जबलपुर संवाददाता सुरभि तिवारी।
5: जबलपुर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य लगातार जारी है। इस दौरान कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने अधिकारियों को खरीदी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने और किसानों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। गेहूं खरीदी, परिवहन, भंडारण और बारदानों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान सुनिश्चित करने के साथ साथ कलेक्टर ने अधिकारियों को खरीदी केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर स्टॉक सत्यापन करने और अनियमितता पाए जाने पर तत्काल सख्त कार्यवाही करने को कहा है। जिले में अब तक 25,604 किसानों से करीब 17,24,000 क्विंटल गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। उपार्जन के एवज में किसानों को 236,67,00,000 रुपए से अधिक का भुगतान भी किया गया है। इस बार जबलपुर जिले में 70 खरीदी केंद्रों के माध्यम से गेहूं उपार्जन किया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए जिले के 50,788 किसानों ने पंजीयन कराया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली

0: रिपोर्ट है खंडवा जिले से, जहां पर वन विभाग और एलएनटी कंपनी के संयुक्त तत्वावधान में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत बीते दिनों प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह द्वारा की गई। और जानकारी दे रहे हैं हमारे खंडवा संवाददाता हीरालाल लोंगरे।
1: कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने वनग्राम आंवलिया स्थित जनजातीय उद्यमिता प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास केंद्र में किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के 10वीं 12वीं एवं RTI उत्तीर्ण युवाओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें मशीन संचालन, औद्योगिक कार्यप्रणाली और स्वरोजगार से जुड़े कौशल सिखाए जाएंगे। जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता वन क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। प्रतिभागियों को भोजन, आवास और यूनिफॉर्म जैसी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। वन परिक्षेत्र पूर्व कालीभीत के वन प्रक्षेत्र अधिकारी श्री वीरेंद्र सिंह आचार्य ने बताया कि
2: आज के प्रति स्पर्धात्मक दौर में केवल शैक्षणिक योग्यता पर्याप्त नहीं है, बल्कि तकनीकी दक्षता और व्यवहारिक ज्ञान भी आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए युवाओं को उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को मशीन संचालन, औद्योगिक कार्यप्रणाली, सुरक्षा मानकों तथा स्वरोजगार से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी जाएगी, जिससे वे भविष्य में निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के साथ स्वयं का कार्य भी प्रारंभ कर सके।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट है मंडला जिले से, जहाँ के रामनगर में 2 दिवसीय आदि उत्सव का आयोजन 15 और 16 मई को किया गया। इस उत्सव में केंद्रीय मंत्री जुएल ओराव, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रदेश शासन की मंत्री संपतिया उइके ने शिरकत की। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा आयोजित इस भव्य आदि उत्सव में जनजातीय संस्कृति, इतिहास और गौरवशाली विरासत की अनूठी छटा देखने को मिली। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे मंडला संवाददाता शशांक चौबे।
3: आदि उत्सव के पहले दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले एक दशक से आयोजित हो रहा आदि उत्सव जनजाति समाज की गौरवशाली परंपराओं को जीवंत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री ने मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, उमरिया और छिंदवाड़ा से आए गोंड एवं बैगा समाज के लोगों का स्वागत करते हुए आयोजन की भव्यता की सराहना की। आदि उत्सव के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उत्सव के दौरान जनजातीय लोक नृत्य, पारंपरिक संगीत, लोक गाथाएं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रही। वहीं हस्तशिल्प, पारंपरिक वेशभूषा, चित्रकला और ऐतिहासिक विरासत पर आधारित प्रदर्शनी ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। जनजातीय प्रतिभाओं और विद्यार्थियों का सम्मान भी किया गया। पद्मश्री से सम्मानित अर्जुन सिंह दुर्वे, भज्जू सिंह श्याम और उषा बागले सहित कई प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंडला जिले से मैं शशांक चौबे।
0: तो श्रोताओं, ये था हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात कुछ और जिलों की समसामयिक खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोरा ने ओस्लो में सीमित और शिष्टमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों नेताओं ने संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष तथा आर्कटिक क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से उत्पन्न होने वाले व्यापक अवसरों का भी उल्लेख किया। बातचीत के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली की राजधानी रोम पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री सुश्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने अमेरिका के साथ बातचीत करने के अपने निर्णय को उच्च ठहराया है और कहा है कि कूटनीति में गरिमा जरूरी है, लेकिन ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम के भंडारों, प्रतिबंधों में राहत और पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर बातचीत में गतिरोध रहते हुए ईरान को नई चेतावनी जारी की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वायदों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों की जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में CBI ने 5 जगहों पर तलाशी अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। इससे पहले एजेंसी ने आज दीपक सिंगला और अन्य हवाला ऑपरेटरों के खिलाफ दिल्ली और गोवा में तलाशी अभियान चलाया। आरोप है कि दीपक सिंगला दिल्ली और गोवा के बीच आम आदमी पार्टी के लिए धन हस्तांतरण के लिए हवाला संचालन का काम संभाल रहे थे। दीपक सिंगला ने 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में विश्वास नगर क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के लिए टिकट पर चुनाव लड़ा था। IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्लेऑफ के और करीब आना चाहेगी, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष 4 में प्रवेश करने पर होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 7:05 हुए हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। कार्यक्रम विवरण में पहले सुनिए आज की सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। रात 8 सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात 8:15। रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। 10 सुनिएगा आपकी फरमाइश। रात 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग जय जय बंती। ये थे आज की सभा के शेष कार्यक्रम और अब एक नजर डालते हैं कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। पहले सुनिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण कल सुबह 11 से होगा, जिसमें 11 आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आपकी फरमाइश

कार्यक्रम का आनंद आप ले सकेंगे कल दोपहर 12 बजे और 2:30 बजे। 12:30 बजे संग्रहालय के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे धारावाहिक पंचतंत्र की 6वीं कड़ी। कल दोपहर 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 बजे लोकसभा।

कल शाम 5:02 पर युवाओं का कार्यक्रम युवाणी आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। और कल रात 8 सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में। कल रात 9:30 उर्दू प्रोग्राम कहकशां में आप सुनेंगे गजलों पर आधारित केंद्रित कार्यक्रम आवशारे गजल। 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे पंडित कुमार गंधर्व का ख्याल गायन राग होगा हमीर। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। और अब सुनिए आकाशवाणी भोपाल से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

कल सुबह 7:20 पर सुनिएगा दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा आप सुन सकेंगे सुबह 8:30। सुगम संगीत में 9:15 आप सुनेंगे पुष्पा पगधारी की गाई गजलें। कल सुबह 9:30 शब्द सागर कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे परिचर्चा, विषय है कहानी लेखन में स्वरूप और संवेदना। प्रतिभागी हैं डॉक्टर गोविंद मिश्रा, शशांक और डॉक्टर उर्मिला शरीश। जिले की चिट्ठी आप सुन सकेंगे कल सुबह 10:00 और 10:05 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर। 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में हम आपको सुनवाएंगे कुमार गंधर्व का ख्याल गायन, राग होगा अहीर भैरव। कल शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा से ली गई भेंटवार्ता, विषय है गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल। साथ ही सुनिएगा बुंदेली समाचार और लोकगीत। ये थे आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कल के कुछ मुख्य कार्यक्रम। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। हमारा कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 7:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: खो गया इंतजाम।
4: किसका?
5: गुड्डी की फीस का।
4: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली की दो दिन की यात्रा पर रोम पहुंचेंगे। रेड क्रॉस के सिद्धांत बच्चों में सेवा, सद्भाव, करुणा और संवेदनशीलता विकसित करते हैं, कहा राज्यपाल ने। प्रदेश में जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान आज से शुरू। और प्रदेश के कई जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, मौसम विभाग ने तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने ओस्लो में सीमित और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत नॉर्वे संबंधों को ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के स्तर तक ले जाने पर सहमति जताई। ये स्वच्छ ऊर्जा, ब्लू इकोनॉमी और हरित बदलाव के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के पूरे दायरे की समीक्षा की और आर्कटिक क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली की दो दिन की यात्रा पर रोम पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में जज्बा इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
1: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और तेजी से फैलें। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि रेडक्रॉस के सिद्धांत बच्चों में सेवा, सद्भाव, करुणा और संवेदनशीलता विकसित करते हैं। आज भोपाल में आयोजित जूनियर रेडक्रॉस और युवक रेडक्रॉस शाखा की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्र के लिए सक्षम पीढ़ी के निर्माण के लिए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों में रेडक्रॉस की गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि शैक्षणिक संस्थान बच्चों में ज्ञान और संस्कार को प्रदान करने वाली सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। संस्थानों को विद्यार्थियों को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, उन्हें समसामयिक चुनौतियों और जीवन की प्रतिस्पर्धाओं के लिए जुझारू बनाएं, वहीं सफलताओं के दबाव और तनाव प्रबंधन से निपटने का हुनर सिखाएं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मरीज की चिकित्सा सिर्फ एक व्यवसाय नहीं, ये मानव सेवा का एक माध्यम है। आज मुख्यमंत्री निवास में आयोजित एक MOU बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें ऐसे चिकित्सक तैयार करने हैं जो मानव सेवा और मरीज की सेवा के लिए तत्पर हो। इस MOU का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश को सेवा प्रधान स्वास्थ्य नेतृत्व का मॉडल बनाना है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियां देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से मितवई जीवन शैली अपनाने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने और आत्मनिर्भरता के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने कहा कि देश की जनता उनके आह्वान का गंभीरता से पालन कर रही है।
1: वर्तमान वैश्विक परिस्थितियां देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से मितव्ययी जीवन शैली अपनाने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने और आत्मनिर्भरता के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। उनके आह्वान का देश की जनता बड़ी गंभीरता से पालन कर रही है। समाज के हर एक वर्ग ने गंभीरता से लिया है और उसके अनुरूप मितव्ययता अपनाने का, डीजल पेट्रोल की खपत घटाने के और बाकी उपायों को भी समाज का लगभग हर वर्ग कर रहा है।
0: प्रदेश में हाल ही में नियुक्त निगम मंडल, बोर्ड, प्राधिकरण और आयोगों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के लिए आज विशेष प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल में प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया। जनजातीय वर्ग के लिए शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार और

योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आज से 25 मई तक राष्ट्रव्यापी सूचना शिक्षा संचार अभियान जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान संचालित किया जा रहा है। जनजातीय कार्य विभाग मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने विभाग के सभी मैदानी अधिकारियों को सफलतापूर्वक शिविर लगाने और लक्षित समूह को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मंत्रालय में मध्यप्रदेश राज्य आजीविका मिशन फोरम की शासी निकाय की बैठक ली, विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। बैठक में विगत बैठक के निर्णयों के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए मंत्री श्री पटेल ने आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों के HR मैनुअल पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। प्रदेश में भीषण गर्मी लगातार बनी हुई है। राज्य के कई जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच चुका है। गुना में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे आमजन को तेज गर्मी और लू का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ोतरी की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, इंदौर संभाग के कई जिलों में लू चलने का अलर्ट भी जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल के बैतूल जिले में 20 मई को प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का संभागायुक्त ने आज निरीक्षण किया। झाबुआ में कल विकासखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया जाएगा। आगर मालवा जिले के सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष ने नगर के वार्ड क्रमांक 7 में 20 लाख रूपये की लागत से बनने वाली CC रोड का आज भूमि पूजन किया। नर्मदापुरम जिले में आयुष विभाग द्वारा घर घर योग हर व्यक्ति निरोग अभियान के तहत जिले भर में नियमित योग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। सीहोर जिले की बुधनी तहसील में भारत सरकार जनगणना निदेशालय के अधिकारियों ने यहां चल रही जनगणना तैयारियों का निरीक्षण किया। शिवपुरी में विद्युत समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विशेष जनसंपर्क अभियान आयोजित किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: तीनों कॉलेज में
6: डोंट वरी,
5: फीस तो देखो।
7: क्या हाल है, क्या हुआ?
6: फीस की टेंशन,
7: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
8: आरबीआई कहता है
9: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
10: आकाशवाणी के रीवा केंद्र से आई सुनीत हैं चौपाल।

चौपाल के सब सुनैया भैया बहनी का अखंड भाई के राम राम। सुनैया भैया बहनी, अक्सर जब हम अपने हम उम्र जन के साथ गांव के चौपाल माँ या खेत खरिहान माँ आर मेढ़ माँ या चलत फिरत बतकहाँ करी थन एक दूसरे से बोलित बतई थन तो ओ माँ खेती किसानी मौसम माँ और चुनाव ये मेरे के बात होती हैं या फिर एक दूसरे के सेहत के स्वास्थ्य से जुड़ी बात होती हैं। सेहत से सुधि आई के अपने शरीर का नुकसान पहुँचावे वाले माँ कईक वायरस कईक इन्फेक्शन के असर रहत है और मनई सावधानी से

0: जागरूकता से अपने शरीर का रोग बिरामी से बचावे की कोशिश गला करी थे। और इतने में जो काम न बना तो इलाज दवा डॉक्टर के मदद में नहीं ली थे। सुनिए भैया बहनी, आपन जो देश के डॉक्टर हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो जनवाहा हैं, जो विशेषज्ञ हैं, हर मेर के रोग बिरामी के इलाज और ओखर कैसा निदान होखा खोजे माँ ओखर दवा बनावे में लगे हैं। पर कुछ ऐसनो बीमारी हैं जिनके जिनकर दवा अब तैयार हो रही हैं। सुनिए भैया बहनी, आज ऐसन विषय में चर्चा करित लागे हैं जौन के अपने देश के वर्तमान और भविष्य से जुड़ा है, युवा पीढ़ी से सीधे जुड़ा है। आज 18 मई है, आज विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाव जा रहा है। सुनिए भैया बहनी, अब कईक जने यह सोच में पड़ गए हो कि एड्स के बारे में तो सुने रहन, पर यह वैक्सीन दिवस का आया है, का एड्स के टीका आएगा जैसे पोलियो के खुराक पियाई जाती या कोनो बीमारी के वैक्सीन लगाई जाती हैं, वह मेरे का एड्सों के वैक्सीन बन गया का। चली बिना घुमाए फिराए बताए दे थन कि अब तक HIV एड्स के कोनो पक्का या पूरी तरह से सफल टीका या वैक्सीन बाजार में नहीं आ पाया। फिर एक प्रश्न और आवत है, या कि फिर यह दिवस का है मनावा जा रहा है। ओकर जवाब यह है कि यह दिन उन वैज्ञानिक डॉक्टर और शोधकर्तन का याद करे के, उनके हौसला अफजाई करे के दिन आए, जे दिन रात प्रयोगशाला में या जानलेवा वायरस के इलाज खातिर ओके ओका हराबे खातिर टीका बनावे में जुटे हैं। और यह दिन विज्ञान के यह बतावत है कि विज्ञान के जो आविष्कार हैं उन लगातार विज्ञानों कैसे कोशिश की जा रही है कि कुछ बेहतरी हो, कुछ सुधार हो। सुनिए भैया बहनी, जो अब वैज्ञानिक रूप से मैंने समझी तो यह जो टीका है यह बनाओ इतना कठिन काहे है। ओकर कारण यह है कि जो उन मानव शरीर है वो माँ जब कौनो साधारण वायरस के प्रभाव होते हैं तो वायरस से लड़ाई खातिर वो खुद ब खुद शरीर एंटीबॉडी जेखा यह समझ सके थे कि लड़ाई वाले सिपाही उनका बना लेते हैं। पर HIV एक ऐसा बहरूपीय वायरस है जो उनके मानव शरीर के रक्षक तंत्र जेखा इम्यूनिटी में नहीं कही थे उम हमला कर देते हैं और यह इतनी तेजी से अपन रूप बदल देते हैं कि वैज्ञानिक एक जौने रूप खातिर ओके जौने रूप के हिसाब से टीका बनावा थे यह तुरंत गिरगिटस दूसरा रूप रंग बदल लेते तो वह टीकाओं में काम नहीं कर पावे। सुनिए भैया बहनी, यह मानी कि वैज्ञानिक mRNA जैसन आधुनिक तकनीक के सहारे एक तोड़ खोजे में लगे हैं, ओके आसपास तक जाते हैं और देखी सफलता कोनो न कोनो दिन मिलवे करी। सुनिए भैया बहनी, एक बात और ही कि अपने गांव घर के जो सियान हैं, जो पुरनिया हैं, वो हमेशा से यह कहत रहे हैं और अपनों पर जिनका कोनो न कोनो मामला न कोनो कोनो बात में कहावे भी हुई कि परहेज और सावधानी कोनो समस्या के समाधान का और समस्या से बचे खातिर, समस्या मनी न फंसे वो यह बहुत जरूरी है कि मने परहेज रखे सावधानी रखे तो यह कोनो मेर के समस्या से बचे के एक तरीका हो सकता है। जैसन जब तक टीका नहीं बनाता है एकर तब तक आपन जो जागरूकता है, जो अपन सावधानी ही, जो सतर्कता है, वह एक बड़ा एमा कारगर जो कारक है वह हो सकता है। सुनिए भाई बहनी, एक बात और ही कि अपने गांव समाज में HIV एड्स का लेके कई एक मेर के भ्रांति फैली रहती हैं, कौन कई एक मेर के गलत जानकारी रहती हैं, तो जरूरी यह है कि पहले उन जनवहीन का मन ही दुरुस्त करे, वो जनवही के सही करे जो हमारे अपने के बीच में हई। जैसन यदि कोहू का यह बीमारी है, HIV की बीमारी है, तो उनके साथ हाथ मिलाए से, उनके साथ एक हैंडपम्प के इस्तेमाल करे से, जल स्रोत के इस्तेमाल करे से या वायरस नहीं फैले, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाथ मिलाए से या उनका देखे से यह फैल जाता है, ऐसे कोनों में के मच्छर काटे से यह नहीं फैलाता है, इन सब बात का मनी का जाना चाहिए। और यह मानी कि यह मामला में उनका बिल्कुल अलग थलग न छोड़ दीजिए, को पीड़ित हों उनका अलग थलग नहीं छोड़े का है, उनका इलाज चल रहा है, वो अपने जीवन में उस संघर्ष कर रहे हैं, तो कोशिश यह करी कि ये जो बीमारी ही ओसे लड़क है, बीमार से लड़े का नहीं आए, माने जो बीमार है ओसे नहीं लड़े का है, जो बीमारी ही ओसे लड़क है ओकर सामना करे। एहन से जरूरी है कि अपन जो जागरूकता के स्तर है जो जनबही ही ओखा मने अप टू डेट करत रहे। सुनैया भैया बहनी, अब एक बात और ही के उनका कारण है जो उनके जो से HIV एड्स हो सकत है। ओमा जो देखी तो असुरक्षित शारीरिक संबंध, संक्रमित सुई या सिरिंज से, बिना जांच के खून से, या संक्रमित माँ से उनके लड़का बच्चन का। अब जो WHO का देखी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ओ के अनुसार का बतावत है हुआ कि HIV वायरस एक ऐसा वायरस है जो उन शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली में हमला करत है। एका एक्वायर्ड एम्यूनियो डिफिशियंसी सिंड्रोम जिका शार्ट मा संक्षिप्त में एड्स कहते के नाम से घलाए जाना जाता है। या जो HIV वायरस है या HIV एड्स जो है ओकर सबसे खतरनाक अवस्था के रूप में जाना जाता है। और एका जो संक्रमित व्यक्ति हैं वह संक्रमण खाती जो WHO है वह यह कहते हैं कि जैसन मानव शरीर के जो तरल पदार्थ हैं जैसन रक्त है, वीर्य है या योनि द्रव है, ई जो है इनके माध्यम से फैलत है और संक्रमित माँ से उनके लड़कन का हो सका था, ये पहले बताना है। और HIV की जो शुरुआती स्टेज ही जो ओम जानकारी हो जाए, जांच में पता चल जाए, तो ART जो सिस्टम है, ART तकनीक ही उसे एका रोके के प्रयास किए जाता है, एक इलाज करे के कोशिश की जाती। और कईक वर्ष तक जब यह मानी कि यह वायरस राहत है तब वह फिर जाके आगे खतरनाक स्थिति में बदलत है। सुनिए भाई बहनी एक बात और ही के ये जो संक्रमण है एकर स्थायी इलाज भले नहीं है, पर एक जो उपचार है वह ART दवा से कीन जात है। और यह शरीर में ये जो दवा ही ये क्या करे थी, ये ख़त्म तो नहीं कह पावे वायरस का, पर शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता ही ओखा बढ़ावे के काम करे थी, या वायरस के संख्या का बढ़े से रोके के काम करती ही। तो यह मेरे से एक बचाव के दिशा में, एक जो सुरक्षा है ओके दिशा में लगातार सरकार कैसे वैज्ञानिकन कैसे प्रयास हो रहा है कि कुछ स्थायी इलाजो बन जाए। कर सुनैया भाई बहनी, गर्भवती माता के मामला में यह है कि अगर समय से पता चल जाए तो जो होए वाली संतान ही लड़का बिटिया जाए जो हो ओहू को बचावे की कोशिश की जाती। तो कुल मिला के यह है कि अपन जीवन अपना को सुरक्षित रखे है तो संयमित जीवन जानकारी के साथ, सावधानी के साथ, परहेज के साथ जे जी, और यह संक्रमण से जो जागरूकता है वह बचा सकती थी। अब जब तक स्थायी रूप से एकर इलाज, स्थायी रूप से निदान नहीं बन रहा है, तो अपन जनबही दुरुस्त कह के मनई और स्वस्थ रह के, सुरक्षित रह के अपने जीवन की खुशहाली का बचा सकी थी।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी

वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।

0: सुनैया भैया बहनी, अब प्रणीता सिंह परिहार से सुनत रहन या लोकगीत। और यह है कि अपने खेती किसानी से जुड़े मामलन में जो जनवाहन से जानकारी मिल जाए तो काम और आसान हो जाते और बढ़िया हो जाते। तो आई मने लई थन ये जन बही हे और साइलेज या बाबा जन बही देत लाग हैं श्री ब्रिजेश ओझा। आई मने सुनी थन।
1: किसान भाई बहनों, राम राम। हमारे पास पशु होते हैं और पशुओं के लिए पोषण बहुत ज़रूरी होता है, और हमारे वैज्ञानिक और हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि पशुओं के लिए चारा बहुत ज़रूरी होता है, पर हम सब ये जानते हैं कि चारा साल भर हमें नहीं मिल सकता। तो चलिए हमारे पशुओं के लिए हे और साइलेज बनाकर हम किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं, किस तरह से उनका पोषण कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण जानकारी आज लेते हैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार ओझा जी से, जो कि हमारे बीच में उपस्थित हैं और पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय रीवा में सहायक प्राध्यापक के पद पर पदस्थ हैं। ओझा साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: और हमारे श्रोताओं के लिए हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि हे और साइलेज की जो बात हो रही है आज, ये आवश्यक क्यों है?
2: जैसा कि आपने बताया कि वर्ष भर चारा उत्पादन संभव नहीं है।
1: जी जी।
2: लेकिन पशु की आवश्यकता होती है कि उसको हमें चारा खिलाना है, तो हे और साइलेज ऐसी मेथड्स हैं, ऐसी विधियां हैं जिसके द्वारा हम हरे चारे को संरक्षित कर वर्ष भर पशु की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं।
1: जी।
2: चारों का संरक्षण मुख्यतः दो प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कि आप मानो साइलेज बनाकर तथा हे बनाकर। इन विधियों द्वारा हरे चारे की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है तथा संरक्षित चारे को खिलाकर हम पशुओं से उस समय भी उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं जब हरे चारे की अत्यधिक कमी होती है।
1: अच्छा, मतलब कि जब चारा नहीं भी हो तो हम चारे का ये विकल्प उनको खिलाकर और दूध का उत्पादन अच्छा ले सकते हैं।
2: जी जी बिल्कुल।
1: तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं साइलेज से। ये साइलेज क्या है?
2: साइलेज उस पदार्थ को कहते हैं जो कि अधिक नमी वाले चारे को हवा रहित नियंत्रित केडोन विधि द्वारा बनाया जाता है।
1: जी।
2: इसको बनाने के लिए हमें विशेष प्रकार के गड्ढे अथवा खातों की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम साइलो कहते हैं। और जब हरे चारे को हवा की अनुपस्थिति में किडवन किया जाता है तो लैक्टिक अम्ल पैदा होता है, और इस लैक्टिक अम्ल से चारे को सुरक्षित रखने में सहायता मिलती है।
1: अच्छा, एक तरह से मान के चलिए कि जिस तरह से हम अचार बनाते हैं कुछ कुछ वैसा ही है।
2: जी जी, ये हरे चारे का अचार आप कह सकते हैं।
1: जी। तो साइलेज जो आपने बताया अभी, इसको बनाने के लिए कौन कौन सी फसलों का उपयोग करना चाहिए?
2: अच्छा साइलेज बनाने के लिए यह आवश्यक है कि फसल को चुनाव अच्छी प्रकार से किया जाए तथा उसे ठीक अवस्था में काटकर उसकी कुट्टी की जाए। जिस चारे में फसल में किडोन के लिए घुलनशील सैकरा की समुचित मात्रा नहीं होती है, उससे अच्छा साइलेज नहीं बना सकते।
1: अच्छा।
2: तो अच्छा साइलेज बनाने के लिए हमें चारा फसलों की कटाई प्राय फूल आने की अवस्था या फिर दानों की दुग्धावस्था में करनी चाहिए। इसके लिए अनाज वाली हरी फसलें जैसे कि मक्का, बाजरा, जई, ज्वार इत्यादि उपयुक्त होती हैं। इन फसलों में शर्करा की मात्रा अधिक मात्रा में होती है, जिसका कि अच्छे प्रकार से प्राकृतिक किडोन होता है।
1: जी।
2: दलहनी फसलें साइलेज के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती, क्योंकि इनमें शर्करा की मात्रा कम तथा प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है।
1: जी।
2: परंतु यदि हमें दलहनी फसलों का उपयोग करना है, हमारे पास अतिरिक्त मात्रा में है, तो उसे हम धान के हरे पौधे के साथ मिलाकर 4:1 में उसके ऊपर लगभग 3-5% सीरा मिलाकर उससे भी हम साइलेज प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी।
2: इससे घुलनशील शर्करा के टूटने के कारण जो पीएच होगा वो घट के 3.5-4 के बीच में आ जाएगा।
1: जी।
2: और इस पीएच पर साइलेज में शुष्क पदार्थ के आधार पर लैक्टिक अम्ल की मात्रा 8-10% होगी।
1: जी।
2: इस प्रकार के साइलेज को एक अच्छे साइलेज की संख्या दी जाती है।
1: अच्छा अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि इसको मिश्रण करके ही बना सकते हैं हम, और कौन कौन सी फसलों का उपयोग करके अच्छा साइलेज बन सकता है।
2: जी।
1: इसकी विधि क्या हो सकती है साइलेज यदि बनाना है पूरी तरह से?
2: जी, साइलेज बनाने के लिए हमें सबसे पहले हरे चारे जिसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा 25-30% के बीच हो उसका चुनाव करना है।
1: जी।
2: फिर उस हरे चारे की कुट्टी बनाकर जो हमें साइलेज बनाने वाले गड्ढे हैं उनमें हमें इस प्रकार से दबाना है कि हवा की मात्रा एकदम कम से कम हो जाए, अधिक से अधिक हवा निकल जाए।
1: और मतलब हवा रहित उसको?
2: जी बिल्कुल, हवा रहित करना है। और हवा बाहर निकलने से क्या किडवन शीघ्र प्रारंभ हो जाता है।
1: जी।
2: और कुट्टी बनाने से कम जगह में अधिक चारा भरा जा सकता है तथा लैक्टिक अम्ल बनाने वाले जीवाणु को अधिक रस मिलता है। और चारे को हमें इस हिसाब से भरना है कि साइलो की दीवार से 2-3 फुट ऊपर चला जाए वो, जिससे कि दबने पर बना हुआ साइलेज जमीन के स्तर से ऊपर रहे तथा बरसात का पानी जो है वो गड्ढों में न जा पाए। फिर गड्ढों को भरने के बाद हमें पॉलीथीन की चादर से पूरी तरह से ढककर उसको हवा रहित करना है।

0: और गड्ढे के ऊपर गिली मिट्टी या गोबर का लेप करके भी हवा रहित किया जा सकता है।
1: चलिए, ये तो विधि हो गई
0: जी,
1: एक तरह से पूरा साइलेज जो है वो बना भी दिया। अब उसको पशुओं को खिलाना कैसे है?
0: हमें इसको दबाने के बाद 30 से 35 दिनों के बाद खिलाने योग्य हो जाता है ये जो
1: जी।
0: अच्छी प्रकार से बना हुआ साइलेज। फिर हमें सबसे पहले मिट्टी को सावधानीपूर्वक हटाना चाहिए, जिसके बाद पॉलीथीन की चादर को एक किनारे से हटाकर साइलेज को जितनी हमें आवश्यकता है पशु को उतना निकाल के फिर से उसको ढक देना चाहिए।
1: अच्छा,
0: ताकि हवा के संपर्क में कम से कम आए, अन्यथा साइलेज खराब होने की संभावना रहती है।
1: मतलब जैसा कि हम अचार में करते हैं कि उसको खोल के फिर बंद कर देते हैं, उसी प्रकार इसमें जितनी आवश्यकता हो उतना निकाला
0: जी
1: और
0: जी
1: शीघ्रता से उसे बंद कर दिया ताकि हवा ना लगे
0: जी बिल्कुल,
1: ज्यादा।
0: हवा के संपर्क में नहीं आना चाहिए।
1: तो अच्छे साइलेज के लिए, मान लीजिए साइलेज बहुत अच्छा बनाना है, तो उसके लिए आवश्यक बातें कौन कौन सी हमारे किसान बहन भाइयों को बताएं?
0: जी, हमें जो इम्पोर्टेंट बातें जो हमें याद रखनी है बिल्कुल, वो है कि साइलेज बनाने वाला गड्ढा है वो ऐसे स्थान पर होना चाहिए, ऐसे स्थान बनाना है हमें जहां बरसात का पानी ना जा सके।
1: अच्छा।
0: फिर दूसरी बात, हरा चारे में जो नमी का प्रतिशत है वो 65 से 75 के बीच होना चाहिए। फिर हरे चारे की कुट्टी बनाकर ही गड्ढों में भरना चाहिए उसे, एकदम हमें कुट्टी बनाकर भरना है जिससे कि अधिक से अधिक मात्रा में हरा चारा हम भर सके।
1: जी
0: फिर साइलो अथवा गड्ढों से अधिकतम वायु को निष्कासित कर देना चाहिए, जितना कम से कम वायु रहेगी हमारा साइलेज की गुणवत्ता उतनी अच्छी रहेगी।
1: हवा उसमें कम से कम
0: जी
1: रहे।
0: जी बिल्कुल
1: जी, पहली बात हमने की थी साइलेज की, तो वो तो आपने बता दिया।
0: जी जी
1: दूसरी बात हमने की थी हे की,
0: जी जी
1: तो ये हे क्या है और कैसे हम इसको समझ पाएंगे?
0: जैसे कि हमने बताया चारा संरक्षण की दो विधियां होती हैं, एक हम लोगों ने डिस्कस की साइलेज, दूसरी संरक्षण विधि है।
1: जी
0: तो सूखे हुए हरे चारे को हम हे कहते हैं।
1: अच्छा।
0: हे इस प्रकार से बनाना चाहिए कि चारे का जो हरापन है वो बना रहे, वह उसका जो पोषण मान है उसमें कोई लॉस ना हो, कोई हानि ना हो।
1: अच्छा।
0: और हमारे जो उत्तर भारत में हे तैयार करने का सबसे उपयुक्त समय माना गया है, वो माना गया है मार्च से लेकर अप्रैल तक। इस समय आसमान में धूप अच्छी तथा आर्द्रता कम होती है, जिससे चारा जल्दी से सूखकर अच्छा हे तैयार हो जाता है।
1: मतलब बहुत तेज धूप में सुखाना नहीं है उसको।
0: जी जी
1: जी, तो हे बनाने की भी विधि बता दें हमारे किसान बहन भाइयों को।
0: हे बनाने में हमें क्या करना है, हरे चारे को अच्छे प्रकार और समान रूप से धूप एवं हवा में सुखाना है।
1: जी।
0: इसके लिए जमीन पर फैलाकर सुखाने से भी हे तैयार किया जा सकता है। इसके लिए चारे को काटने के बाद जमीन पर 25 से 30 सेंटीमीटर मोटी परतों में फैलाकर धूप में सुखाया जाता है।
1: जी
0: और यदि धूप अधिक तेज ना हो तो हरे चारे को अधिक पतली सतहों में फैलाया जाता है। जब चारे की अधिकांश ऊपरी पत्तियां सूख जाती हैं एवं इनमें थोड़ा कुरकुरापन आ जाता है,
1: जी
0: तो चारे को छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा कर लिया जाता है। मार्च अप्रैल के महीने में चारे को इतना सूखने में 3 से लेकर 4 घंटे के बीच में लगता है।
1: जी
0: बनाए गए ढेरों की पत्तियां जब सूख जाएं परंतु मुड़ने पर एकदम न टूटने लगे, इससे पहले ही चारे को पलट देना चाहिए।
1: जी
0: चारे के ढेरों को ढीला रखा जाता है जिससे उसमें हवा आती जाती रहे। उलट पुलट कर यह कार्य दूसरे दिन प्रातःकाल में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि उस समय पत्तियों में कुरकुरापन कम होता है। दूसरे दिन शाम को इन छोटी छोटी ढेरियों को इकट्ठा कर देना चाहिए। पुनः इन सूखी ढेरों को अगले दिन तक पड़े रहने देना चाहिए, जिससे कि भंडारण से पूर्व चारा पूरी तरह सूख जाए।
1: जी
0: तैयार की हुई हे को छप्पर या अन्य किसी सुरक्षित स्थान में भंडारित कर लेना चाहिए।
1: कुल मिला के आपकी बात से समझ में आ रहा है कि बहुत तेज धूप में ना सुखाया जाए, जिससे उसका पीलापन ना आए
0: जी
1: और हरापन बना भी रहे,
0: जी जी
1: कुरकुरापन भी रहे और साथ में वो सूख भी जाए।
0: जी
1: अब हे बनाने के लिए जो हम फसल का चुनाव करें,
0: जी
1: तो कौन कौन सी फसल हम ले सकते हैं?
0: हे बनाने के लिए मुख्यतः हम लोग बरसीम, रिजका, लोबिया, सोयाबीन, जई, सूडान ग्रास इत्यादि को प्रयोग करते हैं।
1: जी
0: और इसके अतिरिक्त अक्टूबर में मक्का और ज्वार से भी हे तैयार किया जा सकता है।
1: अच्छा।
0: जी
1: ओझा साहब, जैसे कि हमने साइलेज बनाने की विधि में आपसे सावधानी पूछी थी, इसी प्रकार हे बनाने में भी क्या सावधानी रखनी पड़ती है?
0: जी अच्छी गुणवत्ता वाला हे तैयार करने में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि हे बनाने के लिए फसल की कटाई प्रातःकाल की ओस समाप्त होने के बाद ही करनी चाहिए।
1: अच्छा।
0: फिर हे की गुणों पर फसल की अवस्था का काफी प्रभाव पड़ता है, इसलिए फसल की कटाई पुष्पावस्था में करना आवश्यक होता है, क्योंकि अधिक पकी हुई फसल का हे अच्छी गुणवत्ता का नहीं होता।
1: जी।
0: फिर फसल को ठीक से सुखाना चाहिए ताकि उसका जो मॉइस्चर परसेंटेज है वो 15% के आसपास रहे, अन्यथा भंडारण के दौरान ऊष्मा पैदा होती है जिससे कि उसका पोषण मान कम हो जाएगा तथा उसके सड़ने की भी संभावना बनी रहेगी।
1: जी, आपने जो बताया कि उसको प्रातः काल में ओस समाप्त होने के बाद काटना चाहिए,
0: जी जी
1: ये क्यों, कारण हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे।
0: प्रातः काल में जैसे ओस समाप्त होती है तो मॉइस्चर लेवल का ठीक ठाक बना रहता है
1: अच्छा, नमी बनी रहती है
0: जी
1: उसके।
0: जी तो
1: जी
0: उसको उसको जब हम सुखाएंगे तो घट घट के 15% तक होगी, लेकिन यदि हम काफी धूप आने के बाद अगर ऐसा करेंगे
1: जी
0: तो उसकी नमी प्रतिशत 15% से नीचे हो जाएगा, जिससे कि हे की गुणवत्ता कम हो जाएगी।
1: मतलब वो सूख के खराब हो
0: जी
1: सकता
0: जी
1: है।
0: जी
1: तो डॉक्टर ओझा साहब, आपने जो हमारे किसान बहन भाइयों को पशुओं के लिए हे और साइलेज की जानकारी दी है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सुनैया भैया बहनी, अबे सुनत रहन भेंट वार्ता, विषय रहा हे और साइलेज। यह बाबा जनभी देत रहे श्री ब्रजेश ओझा, अपना से बात चलाइनता है श्री विपिन यादव। सुनैया भैया बहनी, मने अपन जो काम धाम है उनका करते हैं, उन काम धाम का करत कीन कई एक बेर मनई का लागत है कि कहाँ घूमिए, कोनो जगह देखिए। ई घूमे।

फिर है कि जो जगह है उनमें मने पर्यटक स्थल चुनी थे, जैसे मने नदी तालाब झरना इनका देखे के मन होते है। और कई एक मेयर के स्थिति ही जैसे जे को के मन पड़त है कि जे शहर के बिल्डिंग देखिए बड़ी बड़ी, को के मन पड़त है कि प्रकृति की लगे जी प्राकृतिक क्षेत्र में जी उनका देखिए। अच्छा सब जानकारी लेत किन, सब जनबही लेत किन, कई एक बेर मन में यह सवाल उठत है, मन में सोच आवत ही यह विचार आवत है कि हम पछे अपने इतिहास के जो स्थिति रही परिस्थिति रही ओहो के विषय में जनबही ले। अच्छा इतिहास किससे जुड़ी जो बात हैं जो अपन धरोहर हैं उन वह दिशा में एक महत्वपूर्ण जो जगह ही जहाँ से पता चला था मने का वह है संग्रहालय। सुनिए भाई बिनी आज आए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जेका इंटरनेशनल म्यूजियम डे घलाए कहा जाता है। अब सब तो नहीं पर कुछ भैया बहनी है जो सुनत लागें उनके मन में यह सवाल जरूर आवत हो कि हमार यह संग्रहालय से का लेना देना है, यह तो शहर के बड़े बड़े जगहन से जुड़ा है संग्रहालय। सुनिए भाई बहनी संग्रहालय के विषय में अपनों पीछे जानी थी कि ये कोनो बंद कमरा में या पत्थर चूना के ढेर में मने बनी जगह न हो, कोनो आकृति न हो, कोनो कलाकृति न हो, बल्कि या अपने मने जहाँ होते है तो अपन इतिहास पुरात पुरखन के विरासत और अपने संस्कृत का जो जिंदा रखे के काम है जो सोच ही ओके दिशा में यह काम करत है और वहाँ तक यह जुड़ा है। सुनिए भैया बहनी यह दिवस के जो शुरुआत ही वह अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा कीन गए रही और संग्रहालय जौन है तो ये कहवे बनब है कि कोनो मेर के ऐसा नहीं है कि पुरान सामग्री रखे के जगह तक यह सीमित है, बल्कि यह शिक्षा और दुई संस्कृति माने नई या पुरान उनका आपस में जोड़े के उनके मेल मिलाप के एक माध्यमों बनत है। और इहन रखी एक एक मूर्ति हर एक पुरान सिक्का हो चाहे बर्तन हो धातु के उ सब या फिर लिपि हो कोनो इ सब जो हैं तो अपने हजारन साल पहले के अपने पूर्वजन की जो बुद्धि ही जो उनका समझदारी ही या उनका विज्ञान कितना संपन्न रहे ज्ञान से कितना उन्नत रहे वह सब घलाए बतावत है। सुनिए भाई बहनी संग्रहालय ता हमारे अपना के गांवों से जुड़ा है, अपने घर से जुड़ा है। अब अपना का लागी कैसन चली शुद्ध देवाई थे अपने घर में जो पीढ़ीन पुरान चीज़ हैं अपने कई एक पीढ़ीन के सामग्री रहती हैं ऊँ जैसे उनमें अपना देख सकी थे कि बर्तन है पीतल के बर्तन हो या औरों को उन बर्तन हैं दादी नानी के जमाना के जो गहना हैं ये लकड़ी के पुरान संदूक हैं या अनाज नापे वाले जो मने के कहे थे कई एक पीढ़ी से चला आ रहा जैसे चाहे पैला हो कुरुआ हो कुरई हो तो इन सब या हल हो हर और चाहे कृषि में इस्तेमाल होए वाले औरों कोनो यंत्र हैं इन सब जो हैं तो उन याद दिलावत हैं मने का कि आपन जो पुरान लोग रहें पुरनिहा रहें वो कितने संपन्न और कितने बौद्धिक क्षमता वाले रहें और कैसन कैसन सामग्री कैसन कैसन कलाकृति बनाइन उनका इस्तेमाल करें। सुनिए भाई बनी एक बात और ही कि जो संग्रहालय से उखा जोड़ के देख सके थे बच्चे वह का जो अपने अपन सयान हैं गांव समाज के जे बुजुर्ग हैं उन जब अपने अनुभव से अपने उसे आनंद से सुनी बातन का आज तक आवे वाली पीढ़ीन का बतावत हैं जो पुरान बात बतावत हैं वह बतकहाँ या वह जनबही जो नहीं वह कोनो मेरे के संग्रहालय के सामग्री से कम नहीं होती है। कहे कि वह एक उनका लंबा अनुभव है और उन वह अनुभव को कैसे पाए नहीं अपने जो उनके पीढ़ी के जो उनसे आन रहे तो उनसे पाए नहीं जब छोट रहे तब उनसे पाए नहीं तो यह मानी कि यूँ सब बात हैं जिनमें मुझे ध्यान दे सकी थन। एक बात बस है कि कई एक बेर सुनिए भैया बहनी कई एक बेर ऐसा राहत है कि जो हुआ है मने कि यह बात का देख के दुख जरूर लग सकत है या जे देखा थे जो वह समय रहे तो उनका यह लग सकत है कि जो चिन्हारी हैं पुरनिहन के तो जैसे पुरखन के जो चिन्हारी हैं उनका कई एक बेर का होता है कि बहुतेरे

का कह देते हैं कि बेच दहीन कहाँ या फेंक दहीन या ओकर कबाड़ या खराब सामग्री मान के वह कह देते हैं। तो ये कहाँ ना कहाँ में याद जुड़ी ही, तो उनका सहेजे के उनका संहारे की जरूरत है, वह अपन विरासत है। सुनिए भैया बहनी, अपने पारंपरिक विरासत के जो है वो सम्मान सबक करे चाहिए, कहे के जब मने इनका हम पे सम्मान करब तो वह हमहू पे जनकर सम्मान के अवसर दे। सुनिए भाई बहनी, यह जो डिजिटल युग में हम पचे हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है, एक दुनिया में सबको बिलियान रहा थे, जैसे नई पीढ़ी हो तो खास तौर पर, तो जब मौका मिले तो अपने आसपास के संग्रहालय में जाए के पुरातन विरासत का याद जरूर करे चाहिए। और देखिए संग्रहालय में ज्ञान और शोध के अवसर मिलत है भाई, जानकारी मिलत ही मने उनके विषय में और सोच सकत है, साथ ही साथ यह दिशा में रोजगार के अवसर मिल सकत हैं। और मने जब अपन पुरान विरासत का देखत है, वो सामग्री का देखत है, तो गौरव की अनुभूति घलाए होती, मने के भीतर से गौरव की अनुभूति होती। सुनिए भाई बहनी, संग्रहालय के इतिहास के अपन मने इतिहास जोन है वह ओका ये कह सकते थे कि संग्रहालय जोन है इतिहास के आईना दिखावत हैं, साथ ही साथ भविष्य के मार्गदर्शकों हैं। तो अपने इतिहास के जोन अनुभव है, जोन अनुभूति ओका भविष्य तक ले जाए के दिशा में मनई काम करी और कोशिश करी कि चारों कई खुशहाली बनी रहे, खुशहाली के अवसर बने रहें और बढ़िया स्थिति परिस्थिति बनी रहे। और एक बात और ही कि आज सोमवार है, अपना पचे उखान के इंतजार में रही थे तो लिख ली आज के उखानों, लिख ली अपना पचे, निकाल ली कागज कलम और लिख ली उखान। एक रंग आवे एक रंग जाए, मुहे के सगली चमक चली जाए, यह उखान के उत्तर अपना पचे चिट्ठी में लिख के भेज सकी थन। और चिट्ठी लिखे खातिर पता की जरूरत पड़ी तो लिख ली, पता लिख ली जब कागज कलम निकाले हन, कहे कि बाद में पता बताओ उसे अच्छा बहिने लिख ली जब एक बेर लिखी लहन। कार्यक्रम चौपाल के चिट्ठी द्वारा उपनिदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा सिविल लाइन रीवा पिन कोड 486001, यह पता में अपना पचे या जो है चिट्ठी ओका भेज सकी थन। और अपना के जो सही उत्तर हो ओका जरूर शामिल कीजिए, अपने सुझाव शामिल की जाते ये साहित्य फीडबैक के आकाशवाणी रीवा के जो फीडबैक खातिर ईमेल आई डी ओहू में अपना पंचापन रचना और बाकी अनुभव भेज सकी थन, ओहू को शामिल करे की कोशिश की जाती। सुनिए भाई बहनी, एक बात और ही कि मौसम में देख लें गर्मी बहुत ही, तो वह हिसाब से तैयार रही और अपने शरीर के अपने सेहत के अपने घर परिवार के ध्यान रखी। और चली अपन अगले साथी कलाकार तैयार हैं, तो आई मनी सुनी थन या लोकगीत जोने का सुना रहे हैं शशि कुमार पांडे।

सुनैया भैया बहनी, घड़ी के देखी चले के जूना हो गए ही, अपना पे पता लिख लेने हन। तो दई आज्ञा चौपाल के सब सुनैया भैया बहनी का, अखंड भाई के राम राम, जय जवान जय किसान।

0: सुर्खियों में
1: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम में आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निशित कुमार और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा, नॉर्डिक देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों का नया युग पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। प्रोफेसर सचदेवा, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी शुक्रिया।
1: प्रधानमंत्री अपने 5 देशों की 4वें चरण की यात्रा में आज नॉर्वे पहुंचे। प्रधानमंत्री ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनस गहर स्टोर से भी बातचीत की और कल 3rd India-Nordic Summit में भी भाग लेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए सुनते हैं कि संयुक्त प्रेस वार्ता में नॉर्वे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
3: आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से

0: क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी से लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी। इसरो और नॉर्वे स्पेस एजेंसी के बीच आज हो रहा एमओयू हमारे स्पेस कोऑपरेशन को भी नया आयाम देगा। भारत और नॉर्वे की ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए लाभदायक होगा। हमें बहुत खुशी है कि नॉर्वे आज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ रहा है। आर्कटिक से आउटर स्पेस तक, ग्रीन शिपिंग से ब्लू इकोनॉमी तक, एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर फूड सिक्योरिटी तक हमारा सहयोग नए फ्रंटियर्स को छू रहा है।
1: प्रोफेसर सचदेवा, जैसा कि आज हमने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने खास करके ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर काफी बल दिया है। प्रोफेसर सचदेवा, हम यहाँ समझना चाहेंगे कि ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आखिर होता क्या है।
2: जी, ये इनफैक्ट जैसे आप देखें, ये पूरे दौरे के अंदर, इससे पहले प्रधानमंत्री स्वीडन में भी थे, उससे पहले नीदरलैंड में थे, अभी नॉर्वे में है, आज द्विपक्षीय बात हुई है, कल उनकी जो है इंडिया नॉर्डिक समिट होगी। इस सारे दौरे के दौरान बार बार ये जो बात उभर के आ रही है ग्रीन ट्रांजिशन की, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी हमने जैसे नॉर्वे के जो हमारी संबंध है उनको एलिवेट करके ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे बदल दिया है। इससे पहले हमारी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेनमार्क के साथ भी थी, और पिछले दो देशों में जहां इन्होंने दौरा किया था, स्वीडन में और नीदरलैंड में, वहां पे भी पार्टनरशिप को ऊपर करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा वहां पे दे दिया गया है। तो इस पूरे संदर्भ में मुझे लगता है कि भारत का जो दृष्टिकोण है यूरोप की तरफ, वो पहले से काफी बदल गया है, और हमारा जो लक्ष्य है 2047 का, जब हम विकसित भारत बनना चाहते हैं, उसमें मुझे लगता है भारत एक यूरोप को और यूरोप के अलग अलग देशों में उनकी शक्ति को पहचानते हुए, किसकी कॉम्पिटेंसी किस चीज में ज्यादा है, उसमें उनके साथ उसी टाइप की साझेदारी हम बना रहे हैं। और उस पूरी जो आने वाले 20 साल में हमको खासतौर से जो व्यापार है, निवेश है, तकनीक है, ग्रीन ट्रांजिशन है, उसमें भारत, ये सारे यूरोप के जो देश हैं, मुझे लगता है वो काफी उसमें हमारी मदद कर सकते हैं। जैसे नॉर्वे की खास बात करें, नॉर्वे में हालांकि आप जानते हैं कि उनके पास बहुत ही तेल के और गैस के भंडार हैं, उसके बावजूद भी वहां पे जो उनकी अपना बिजली जो खपत है 80% जो है वो सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक वहां से आता है। तो भंडारण होने के बावजूद भी वो काफी जो है अपनी ग्रीन एनर्जी की काफी तवज्जो दे रहे हैं, और यही बात पूरे नॉर्डिक के देशों की भी है और पूरे यूरोप के देशों की भी है। तो इनफैक्ट जो अभी हमने 3 महीने पहले जब भारत और यूरोपीय संघ की जो समिट दिल्ली में हुई थी, उसमें भी जो 2030 का हमने जो एक पूरा रोडमैप बनाया था, उसके अंदर भी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा स्तंभ जो उसका 2030 का भारत और यूरोपीय संघ का है, वो भी ग्रीन ट्रांजिशन वाला है, ग्रीन एनर्जी की पार्टनरशिप का है। अगर क्लाइमेट चेंज की जो बात है, वो पूरी दुनिया की इकट्ठी बात है, वो ऐसा नहीं है कि नॉर्वे में कुछ हो रहा है उसका असर हमारे ऊपर नहीं होगा, और जो हमारे यहाँ भारत के अंदर जो भी कुछ होगा उसका असर भी पूरी दुनिया के अंदर होगा। तो किस तरीके से दोनों देश जो है वो मिलके इस पूरी समस्या को सुलझा सकते हैं, क्योंकि वहां से उनके पास कई तकनीक है जो उन्होंने डेवलप की है, सस्टेनेबल मॉडर्नाइजेशन की, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन की, और एनर्जी को कैसे एफिशिएंटली यूज करना है और कैसे उसको ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है। तो वो सारी जो चीजें और जो सारी पॉलिसीज जो ये सब लोग, सब कंट्रीज और खासतौर से नॉर्डिक के देश और नॉर्वे जो है वो अपने देश में अपना रहे हैं, मुझे लगता है हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी लगता है कि उससे भारत काफी फायदा उठा सकता है। और उन टेक्निक्स को अगर हम भारत में लाते हैं, तो एक तो ये है कि वहां की कंपनीज को भी उससे फायदा होगा, क्योंकि उनको एक बड़ा स्केल यहाँ पे उसको बढ़ाने के लिए मिल जाएगा। और भारत उसको, जैसे प्रधानमंत्री ने बोला कि नॉर्वे के साथ खासतौर से ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, और कई ऐसी चीजें हैं, उन्होंने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, अगर उनकी तकनीक और हमारे उसको बड़े तरीके से कैसे तीसरी दुनिया के देशों में वही तकनीक को हम यहाँ पे लागू कर सकते हैं, तो उसको और देश भी इससे फायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह से पूरी जो ग्रीन ट्रांजिशन है जो बदल रहा है दुनिया, और उसके अंदर भारत यूरोप को और खासतौर से नॉर्डिक के जो देश हैं उनको अपना एक अच्छा साझेदार मानता है और उनको भी लगता है कि भारत के साथ जो

0: ये साझेदारी है, ये काफी फायदेमंद है सबके लिए।
1: स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से हम बात करें अगर आर्थिक साझेदारी की, तो इस पे भी प्रधानमंत्री ने काफी बल दिया है और हाल में ही इंडिया एफ्टा ट्रेड अग्रीमेंट जो साइन हुआ और टेपा अग्रीमेंट जो साइन हुआ, इस पर भी प्रधानमंत्री ने बात की। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से प्रोफेसर सचदेवा, अगर हम आर्थिक साझेदारी की बात करें, तो आप कैसे देखते हैं कि भारत और नॉर्वे के बीच में

0: हमने समझौता सबसे पहले किया था वो एक तरीके से टेम्पलेट बन गया हमारे बाकी दोनों समझौतों के लिए भी।
1: जी।
0: तो उसमें एक तो ये है कि हमारा जो वस्तुएं हैं वहां पे उनको काफी मार्केट मिल जाएगी, ये ऐसा हमारा मानना है उसके तहत। और सबसे बड़ी चीज ये है क्योंकि इन देशों के पास और नॉर्वे के पास खासतौर से काफी निवेश की संभावनाएं हैं, और उस समझौते के तहत ये भी एफ्टा कंट्रीज ने एक तरीके से वायदा भारत के साथ किया है कि $150 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आने वाले 10-15 साल में वो भारत में करेंगे। जो नॉर्वे के अंदर खासतौर से वहां का उनका जो अपना पेंशन फंड है
1: जी।
0: बहुत बड़ा पेंशन फंड है, उसने ऑलरेडी भारत के अंदर भारत की कंपनीज में 27-28 बिलियन का इन्वेस्टमेंट उसने ऑलरेडी करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो और भी संभावनाएं उनको लगती है कि भारत की जो मार्केट है खासतौर से जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर भी वो काफी निवेश कर सकते हैं। तो इस तरह से जो संभावनाएं इस पूरे एफ्टा के साथ बनी है दोनों नॉर्डिक के देशों के बीच में और एफ्टा कंट्रीज के बीच में और भारत के बीच में, और उसमें यह भी है कि भारत के अंदर जो सर्विसेज हैं उनको भी शायद वहां पे पहले से अधिक मिल पाएगा मार्केट, और वहां की सर्विसेज भी भारत के अंदर आ पाएंगी। तो दोनों को लगा जो फायदेमंद है दोनों के लिए, तो इसलिए उसी के ऊपर काफी बल दे रहे हैं। तो ये दोनों जो एग्रीमेंट हमने किए हैं उन दोनों एग्रीमेंट्स को नॉर्वे को भी और दूसरे देशों को फायदा उठाना चाहिए, यही शायद प्रधानमंत्री उनको बता रहे थे वहां।
1: जी जी जी, प्रोफेसर सचदेवा, प्रधानमंत्री कल स्वीडन में भी थे और आज नॉर्वे आए हैं। भारत और स्वीडन के बीच में भी काफी लॉन्ग स्टैंडिंग एक बहुआयामी एक रिश्ता रहा है काफी लंबा, लेकिन महत्वपूर्ण इस बार इसलिए भी है कि वो रिश्ता इस बार स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और जैसा कि हम समझते हैं कि ये चार बिंदुओं पे मुख्य रूप से आधारित है। प्रोफेसर सचदेवा, हम समझना चाहेंगे कि ये नॉर्मल जो पार्टनरशिप था उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एलिवेट करने का क्या अर्थ हुआ, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होता क्या है?
0: स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जैसे मैं बता रहा था कि यूरोप के अंदर हमारा सिर्फ यूरोपीय संघ के साथ ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है, इससे पहले हमारा फ्रांस और जर्मनी के साथ था, और जब यूके उसका हिस्सा था उनके साथ भी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और पिछले कुछ सालों में हमने इटली और ग्रीस और पोलैंड के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाया था। और अभी जो है इस दौरे के दौरान हमने देखा कि दो और देशों के साथ स्वीडन और नीदरलैंड्स के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एलिवेट किया गया है। इसका बेसिक मतलब ये है कि एक तो ये है कि जब आप किसी कंट्री को स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि मोटे तौर से हमारे हित जो है उनके साथ स्ट्रेटेजिक तौर से, चाहे वो आर्थिक स्ट्रेटेजी हो, चाहे एनर्जी की स्ट्रेटेजी हो हमारी, या हमारी दूसरे संबंध हो सुरक्षा के, उन सब में कहीं ना कहीं उन्हें हमारा कोई आपस में कोई मतभेद नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस करते हैं तो उसका एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाते हैं, मतलब ये कि कई जगह पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हर साल एक समिट मीटिंग होगा, कहीं पे फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे मीटिंग होगी, और दूसरे जो है मंत्रियों के तौर पे या अधिकारियों के तौर से अलग से कुछ वर्किंग ग्रुप्स बनेंगे, कुछ डायलॉग्स चलेंगे। तो एक लंबा एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे स्वीडन के साथ हमने पहले जो है वो एक इंडिया स्वीडन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर बनाया था, तो उसको और भी उसके अंदर बल दिया जाएगा। उसके अंदर कल जो है एक नया ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप भी वहां पे लॉन्च किया गया। तो ये है कि ये सब चीजें, नए चीजें लॉन्च की गई हैं, प्लस हमारी उनके साथ पहले से समझ बनी है, और उसमें ये भी कहा गया है कि आर्थिक तौर से भी हम दोनों आपस में मजबूती बनाएंगे, और क्योंकि स्वीडन यूरोपीय संघ का हिस्सा है और हमारा उनके साथ एफटीए हो रहा है तो उसका फायदा भारत और स्वीडन दोनों को होगा।
1: स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और स्वीडन के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी की साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और स्वीडन के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर क्या कहा।
2: भारत और स्वीडन के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की मजबूत नींव पर आधारित है। हम दोनों इनोवेशन को विकास का माध्यम मानते हैं, सस्टेनेबिलिटी को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और डेमोक्रेसी को अपनी ताकत मानते हैं। आज की बैठक में हमने इन समानताओं के आधार पर आगे बढ़ने पर चर्चा की। हर क्षेत्र में हमारे बढ़ते सहयोग को देखते हुए हमने हमारे संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हम ग्रीन ट्रांजिशन, रक्षा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तथा पीपल टू पीपल टाइज जैसे मुख्य स्तंभों पर आगे बढ़ेंगे।

0: देवा, प्रधानमंत्री की 5 देशों की ये यात्रा और खास करके नॉर्डिक देशों की यात्रा की बात अगर हम कहें तो आप इसे कैसे देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण है ये?
1: यूरोपीय देश आप जानते हैं कि पूरा उनका अपना एक समूह है 27 देशों का। उसके अलावा और दूसरे यूरोप के देश हैं जो दूसरे तरीके से इस यूरोपीय संघ के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम एक तरीके से पहले तो हमने यूरोपीय संघ के साथ अपने आप को मजबूत किया और उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया है। उसके बाद जो स्ट्रेटेजिक तरीके से जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, हमारे द्विपक्षीय संबंध है, तो उसको अलग अलग देशों के साथ उसको हम पहले से और एलिवेट कर रहे हैं। तीसरे तरीके से एक जैसे कोई ग्रुप है, समूह है, जैसे नॉर्डिक का अपना समूह है और के तौर पे हमने नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कंक्लेव भी करते हैं जिसमें नॉर्डिक और बाल्टिक के जो 3 देश हैं उनके साथ भी बातचीत करते हैं। इस तरीके से जो पूर्वी यूरोप के देश हैं उनके साथ अलग से भी, तो अलग अलग तरीके से कैसे सबके साथ कनेक्ट करें, जहां पे जिसकी जो कॉम्पिटेंसी जहां पे हम कर सकते हैं
0: जी।
1: तो यूरोप को इस तरह से समझते हुए हम अलग तरीके से, जैसे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है वो आपको यूरोपीय संघ के साथ करना पड़ेगा, अगर माइग्रेशन एंड मोबिलिटी की बात है वो आपको बायलैटरली उसकी ट्रीटीज करनी पड़ेगी। भारत एक अच्छा साझेदार आने वाले सालों में हो सकता है।
0: प्रोफेसर देवा, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी शुक्रिया।
0: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संकेत। पहला गीत विष्णु देवा फिल्म से मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाजें, अनजान का गीत और राजेश रोशन का संगीत।

सनम बेवफा, लीजिए सुनिए इस फिल्म से विपिन सचदेवा को। गीत सावन कुमार का है और संगीत महेश किशोर का।

अगला गीत पोलिस पब्लिक फिल्म से आवाजें, राम लक्ष्मण का गीत और अशर भोपादी का लिखा हुआ और संगीत राम लक्ष्मण का।

पति पत्नी और तवायफ। लीजिए सुनिए इस फिल्म से सलमा आगा और मोहम्मद अजीज को, आनंद बख्शी का गीत और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का।

कार्यक्रम का अंतिम नगमा घायल फिल्म से, आवाज आशा भोसले और शब्बीर कुमार सानू की, इंदिवर का गीत और पप्पी लहरी का संगीत।

श्रोताओं, एक सूचना। न्यायालय पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल मध्य प्रदेश से भोपाल नगरी क्षेत्र के विभिन्न समुदाय संगठन राजनीतिक दलों समिति प्रतिनिधिमंडल एवं आयोजकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर त्योहारों पर एवं सामाजिक कार्यक्रमों हेतु किए जाने वाले धरना प्रदर्शन आंदोलन जुलूस रैली आम सभा पुतला दहन पदयात्रा रथ यात्रा कार्यालय निवास व शासकीय भवन का घेराव ज्ञापन आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। ऐसे कार्यक्रम सार्वजनिक स्थानों पर किए जाते हैं जिनमें पुलिस एवं यातायात की समुचित व्यवस्था होना अनिवार्य हो जाता है ताकि आम नागरिकों के सामान्य जनजीवन पर कोई असर न हो। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की हिंसक गतिविधि या सार्वजनिक संपत्ति को क्षति न पहुंचाई जा सके, इसलिए आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की पूर्व सूचना पुलिस विभाग को होना आवश्यक है ताकि उसके सुव्यवस्थित संपादन के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। पुलिस आयुक्त संजय कुमार का कहना है, नगरीय पुलिस भोपाल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 163 धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता है। समस्त प्रकार के आयोजन जैसे धरना प्रदर्शन आंदोलन जुलूस रैली आम सभा पुतला दहन पदयात्रा रथ यात्रा वाहन रैली ज्ञापन कार्यालय निवास व शासकीय भवन का घेराव आदि के लिए आयोजन के पूर्व पुलिस से अनुमति लेना आवश्यक है। बिना अनुमति करने पर उन आयोजकों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। भोपाल शहर की सीमा के

संदर्भ किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा जिससे शांति भंग हो। भोपाल शहर की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित प्रकाशन नहीं करेगा जिससे सांप्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्यता उत्पन्न हो। सभी प्रकार के धरना प्रदर्शन, किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र, विस्फोटक सामग्री का उपयोग व रख रखाव किया जाना प्रतिबंधित है। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होगी।

0: सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनास गोरस्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी

0: जी में विश्वास रखते हैं, हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
1: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्व भर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन के उनके यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे।
2: पांच देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, एआई साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया

0: संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
1: कमर्शियल LPG की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 PNG कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने PNG कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
0: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में CBI ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोलस्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agreed to elevate bilateral ties in green strategic partnership focusing on clean energy and blue economy. Prime Minister Modi awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by King Harald V. Government targets $1 trillion exports this year. Union Minister Jitendra Singh holds talks with US industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. West Bengal government sets up 2 inquiry commissions to probe corruption and atrocities against women. And amid extreme heat conditions, Ministry of Ayush issues advisory to prevent heat-related illnesses. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi's first ever visit to Norway has seen a substantial outcome, with both the countries declaring the upgradation of India-Norway relation to green strategic partnership. In a joint statement today, after delegation-level talks with counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo, Prime Minister Modi highlighted that this partnership will ensure increased collaboration in sectors ranging from clean energy to climate resilience, blue economy to green shipping.
4: आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
3: Prime Minister Modi said, the India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement serves as a blueprint for shared progress and prosperity.
4: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
3: The Prime Minister hoped that using the scale, speed and talent of India, in collaboration with the technology and the capital of Norway, Indian companies would develop global solutions. Norway will also be joining the Indo-Pacific initiative. Both the leaders reiterated their common belief in rules-based world order and commitment to dialogue and diplomacy. Prime Minister Modi thanked Norway for standing firmly with India against terrorism during that difficult period and described it as a reflection of true friendship.
4: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
3: Multiple MOUs were signed in this bilateral meeting in the sectors of high-tech health solutions, digital health and digital public infrastructure. An MOU between India's ISRO and Norway Space Agency will ensure deepening of ties in the space sector. A triangular cooperation agreement was also signed today. In this, India and Norway will jointly provide human development solutions to the countries of Global South using India's digital public infrastructure. In a gesture towards closer relations, Prime Minister Modi was awarded the Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by His Majesty King Harald V of Norway. Meanwhile, the Norway-India Business and Research Summit began a short while ago in Oslo. The summit has brought together representatives from government, industry, academia and research institutions of both countries. Mr. Modi reached Norway this afternoon after concluding his visit to Sweden. He said in a social media post that his visit to Sweden was marked by several important outcomes that will add new momentum to bilateral relations. He said the discussions were highly productive, from elevating bilateral ties to a strategic partnership.

0: severe heat wave conditions over Madhya Pradesh and Uttar Pradesh for tomorrow. Heat wave conditions are also expected over Haryana, Chandigarh, Marathwada, Punjab, Rajasthan, Telangana and Vidarbh during the next 2 days. Meanwhile, warm night conditions have been predicted for Rajasthan, Vidarbh and West Uttar Pradesh tomorrow. A gradual rise in maximum temperatures by 2 to 3 degrees Celsius is expected over many parts of Northwest India. The Ministry of Ayush today issued a comprehensive public health advisory on extreme heat and heat wave for the current summer season. The advisory emphasizes adequate hydration, avoid direct exposure to sunlight during peak hours, use of light cotton clothing, and consumption of seasonal fruits and fluids rich in electrolytes. And in IPL cricket, Chennai Super Kings were 159 for 5 in 18 overs against Sunrisers Hyderabad in Chennai when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agree to elevate bilateral ties to green strategic partnership focusing on clean energy and blue economy. Prime Minister Modi awarded Grand Cross of Royal Norwegian Order of Merit by King Harald V. Government targets $1 trillion exports this year. Union Minister Jitendra Singh holds talks with US industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. And amid extreme heat conditions, Ministry of Ayush issues advisory to prevent heat-related illnesses. That is all in the news at 9. Good night.
1: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में नॉर्वे के अपने हमनसब जॉन्स घार स्टोर के साथ मुज़ाकरात किए। उन्होंने बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाकर साफ तवानाई और नीलगू मईशत पर तवज्जो करते हुए ग्रीन कलीदी शराकत दारी तक पहुंचाने से इत्तफाक किया। वजीर आजम मोदी को किंग हैराल्ड द फिफ्थ ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा। हुकूमत ने इस बरस $1 खरब बरामदात का निशाना रखा है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने भारत में न्यूक्लियाई तवानाई और प्राइवेट सरमायाकारी के मौके पर अमेरिका के एक सनती वफद से मुज़ाकरात किए। मगरबी बंगाल की हुकूमत ने बदउनवानी और ख्वातीन के खिलाफ ज्यादतियों की छानबीन के लिए 2 इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिए हैं और गर्मी की इंतहाई शिद्दत के दौरान आयुष की वजारत ने गर्मी से मुतालिक बीमारियों की रोकथाम की गरज से एडवाइजरी जारी की है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नॉर्वे के अव्वलीन दौरे के नुमाया नताइज सामने आए हैं, जिसमें दोनों मुल्कों ने भारत नॉर्वे ताल्लुकात को मजीद बढ़ाकर सब्ज जामे शराकत दारी की हैसियत देने से इत्तफाक किया है। ओस्लो में अपने हम मनसब जॉन्स घार स्टोर के साथ वफद की सतह की बातचीत के बाद आज एक मुश्तरका बयान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उजागर किया कि दोनों लीडरों ने भारत नॉर्वे ताल्लुकात को बेहतर करके उसे सब्ज जामे शराकत दारी की हैसियत देने से इत्तफाक किया है, जो कि साफ तवानाई, नीलगू मईशत, ग्रीन काया पलट के शोबों में तआवुन को बेहतर बनाने में एक अहम संग मील है।
2: आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनी ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों लीडरों ने भारत EFTA तिजारती और इक्तसादी शराकत दारी के मुआहदे से हासिल होने वाले वसी मौके को भी वाजह किया है। इसमें शराकत दारी को हाईटेक AI स्टार्टअप्स के शोबों में मुस्तकबिल के लिए तैयार बनाने की गरज से तवानाई पर खसूसी तवज्जो मरकूज की गई है।
2: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: इस बाहमी मीटिंग में सेहत से मुताल्लिक हाईटेक हल, डिजिटल सेहत, डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे के शोबों में बहुत से मुफाहिमत नामों पर दस्तखत किए गए। भारत के इसरो और नॉर्वे की खलाई एजेंसी के दरमियान एक मुफाहिमत नामा दिफाई शोबे में ताल्लुकात बेहतर बनाने को यकीनी बनाएगा। तआवुन के एक सहरुखी समझौते पर भी आज दस्तखत किए गए। इसमें भारत और नॉर्वे भारत के डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे को इस्तेमाल करते हुए आलम जुनूब के ममालिक को इंसानी तरक्की के हल मुश्तरक तौर पर फराहम करेंगे। नॉर्वे के वजीर आजम ने एक अहम बयान में टेक्नोलॉजी के शोबे में भारत की क्यादत को तस्लीम किया है। दोनों लीडरों ने जाब्तों पर मबनी आलमी निज़ाम में अपने मुश्तरक एतकाद और मुज़ाकरात और सिफारतकारी के अपने अहद का इरादा किया। करीबी ताल्लुकात के तई जज्बा खैर सगारी के तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के इज्जत माब शाह हराल्ड दी फिफ्थ के जरिए रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रांड क्रॉस अवार्ड दिया गया। जनाब नरेंद्र मोदी स्वीडन का अपना दौरा पूरा करने के बाद आज सुबह नॉर्वे पहुंचे थे। वजीर आजम ने सोशल मीडिया की एक पोस्ट में कहा कि बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाकर एक जामे शराकत दारी में तब्दील करना, मुश्तरक इख्तराई शराकत दारी 2.0 की शुरुआत करना और भारत स्वीडन टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत के कॉरिडोर का आगाज करने समेत ये मुजाकरात इंतहाई बारावर रहे। बातचीत में बाहमी तजारत को आइंदा 5 साल में दुगना करने का हदफ भी मुकर्रर किया गया। 5 मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी इटली की अपनी हमनसब मोहतरमा जॉर्जिया मेलोनी की दावत पर कल इटली के 2 रोजा दौरे पर रोम पहुंचेंगे। वजीर आजम मोदी वजीर आजम मेलोनी के साथ बाहमी बातचीत करेंगे। वो इटली के सदर सर्गियो मेटरेला से भी मुलाकात करेंगे। जनाब मोदी दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत और सरमायाकारी को मजीद फरोग देने की गरज से कारोबारी लीडरों से भी बातचीत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस महीने की 19 से 20 तारीख को इटली के दौरे पर होंगे। उनका ये दौरा 5 मुल्कों के दौरे का आखिरी मरहला है, जिसका मकसद मुख्तलिफ शोबों में भारत की जामे शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करना है। वजीर आजम की इटली की वजीर आजम के साथ वफूद की सतह की बातचीत करेंगे, जिसमें समंदरी सिक्योरिटी और मुस्तहकम कनेक्टिविटी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इटली भारत को न सिर्फ यूरोप बल्कि बहिरे रूम के मुकम्मल खित्ते तक भी रसाई फराहम करता है। ये अम्र सप्लाई चेन और दिफाई शराकत दारी के तनाजुर में अहमियत का हामिल है। उनका 5 मुल्कों का यह दौरा सिफारतकारी से कहीं ज्यादा हैसियत रखता है। ये भारत के मुस्तकबिल के तवानाई रूट्स, मसनूई जहानत की शराकत दारी, सेमी कंडक्टर की रसाई, दिफाई साजो सामान की तैयारी और आलमी मफादात को बेहतर बनाने से ताल्लुक रखता है। रोम से सुपर्णा भाटिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
1: कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस बरस 1 खरब डॉलर और अगले 5 बरस में 2 खरब डॉलर की मालियत के बरामदात का निशाना तय किया है। उन्होंने वाजे किया कि ये आत्मनिर्भर भारत का हकीकी हॉलमार्क होगा। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव के वेबसाइट के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि इस बरस आलमी चैलेंजों के बावजूद बरामदात 863 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 5% ज्यादा है। जनाब गोयल ने जोर देकर कहा कि आगे पेशरफ्त के लिए इस जोश व खरोश में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए और हर एक को बिला तकान काम जारी रखना चाहिए।
4: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: अमेरिका के आला सतह के एक सनती वफद ने नई दिल्ली में आज साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ तबादला ख्याल किया। भारत की न्यूक्लियाई सेक्टर में प्राइवेट सरमायाकारी और सनती शराकतदारी के लिए उभरते हुए मौके पर गौर खौज किया गया। इस वफद में अमरीकी न्यूक्लियाई सनत के सीनियर नुमाइंदे, कारोबार से वाबस्ता तरफैन और सिविल न्यूक्लियाई तवानाई और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी

0: टेक्नोलॉजियों के शोबे में भारत अमेरिका तआवुन के साथ वाबस्ता अहलकार शामिल हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका फिलवक्त साइंस, टेक्नोलॉजी, साफ तवानाई और उभरते हुए शोबों में एक मजबूत और मुस्तकबिल की जानिब गामजन शराकतदारी के सिलसिले में एक दूसरे से वाबस्ता हैं। विकसित भारत 2047 के विजन के तहत भारत के तवील मुद्दती साफ तवानाई के अहदाफ का हवाला देते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत 2047 तक न्यूक्लियाई बिजली की अपनी सलाहियत को मौजूदा 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करने का इरादा रखता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह वियतनाम और जनूबी कोरिया के दो मुल्कों के दौरे पर आज सुपहर वियतनाम के शहर हनोई पहुंच गए हैं। वियतनाम में वजीर दिफा अपने हम मनसब जनरल फॉन वॉन ग्यांग के साथ बाहमी मुजाकरात करेंगे। जनाब सिंह का यह दौरा वियतनाम के साबिक सदर हू ची मिन के कल 136वें यौम पैदाइश के मौके पर हो रहा है। ये आकाशवाणी है। मगरबी बंगाल सरकार ने मुबैना इदारा जाति बदउनवानी और ख्वातीन के खिलाफ जुल्म ज्यादती की तहकीकात करने की गरज से दो तहकीकाती कमीशन तश्कील दिए हैं। ये कमीशन भारतीय जनता पार्टी के जरिए किए गए इंतखाबी वादों के मुताबिक बनाए गए हैं। वजीर आला सुविंदो अधिकारी ने काबीना की मंजूरी के बाद आज इस फैसले का ऐलान किया। इदारा जाति बदउनवानी की तफ्तीश करने वाले कमीशन की सरबराही कलकत्ता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज बिश्वजीत बसु करेंगे। दूसरा कमीशन ममता बनर्जी की क्यादत वाली साबिका सरकार के दौरान ख्वातीन के खिलाफ जुल्म ज्यादती की तहकीकात करेगा। इसकी सरबराही कलकत्ता हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज संपत्ति चैटर्जी करेंगी। मीडिया से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि दोनों कमीशन अगले महीने की पहली तारीख से काम करना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि तहकीकात में बदउनवानी के माजी के मामलात और ख्वातीन के खिलाफ जराइम का अहाता किया जाएगा और अवाम में से लोग इन कमीशनों के सामने अपनी शहादतें पेश कर सकेंगे। बदउनवानी की इंक्वायरी में तमाम सरकारी महकमों का मुआयना किया जाएगा जिनमें पंचायतें और जिला परिषद शामिल हैं। आयुष की वजारत ने इस साल गर्मी के मौसम के लिए इंतहाई शदीद गर्मी और गर्म लहर के सिलसिले में अवामी सेहत से मुतालिक एक जामे एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में जोर देकर कहा गया है कि जिस्म में पानी की कमी न होने दें, इंतहाई धूप के औकात में धूप में बराह रास्त आने से गुरेज करें, हल्के सूती कपड़े इस्तेमाल करें और मौसमी फल भरपूर मकदार में लें और ऐसे मशरूबात वगैरह लें जिनमें ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता हो। इसमें शहरियों को खबरदार किया गया है कि वो गर्मी से मुतालिक बीमारियों जैसे चक्कर आना, सर में दर्द होना, जी मतलाना, जहनी थकावट महसूस करना, बुखार होना, पानी की कमी, अचानक बीमार महसूस करना और बेहोशी की सूरत हाल का सामना करने से मुहतात रहें। एडवाइजरी में सिफारिश की गई है कि खराब सूरत हाल में इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 108 या 102 पर कॉल करें। भारतीय महकमा मौसमियात ने कल के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में शदीद से शदीद तरीन गर्म लू की सूरत हाल रहने के बारे में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी अगले दो दिनों के दौरान गर्म लहर की सूरत हाल जारी रहने का इम्कान है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के अपने दौरे के दौरान बस्तर जिले में नितनार गांव में अवामी खिदमात के एक मरकज का इफ्तिताह किया। इस मरकज का नाम कबायली लीडर और शहीद मुजाहिद आजादी वीर गुंडाधुर के नाम पर रखा गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि अगले 1.5 बरस में बस्तर में कायम तकरीबन 200 सिक्योरिटी कैंपों में से 70 को इसी तरह के खिदमात से मुतालिक मरकज बना दिया जाएगा। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने आलमी सेहत तंजीम के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एधनॉम घेब्रेयेसस से स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में मुनक्किदा 79वीं आलमी सेहत असेंबली से अलग मुलाकात की। जनाब नड्डा ने आलमी सेहत इक्विटी की पेशरफ के तहत भारत के अज़्म को दोहराया और कुछ अहम स्कीमों को उजागर किया जैसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, रिवायती अदवियात, मसनूई जहानत से चलने वाले अवामी सेहत की इख्तिराआत और टीबी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए की जाने वाली पायदार कोशिशें। डॉक्टर टेड्रोस ने सेहत के शोबे में भारत की इस्लाहात और आलमी सेहत शराकतदारी में उसकी क्यादत की तहसीन की और मुश्तरका तरजीहात के ताल्लुक से आलमी सेहत तंजीम के साथ शराकतदारी को मजीद मजबूत करने के अज़्म का इजहार किया। حکومت نے کہا ہے کہ ملک کی ریفائنریز میں معمول کے مطابق کام ہو رہا ہے اور مغربی ایشیا کے جاری بحران کے باوجود بھارت میں خاطر خواہ خام تیل موجود ہے۔ نئی دلی میں آج بین وزارتی بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ پیٹرول، ڈیزل، ایل پی جی اور قدرتی گیس کا خاطر خواہ ذخیرہ موجود ہے، اس کے باوجود افواہوں کی وجہ سے کچھ علاقوں سے ایل پی جی کی گھبراہٹ میں خریداری کی خبریں مل رہی ہیں۔ کیمیکل اور کیمیاوی کھادوں کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری اپرنا شرما نے بتایا کہ ملک بھر میں 200 لاکھ میٹرک ٹن فرٹیلائزر دستیاب ہے اور خریف کی فصل کے لیے کیمیاوی کھادوں کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ مہاراشٹر کے پالگھر ضلع میں واقع دھنی وری میں ایک بارات کو لے جا رہے ٹرک اور ایک کنٹینر کے درمیان ٹکر سے ہوئے سڑک حادثے میں 13 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 20 دیگر زخمی ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد میں بڑھوتری کا اندیشہ ہے۔ اور آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اوسلو میں ناروے کے اپنے ہم منصب جونس گھار اسٹور کے ساتھ مذاکرات کیے۔ انہوں نے باہمی تعلقات کو بڑھا کر صاف توانائی اور نیلگو معیشت پر توجہ کرتے ہوئے گرین کلیدی شراکت داری تک پہنچانے سے اتفاق کیا۔ وزیر اعظم مودی کو کنگ ہرالڈ دی ففتھ نے گرینڈ کراس آف دی رائل نارویجن آرڈر آف میرٹ سے نوازا۔ حکومت نے اس برس $1 خرب برآمدات کا نشانہ رکھا ہے۔ مرکزی وزیر جیتیندر سنگھ نے بھارت میں نیوکلیائی توانائی اور پرائیویٹ سرمایہ کاری کے مواقع پر امریکہ کے ایک صنعتی وفد سے مذاکرات کیے۔ مغربی بنگال کی حکومت نے بدعنوانی اور خواتین کے خلاف زیادتیوں کی چھان بین کے لیے 2 انکوائری کمیشن تشکیل دیے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: سماچار سیوا پربھاگ سے پرستت ہے ہمارا ساپتاہک کاریکرم پبلک سپیک۔

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इन दिनों अगर आपके घर में जनगणना कर्मी आकर आपके मकान के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका सहयोग करें और पूरी जानकारी उन तक पहुंचाएं, क्योंकि देशव्यापी जनगणना 2027 के पहले चरण का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जा रही है। इस बार जनगणना कार्यों में पहली बार शुरू की गई है स्वगणना सुविधा, जिसे जनता से काफी उत्साहजनक रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। काफी राज्यों में स्वगणना का जो विकल्प है वो समाप्त हो चुका है और कुछ राज्य अभी बचे हैं। ये पहल जनगणना कार्यों के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इसे कैसे भरना होगा, किस तरह के सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो तुरंत हमें कॉल कीजिए, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम मकान सूचीकरण और आवास गणना पर परिचर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज, और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमने आमंत्रित किया है गृह मंत्रालय की महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप महापंजीयक रुशाली वराड़े जी को। नमस्कार रुशाली जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार और धन्यवाद।
0: श्रोताओं, हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं, आप हमारे विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112317181, 0112317181, 0112317161 और 0112314444 पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9289094044 पर आप सवाल भेजते रहिए। सोशल मीडिया एक्स पर #AskAIR का इस्तेमाल करके भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और रुशाली जी, सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे ही है कि पहले चरण का काम तेजी से शुरू हो गया है, मकान सूचीकरण और मकानों की गणना किस तरह की जा रही है इसमें, और किस तरह के सवाल इसमें जनता के लिए चुने गए हैं?
1: जी, जैसे अभी आपने कहा कि इस बार पहली बार हम स्वगणना की उपलब्ध फैसिलिटी उपलब्ध है पब्लिक के लिए, तो काफ़ी राज्यों में स्वगणना का पीरियड खत्म हो चुका है, जो कि हमने 15 दिन के लिए रखा था, और एक महीने का समय है जो कि प्रगणक घर घर जाके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तो कुछ 7 या 8 स्टेट में हमारी स्वगणना कंप्लीट हो चुकी है और HLO का काम भी कंप्लीट हो चुका है। कुछ राज्यों में स्वगणना अभी चल रही है। तो क्वेश्चन के बारे में अगर हम कहें तो जैसे नाम है इस फेज का मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, तो इसमें हम सिर्फ मकानों की गणना करेंगे और मकान की हालत कैसी है, घर कैसा है और घर में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे पीने का पानी कहाँ से आता है, पीने का पानी कैसे है, टॉयलेट की सुविधा है या नहीं, बाथरूम की सुविधा है या नहीं, घर में कितने लोग रहते हैं, कितने कपल्स रहते हैं, रूम्स कितने हैं घर पे, और घर में एसेट्स क्या है, जैसे जैसे कि रेडियो है या नहीं, टेलीविजन है या नहीं, 2-व्हीलर 4-व्हीलर है या नहीं, तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे।
0: जी रुशाली जी, और सबसे पहले हमारे लिसनर हमसे जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। जी धर्मवीर जी।
2: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार।
2: हाँ, एक्सपर्ट को भी नमस्कार। मैं धर्मवीर गाने का दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे सवाल में मैं ये पूछना चाहूंगा कि घर घर जाके आप इसके लिए इंक्वायरी करेंगे, जानकारी लेंगे, और कुछ घरों में जाने का मतलब ये है कि घरों में महिलाओं का होना, क्या जो आपके जाएंगे वर्कर तो उसमें एक महिला भी होगी साथ, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, जो अगर कोई दिव्यांग है, दिव्यांग का मतलब ये है कि वो अगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो कैसे अपने, जो पहले आपने कहा था कि इसमें खुद भी ये दर्ज कर सकता है, और इसके लिए हमें क्या क्या, अब मैं अगर कोई फ्रॉड आ जाता है इंक्वायरी करने के लिए तो ऐसे में हम क्या पहचान करें कि ये आदमी फ्रॉड है कि ये सरकार के भेजा गया ये आपका वर्कर है? धन्यवाद।
0: धर्मवीर जी ने 3 सवाल पूछे हैं रुशाली जी। सबसे पहला सवाल उनका ये है कि अगर महिलाएं घर में मौजूद हैं तो क्या कोई महिला कर्मी भी जनगणना कर्मी के साथ मौजूद रहेंगी?
1: तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, महिला अलग से तो नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो प्रगणक होंगे वो जनरली होते हैं जो स्कूल के टीचर्स होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। हम लोग इंस्ट्रक्शन जरूर देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इसमें अपॉइंट करें, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन एक फेथफुली अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट ये कंपलसरी नहीं है और हर घर में एक ही आदमी जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें पूरे इंडिया के लिए 31 लाख प्रगुणकों की जरूरत है। तो इतने सारे लोगों के साथ मतलब और एक महिला जाना इट्स मतलब संभव नहीं है। लेकिन जो तीसरा सवाल है मैं इसी के साथ जोड़ देती हूँ, जो फ्रॉड वाली बात इन्होंने पूछी है धर्मवीर जी ने, तो फ्रॉड की कोई ये नहीं है, क्योंकि प्रगणक के पास अपना आई कार्ड होगा, उसके पास चार्ज ऑफिसर का सिग्नेचर होगा, उस पर स्टैम्प होगा, प्लस क्यूआर कोड होगा आई कार्ड पे, और अपॉइंटमेंट लेटर पे भी क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड स्कैन होने के बाद हमारी वेबसाइट उस पर आ जाएगी और वेबसाइट पे उसकी डिटेल्स आपको दिख जाएंगे, तो फ्रॉड की बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हालांकि हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप अपने चार्ज ऑफिसर को या लोकल ऑफिसर से बात कर सकते हैं।
0: और दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि दिव्यांग व्यक्ति फॉर्म कैसे भर सकते हैं।
1: जी, तो दिव्यांग व्यक्ति के लिए जैसे पहले ही बताया मैंने, स्वगणना एक अतिरिक्त फैसिलिटी हम दे रहे हैं, ये कंपलसरी नहीं है। प्रगणक हर घर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, अगर आपने स्वगणना की है तो भी प्रगणक घर घर जाके फिर से वो वेरीफाई करेगा। तो अगर दिव्यांग कोई है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, प्रगणक वहां पे जरूर जाएगा और इन्फॉर्मेशन लेके आएगा।
0: और अब हमारे दूसरे लिसनर हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र जी। जी राजेंद्र जी
3: नमस्कार। जी जागृति जी को और विशेषज्ञ जी को नमस्कार।
0: नमस्कार, मैं फरहत नाज बात कर रही हूँ राजेंद्र जी,
3: सॉरी जी,
0: लेकिन मैं आपका नमस्कार जागृति जी को भी पहुँचा दूंगी।
3: जी जी, और मैं ये जानना चाहता है अगर कोई गलत जानकारी देता है या तो कोई उस पे कोई कार्रवाई होगी, या जैसे कोई नोटिस दिया जाएगा जनगणना के बारे में, मकान के बारे में, उस पे क्या कार्रवाई हो सकती है? और जो 33 सवाल पूछे जाते हैं उसमें कुछ ही मेरे से कुछ दो तीन ही सवाल पूछे गए थे, और मुझसे ये पूछा गया था कि आप टीवी देखते हो, तो मैंने उनसे मेरे को ये पूछ लिया था कि आप रेडियो सुनते हो, तो मैंने कहा रेडियो मैं पहला ऐसा शख्स कह रहे मिला है इसके बारे में भी।
0: तो इनका सवाल था कि रेडियो सुनते हैं कि नहीं, इस तरह के जो सवाल हैं वो पूछे गए।
1: जी जी, एक तो पहला मुझे लगता है इनका सवाल था गलत जानकारी के बारे में, तो पहले मैं बता दूं कि गलत जानकारी अगर कोई देता तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है कि उसे कोई पनिशमेंट मिलती है, बट उससे ऊपर जो इम्पोर्टेंट बात है कि सेंसस की इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, सेंसस एक्ट में ये मेंशन है कि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन गोपनीय रखी जाएगी। तो जनरली लोग सही जानकारी देते हैं, और सेंसस एक्ट में ये भी प्रोविजन है कि लोग अपने बिलीफ से अपने नॉलेज से सही जानकारी दे। जो डेटा रिलीज होता है वो एक एग्रीगेट लेवल पे रिलीज होता है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होने की कोई भी संभावना नहीं है।

0: तीसरा जो है जो हमारे 33 सवाल है वो नोटिफाई हो चुके हैं, गवर्नमेंट के गैजेट में नोटिफाई हो चुके हैं, तो उसमें जो भी सवाल है वो सारे उतने ही एन्यूमरेटर को पूछने हैं और उनका ही जवाब रिस्पोंडेंट को देना है। ये बिल्कुल सही कहा कि टीवी का सवाल उसमें है, रेडियो का सवाल उसमें है, रेडियो आप किस पे सुनते हैं ये भी उसमें पूछा गया है कि आप मोबाइल पे सुनते हैं या आपके पास रेडियो सेट है या फिर आप कार में सुनते हो। उसी तरह टीवी का भी अलग अलग आप कैसे देखते हो, मतलब दूरदर्शन है आपके पास, फ्री डिश या डीटीएच है या फायर स्टिक है, केबल कनेक्शन है, तो अलग अलग सवाल उसमें है।
1: और अगर किसी भी तरह की हमारे श्रोता दिक्कत उठा रहे हैं तो आप मकान सूचीकरण और मकान गणना अनुसूची के लिए वेबसाइट जो पोर्टल दिया हुआ है se.census.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं और आप सारे सवाल जो है वो इसमें आपको शो हो जाएंगे किस तरीके के सवाल जो है जनगणना कर्मी पूछ रहे हैं, ताकि आपको आसानी होगी उस समय आपका सवालों का जवाब देने में। और रोशाली जी, एक और प्रश्न हमारे पास आया है कि क्या जनगणना में सभी के लिए शामिल होना आवश्यक है?
0: बिल्कुल, जैसे जनगणना का पहला ही जो मोटो है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं या किसी को दोबारा गिनती करेंगे नहीं, तो हर एक को इंक्लूड होना है जनगणना में। और जो बार बार मैं जिक्र कर रही हूँ जनगणना अधिनियम की, सेंसस एक्ट 1948, उसके हिसाब से हर एक व्यक्ति को या हर एक परिवार के मुखिया को यह कंपलसरी है कि सही सही जानकारी प्रगणक को दे। और ये प्रगणक की भी जिम्मेदारी है कि जितने सवाल गैजेट में पब्लिश हुए हैं उतने ही सवाल पूछे, उसके बिना और कोई भी सवाल ना पूछे, और जो भी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा है वो उसको गोपनीय रखे।
1: जी अच्छा, अगर कोई व्यक्ति दूसरे मतलब जॉब की वजह से यहाँ पर रह रहा है, दिल्ली शहर में रह रहा है, लेकिन वो बिलोंग करता है किसी दूसरे राज्य से, तो वो क्या दोनों जगह का जो है उसके लिए भरना जरूरी होगा सेल्फ एनुमरेशन?
0: बिल्कुल नहीं, जैसे मैंने कहा सबको जैसे हम इंक्लूड करते हैं तो डुप्लीकेट भी नहीं करते हैं। तो जहाँ पे जनगणना की ये कंसेप्ट है, जो जहाँ पे नॉर्मली रिसाइड करता है यानी जहाँ पे मैक्सिमम टाइम रहता है, अगर काम के सिलसिले में वो दिल्ली में रहता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दिल्ली में कलेक्ट होगी, उसके अदर फैमिली मेंबर्स अगर गांव में रहते हैं तो अदर फैमिली मेंबर्स की गिनती गांव में होगी, लेकिन जो जहां पे रहता है वहीं पे उसका काउंटिंग होता है।
1: जी, और अब दिल्ली से ब्रह्मदत्त जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ब्रह्मदत्त जी।
2: नमस्कार मैडम जी।
1: नमस्कार।
2: हमारे विषय विशेषज्ञ जी को प्रणाम।
0: नमस्ते। प्रणाम।
2: ना, मेरे दो जिज्ञासाएं हैं। पहली है कि जो हमारे दस्तावेज हैं दूसरे शहर के बने हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के, और हम दिल्ली में निवास कर रहे हैं, तो क्या हम दिल्ली की जनगणना में सम्मिलित हो सकते हैं? प्रथम प्रश्न। दूसरी है मैडम ये है कि अगर हम घर पर नहीं मिलते हैं तो क्या जनगणना स्टाफ को हम अपने समय के हिसाब से बुला सकते हैं? भाई छुट्टी वाले दिन आ जाना आप, तो क्या ऐसा संभव है? एक अन्य प्रश्न है, जो लोग जनगणना में शामिल नहीं होना चाहते क्या उन लोगों के लिए कोई दंडात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान है? धन्यवाद मैडम जी।
0: धन्यवाद ब्रह्मदत्त जी। तो तीनों सवाल आपके बड़े ही अच्छे थे। पहला तो ये है कि जनगणना में कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, आप जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो प्रगणक को नोट डाउन करनी है। इसीलिए हालांकि हम लोग सबसे अपील करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन सही है वही इन्फॉर्मेशन दे दे, और आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गोपनीय रहेगी, किसी के साथ वो साझा नहीं की जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताती हूँ कि आरटीआई में भी हम इन्फॉर्मेशन देते नहीं हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कोई कोर्ट में अगर सबूत के तौर पर देने के लिए मांगता है तो उसको भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती एज पर सेंसस एक्ट। दूसरा जो सवाल था आपका, अगर आप घर पर नहीं मिलेंगे तो इसके लिए भी हमारे प्रगणक को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अगर घर लॉक मिलता है तो 2 या 3 बार वहां पे जाए, छुट्टी के दिन जाए या सुबह जल्दी जाए या शाम को देर से जाए, ताकि घर पे कोई ना कोई मिलेगा। तीसरा जो आपका सवाल था दंडात्मक कार्रवाई का, तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है सेक्शन 11 में कि अगर कोई गलत जानकारी देता है तो उसको पनिशमेंट दी जा सकती है।
1: तो यानी कि पूरा सहयोग आपको जनगणना कर्मी के साथ करना है और सही सही और सटीक जानकारी उन तक उपलब्ध करवानी है। और अब त्रिपुरा से अविनाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अविनाश जी।
3: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
3: जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश अली बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल है कि जब जनगणना टाइम पे सरकारी कर्मचारी हमारे घर पे आते हैं तो हम अपना जानकारी उनको प्रदान करेंगे, तो लेकिन हम उनको पहचानेंगे कैसे कि वो सही व्यक्ति आए हैं मेरे घर पे? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ठगी व्यक्ति भी आ सकते हैं हमारे डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो हम उनको पहचानेंगे कैसे?
0: जी धन्यवाद अविनाश जी। और उसको पहचानेंगे कैसे?

0: तो उनके पास आई कार्ड होगा और अपॉइंटमेंट लेटर होगा, जो कि लोकल चार्ज ऑफिसर, हमारे जो चार्ज ऑफिसर होते हैं वो तहसीलदार या मामलतदार होता है आपके एरिया का, या कोई बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये इनका स्टैम्प और सिग्नेचर के साथ प्रगणक के पास एक आई कार्ड होगा, अपॉइंटमेंट लेटर होगा, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके ऊपर क्यूआर कोड होगा, क्यूआर कोड स्कैन करके आप देख सकते हैं, उसमें आपको हमारी वेबसाइट से सारे डिटेल मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कोई फ्रॉड हो रहा है तो आप अपने चार्ज ऑफिसर से या एरिया के कोई भी ऑफिसर से उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं।
1: रुशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास आया है कि खाली मकान, बंद मकान या फिर निर्माणाधीन मकान की गिनती किस श्रेणी में होगी और इन्हें कैसे चिन्हित किया जाता है?
0: जी, तो हमारे जो मैंने कहा हर एक क्वेश्चन के अलग अलग कोड है, तो जो हमारा जनगणना मकान के कोड है उसमें कुछ कोड है वैकेंट के लिए, कुछ कोड है अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए, कोड तो नहीं है बट अगर अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग है उसका छत डाला हुआ है तो उसको हम मानते हैं, क्योंकि मेन जो हमारा है सेकंड फेज जो फरवरी 2027 में होगा, तो हो सकता है अभी जो घर आपका अंडर कंस्ट्रक्शन हो फरवरी 27 तक वहां पे कोई रहने के लिए आ जाए, तो ऐसे इसीलिए उसको हम गिनती अभी कर लेते हैं, उसको नंबर देते हैं और उसको इन्फॉर्मेशन एज अ वैकेंट कर देते हैं और एक रिमार्क डाल देते हैं कि इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, और जो खाली है उसको एक वैकेंट हम मानते ही है। कुछ ऐसे घर भी मिलते हैं कि घर लिया हुआ है लेकिन लॉक है, रहते कहीं और है, तो उसको भी लॉक के कैटेगरी में हम इंक्लूड करते हैं ताकि सेकंड फेज में वो छूटे नहीं।
1: जी, अच्छा, इसमें जनगणना मकान नंबर कौन देता है और दीवार पर लिखने का क्या नियम है?
0: ये प्रगणक देता है और नियम है कि एक प्रगणक को एक जो एरिया देते है, एनुमरेशन ब्लॉक हम जिसको कहते, छोटा सा एरिया होता है 700 से 800 पॉपुलेशन या 150 घरों का, तो वो पूरे अपने एरिया में सीरियली जनगणना मकान नंबर देता है, एक से लेकर जो भी लास्ट उसके एरिया में होगा तो वो खुद लिखता है। उसके लिए हमने कुछ स्टेशनरी उसको प्रोवाइड की है, मार्कर पेन्स वगैरह दिए।
1: ठीक है, और अब शिमला से हमारे साथ राकेश जी जुड़ गए हैं। जी राकेश जी।
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
2: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो घर में रहते तो उनकी तो होती है, जो किराए के मकान पे रहते हैं क्या वो भी जनगणना में आता है, उनको क्या जनगणना करानी पड़ती है जो किराए पे रहते हैं?
0: जी बिल्कुल, जैसे फिर से मैं कह रही हूँ कि जनगणना में किसी को छोड़ा नहीं जाता, किसी को दोबारा गिना नहीं जाता, तो अगर आप किराए के भी घर में रह रहे हैं तो जनगणना का पहला जो रूल है कि जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसकी गिनती होती है, तो आपका घर खुद का हो, किराए का हो या और किसी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जहाँ पे रह रहे वहीं पे आपकी गिनती होगी। आपका घर किराए का है या खुद का है ये जानने के लिए हमारा क्वेश्चन है कि घर आपका खुद का है या किराए का है। किराए का है तो उसके लिए भी आपका कोड है कि आपका घर किराए का है, लेकिन आपका खुद का घर कहीं और है तो उससे हमारे पास ये एक नंबर्स आ जाएंगे कि कितने मतलब पूरे कंट्री में या पूरे देश में कितने लोगों के पास खुद के घर है या कितने लोग किराए पे रह रहे हैं।
1: और अब रवि जी जुड़ गए हैं हमारे साथ हरिद्वार से। जी रवि जी।
3: हाँ जी नमस्कार मैम जी, मेरा ज्वालियागढ़ मीरपुर हरिद्वार से हूँ जी।
1: जी नमस्कार।
3: हाँ जी माँ जी, विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार जी।
0: नमस्ते
3: जी मैम, मैं जानना चाहता हूँ जी, जो जनगणना है हमें सहयोग करेंगे, अपनी जानकारी देंगे, वो कितनी गोपनीय रखी जाएगी मैम?
0: जी बिल्कुल, ये पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, और कितनी रखी जाएगी इसके लिए मैं एक ही जवाब दे सकती हूँ कि आप भी मांगेंगे बाद में तो आपको भी नहीं दी जाएगी, इतनी गोपनीय रखी जाएगी, क्योंकि पूरी जानकारी एज पर सेंसस एक्ट या सेंसस अधिनियम जो है उसके हिसाब से किसी को दी नहीं जाती, आरटीए में भी दी नहीं जाती, कोर्ट में भी दी नहीं जाती और इंडिविजुअल भी को भी दी नहीं जाती। एक बार फिल होने के बाद वो कॉन्फिडेंशियल रह जाती है और हम सिर्फ एग्रीगेट लेवल पे डेटा रिलीज करते हैं।
1: और अब एक और लिस्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, महेंद्र जी। जी महेंद्र जी।
4: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
4: मैम, मेरा सवाल ये है कि अगर पुत्र या पुत्र वधू अगर माता पिता के साथ जीवन यापन करते और उनका भोजन एक ही रसोई में तैयार होता है तो वो अलग परिवार माना जाएगा या उसी में जॉइंट किया जाएगा?
0: जी देखिए, जनगणना के लिए एक ही कंसेप्ट है, अगर एक परिवार मानने के लिए कि वो एक ही चूल्हे पे खाना पकाते हैं या नहीं, या एक ही किचन में खाना पकाते हैं या नहीं। तो इसमें कोई भी हो, अगर वो एक ही किचन से खाना खा रहे हो, खाना पका रहे हो, तो उसको एक ही परिवार माना जाएगा, चाहे वो अनरिलेटेड हो, उनका कोई आपस में रिलेशन भी ना हो। जैसे आजकल हम देखते हैं 3-4 दोस्त मिलके एक छोटा सा फ्लैट लेके रहते हैं और अपना अपना खाना बनाते हैं या मेड को रख के खाना बनाते हैं, तो ऐसे में भी उनको हम एक ही परिवार मानते हैं।
1: अच्छा, इसी से जुड़ा एक और प्रश्न मेरे पास आया था कि अगर मेरी बेटी की शादी हो गई और वो किराए पर रहती है, तो क्या वो अपने घर में उसको सदस्य के रूप में शामिल कर सकते हैं?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं, वो जहाँ पे रहती है वहाँ पे उसका उसको गिना जाएगा।
1: अच्छा, और अब गुरुग्राम से सुभाष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुभाष जी।
5: नमस्ते मैम।
1: जी नमस्कार।
5: आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय आपको नमस्कार।
0: जी नमस्ते।
5: मेरा सवाल ये है मैम कि जो स्वगणना का जो भूमिका है, जैसे व्यक्ति अगर स्वगणना की आपने जिक्र किया था अभी, तो उस स्वगणना में उसकी कैसी भूमिका को सत्यापन के रूप में जाना जाएगा, उसको मतलब कौन सा ऐसा प्रमुख बिंदु रहेगा जो उसके व्यक्ति के प्रमुख कार्यों को बताकर वह किस तरह से स्वीकारा जाए, उसका सत्यापन करने के क्या तरीके हैं, यही मैं पूछना चाहता था। धन्यवाद जी।
0: जी, तो जैसे मैंने कहा, स्वगणना इस बार पहली बार हम लोग ये फैसिलिटी दे रहे हैं। 2011 तक ये फैसिलिटी नहीं थी। ये इस बार इसलिए इंट्रोड्यूस की कि काफ़ी लिटरेसी भी बढ़ी है, प्लस आजकल बड़े बड़े शहरों में ये देखा जाता है कि घर के सारे सदस्य कहीं ना कहीं काम पे जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक वो बाहर आते हैं रहते हैं, तो प्रगणक को देने के लिए उतना टाइम उनके पास नहीं होता। लेकिन उसकी वो जो इन्फॉर्मेशन भरेगा वो सत्यापित करनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ हमारे कंसेप्ट्स है, जैसे पानी कहाँ से मिलता है या घर में टॉयलेट की फैसिलिटी क्या है, इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है कभी कभी रिस्पोंडेंट को खुद पता ना चले, क्योंकि प्रगणक को काफ़ी अच्छे से हम ट्रेन करते हैं। 3-4 दिन का उसका ट्रेनिंग होता है, उसको वीडियोज दिए जाते हैं, ट्रेनिंग मटेरियल दिया जाता है, तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन अगर कभी रिस्पोंडेंट या जो खुद भर रहा है स्वगणना की इन्फॉर्मेशन कुछ गलत अगर करे, तो वो प्रगणक एक बार देख के उसको बता के उसको सही करके सत्यापित कर सकता है।
1: अच्छा, एक और प्रश्न हमारे पास आया है रुशाली जी की। स्लम और जेजे क्लस्टर, बेघर आबादी की गिनती मकान जनगणना में कैसे सुनिश्चित की जाती है?
0: जी, स्लम के एरिया के लिए तो हम जैसे मैंने कहा, एक प्रगणक के लिए छोटा सा एक एरिया होता है, तो स्लम के हम अलग से एरिया बनाते हैं, उसको अलग से कोडिंग करते हैं ताकि हमारे पास स्लम का डेटा भी आ जाए, क्योंकि उनके घर होते हैं, कच्चे हो चाहे पक्के हो, घर होते हैं, उसकी गणना की जाती है, घर नंबर भी दिया जाता है।
1: जी।
0: जो बेघर होते हैं, बेघरों की गणना पहले फेज में नहीं होती, उनको सेकेंड फेज में गिना जाता है, जो कि सेकेंड फेज हमारा कम्प्लीट होने के बाद लास्ट डेट में जो 28 फरवरी का दिन होता है उसको रात को हम उनकी गणना करते हैं, क्योंकि जनरली ये लोग रात को ही मिलते हैं अपने किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे या किसी ब्रिज के नीचे या इस तरह के जगह पे, तो बेघरों को सिर्फ सेकंड फेज में गिना जाता है।
1: जी, तो श्रोताओं, अब आपके सवाल जो है वो कुछ कम हो रहे हैं, तो हम आपका इंतजार कर रहे हैं कॉल का। आप परिचर्चा सुन रहे हैं और मकान सूचीकरण आवास गणना पर विषय आज हमने रखा है, क्योंकि जनगणना 2027 जारी है और बहुत तेजी से ये काम चल रहा है। जनगणना कर्मी जो है दिन भर लगे हुए हैं, आपके सवाल का जवाब जो है आप दे रहे हैं, और इसी पर आप कॉल कर सकते हैं 0112331-04-81 पर, और प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। किसी भी तरह का डाउट अगर आपके मन में है और आप इससे रिलेटेड कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 0112371-7117 पर। हम कर रहे हैं आपके कॉल का इंतजार। रुशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास है कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधता वाले राज्यों में प्रश्नावली को समझाने की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है?
0: सबसे बड़ी चुनौती तो है उनको अपनी भाषा में समझाना, उनको अपनी भाषा में सारा मटेरियल उपलब्ध कराना, और प्रश्न भी उनके भाषा में होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा एक ट्रेडिशन है जनगणना का, कि जनगणना के सारे मटेरियल 16 भाषाओं में उपलब्ध है, जो सारे हमारे मोबाइल ऐप है या पोर्टल है या स्वगणना का वेब पोर्टल है, ये भी 16 भाषा में उपलब्ध है। जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स है ये तो 19 भाषा में उपलब्ध है, क्योंकि हर एक स्टेट की या हर एक रीजन की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो उन सारे लैंग्वेज में ये सारा अवेलेबल है
1: जी। अच्छा 2011 में जो है अगर बात की जाए तो डेटा की एंट्रिंग स्कैनिंग और वेरिफिकेशन में लगभग बताया जा रहा है कि 2 साल लग गए थे, लेकिन 2026 में रियल टाइम डेटा अपलोड से रिजल्ट कितने जल्दी आने की उम्मीद है?
0: बहुत अच्छा सवाल है। जैसे 2011 में पहला हमारा पब्लिकेशन आने में 2 साल लगे
1: जी।
0: लेकिन आप देख सकते बहुत सारे क्वेश्चन पे हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो सेकंड फेज में आती है, तो एक एक सीरीज या एक एक पैरामीटर पे डेटा रिलीज करने में 6 से 8 साल लगे थे। जो हमारा लास्ट टेबल रिलीज हुआ था माइग्रेशन पे, वो हमारा 2019 में रिलीज हुआ था। क्योंकि हमारे जो पेपर पे होता था तो देश के हर कोने से पेपर कलेक्ट करना, मतलब इन्फॉर्मेशन भरने के बाद वो कलेक्ट करना, वो स्कैन करना, इसी में हमारे पूरे 2 साल निकल जाते थे। अब हालांकि हमारा डिजिटल हो रहा है, रियल टाइम डेटा आ रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट पहला जो हमारा पब्लिकेशन है वो 8 से 9 महीने में रिलीज हो जाए और बाकी सारी डेटा 2 से 3 साल के अंदर अंदर डेटा पब्लिश हो जाए।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि जनगणना केवल जनसंख्या की गिनती नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है, तो मुझे लगता है कि इसमें अगर सब लोग मिलकर भागीदार बनेंगे तो देश प्रगति की राह पर बढ़ेगा। और अब दिल्ली से विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विकास जी।
6: हाँ जी, हमारे 2 मकान, एक तो गाँव में है राजस्थान में और एक दिल्ली में है, तो हमारी जनगणना कहाँ होगी?
0: जहाँ पे आप रहते हैं हमेशा के लिए या ज्यादा वक्त जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपकी जनगणना होगी। और यहाँ पे बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि अगर आपकी जनगणना यहाँ पे होगी तो गांव के मकान का क्या होगा, जनगणना का उससे कोई भी संबंध नहीं है। जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आपकी गणना होगी।
1: हाँ विशाल, ये प्रश्न वैसे देखा जाए तो बहुत लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है रोजगार के लिए बाहर आते हैं और गाँव का जो घर है उनका या तो खाली पड़ा होता है, लेकिन वो होता है वो कहीं ना कहीं जाकर जो है उनसे जुड़ा हुआ होता है, तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पर हम लोग वो भर देते हैं, जैसे दिल्ली में अगर रह रहे हैं तो दिल्ली का अगर भर जाता है तो क्या गांव का भरना जरूरी होगा, और अगर छूट जाता है तो क्या होगा?
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो जनरली जनगणना की यही कंसेप्ट है कि जो आदमी जहाँ पे रहता है, क्योंकि देखिए अगर वो शहर में रहता है तो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक मतलब शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मजबूत बनाना है, इसलिए जनगणना का जो कंसेप्ट है जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसकी गिनती होगी। हालांकि मैंने फिर एक बार कहती हूँ कि इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपका गांव में भी घर है, गांव में 2 घर है, यहाँ पे 1 घर है, तो इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप जहाँ पे रहते वहाँ पे आपकी गिनती होगी
1: जी। और अब एक और प्रश्न हमारे साथ जुड़ गए हैं, MP से राजेश नीमा जी ने प्रश्न ले रहे हैं उनका। जी राजेश जी।
7: जी, मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल ये है कि यदि एक घर में एक मकान, आधा मकान कच्चा है और एक कमरा पक्का है, तो वो जनगणना की कौन सी श्रेणी में आएगा?
0: जी, तो जनगणना में अगर सारे सवालों के बारे में एक जिस्ट में बताऊं तो प्रीडोमिनेंटली यानी मुख्यतः जो यूज होता है उसका इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर सोर्स की अगर मैं बात करूं कि आपके पास कुआं भी है और नल से भी पानी आ रहा है, लेकिन आप नल का पानी ज़्यादा यूज करते हैं तो नल आपको लिखना है। उसी तरह आपका अगर आधा मकान कच्चा है आधा पक्का है, या ज़्यादा मकान पक्का है और थोड़ा सा मकान कच्चा है तो पक्का लिखना है। तो ये डिपेंड है आपका कितना पोर्शन पक्का है कितना पोर्शन कच्चा है।
1: और अब एक और लिस्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, पप्पू सिंह जी। जी पप्पू जी।
8: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार
8: सर। जैसे मकान के अलावा जैसे हमारा प्लॉट है और उसमें हमारे पशु बनते हैं और ईंधन खंडा रखे रहता है और वहाँ पे कुछ भी बना नहीं है, वैसे ही है, उसमें पेड़ वगैरह खड़े हैं, तो उसकी गणना भी होगी क्या?
0: जी नहीं, जैसे हमारे इस फेज का नाम है मकान सूचीकरण, तो वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, खाली प्लॉट को गिनते नहीं है। लेकिन वहाँ पे अगर कोई कच्चा सा शेड भी है जिसमें पशु रखे हुए हैं तो उसको एक नंबर दिया जाएगा और उसको नॉन रेसिडेंशियल करके उसको गिना जाएगा।
1: तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न था एक तरीके से, क्योंकि अक्सर लोग गांव में जो होता है पशु वगैरह बांध देते हैं और पूरा एक शेड प्रॉपर ताकि बारिश से उनको बचाया जा सके वो रखते हैं। अच्छा रुशाली जी, एक और ये सवाल है कि 2011 में बैंकिंग सेवा का उपयोग नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार जो है जनधन DBT के बाद इसे जोड़ने का क्या मकसद है?
0: मकसद यही है क्योंकि एक स्कीम शुरू की गवर्नमेंट ने जनधन योजना, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कितने लोगों के पास या कितने परिवारों के पास बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है, ये देखने के लिए ये प्रश्न नए से जोड़ा गया है
1: जी। और अंत में चलते चलते हम रुशाली जी आपसे चाहेंगे कि जनता से क्या अपील हम करना चाहेंगे ताकि वो इसमें सहयोग दे सकें पूरी तरीके से।
0: जी, जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि पूरा कोऑपरेट करें इस जनगणना के लिए, क्योंकि जनगणना से जो भी आंकड़े आते हैं, फिर से एक बार दोहराती हूँ मैं, पूरी तरह से गोपनीय रखे जाते हैं। इससे कोई भी आपके ऊपर ना कोई टैक्स लगेगा, लेकिन जो भी आंकड़े आप सही आंकड़े देंगे उससे सरकार की नीतियां बनेगी, पॉलिसीज बनेगी, जैसे किस गांव में स्कूल बनाने हैं या किस गांव में पानी की सुविधा देनी है, अच्छे पानी देनी है या टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो इस तरह की जो भी वेलफेयर स्कीम्स सरकार बनाती है उसके लिए सही सही जानकारी देना बिल्कुल ज़रूरी है। तो यही एक अपील है कि सही जानकारी दे और कोऑपरेट करे, और जो प्रगणक है हमारे वो अपना काम संभाल के पूरा एक्स्ट्रा काम ये कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से कोऑपरेट तो करे ही, प्लस अच्छे से उनसे उनके साथ बिहेव करे, अच्छे से बात करे।
1: जी बिल्कुल रुशाली जी, क्योंकि 10 साल में एक बार ये मौका आता है कि जब आपके घर की गिनती, आपके सपनों की गिनती जो है वो की जाती है। जनगणना कोई डर की बात नहीं है, ये आपके हक की बात है, और आपका मकान न गिना जाएगा तभी मकान तक सुविधा पहुंचेगी। भारत की पहली डिजिटल जनगणना में भागीदार बनिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद रुशाली जी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आज आप हमारे समक्ष मौजूद रही और हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का आपने जवाब दिया।
0: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं मुझे दीजिए इजाजत कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश भेजी है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, और महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरिंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। आप सबने पसंद किया है रब ने बना दी जोड़ी फिल्म का ये नगमा, आवाज़ रूप कुमार राठौर की, जयदीप सैनी का गीत और सलीम सुलेमान का संगीत।

0: प्यार तो होना ही था। लीजिए सुनिए इस फिल्म से कुमार सानू, गीत विनोद महेंद्र का और जतिन ललित का संगीत।
1: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
2: हाँ, है एक लड़की।
0: इस गीत को पसंद किया है सिंगापुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने। पुणे से प्रियंका, पंकज, आर्या, बाबा साहेब और चंद प्रफा बाड़ोती ने।
2: ये प्यार भी अजीब चीज है संजना। जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो, वहां भी दिल कहने से डरता है। और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। अब तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है।

प्यार किया नहीं जाता। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत सोनू निगम अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज़ों में। श्याम अनुरागी के लिखे गीत की धुन बनाई है मिलिंद सागर ने। इस गीत को पसंद किया है छाबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। रेलवे कॉलोनी हनुमानगंज राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक और शोभा नायक। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित एवं समस्त राजावत परिवार ने। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए ये नगमा।

स्टार रेडियो श्रोता संघ रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, जेएस नायक शोभा नायक, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर चौंधले, आरती चौंधले।

छत्रपति संभाजी नगर से राजदीप राजेश, राशिकी राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, आप सब ने पसंद किया है नसीब फिल्म का ये नगमा। मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, आशा भोंसले, उषा मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह और साथियों की आवाज़ें हैं। आनंद बख्शी का गीत है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का।

बिरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री सोनी, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमले, अर्जुन गवनेकर, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदीप मीका, बलविंदर विरक, जितेंद्र विरक, मीका विरक, आप सबने पसंद किया है। नरसिम्हा फिल्म का ये नगमा आवाज़ अमित कुमार और अलका याग्निक की, जावेद अख्तर के लिखे गीत को सुरों में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।

इस नगमे के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए अपनी रेडियो दोस्त कविता रावत को। नमस्कार, हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग जय जय बंती। विलंबित गत एक ताल में और मध्य लय आपके साथ तबला संगत की है शुभंकर बनर्जी ने।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम
1: नमस्कार
0: रजनी में
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
2: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
1: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेटारेले से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है।

रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए दो जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में दो विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।